0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखिला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: वज़ारत दाखिला की जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस ने कोहोर्ट ऑफ इनमेट्स के पहले ग्रुप की ग्रेजुएशन की तकरीब का एहतमाम किया, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा हासिल किया। इस तकरीब में अंडर सेक्रेटरी वज़ारत अल औकाफ वल शुऊन अल इस्लामियात और वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन गालिम अल सानी, हिज एक्सीलेंसी सिक्योरिटी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी सुल्तान बिन हसन अल जमाली, मेजर जनरल डायरेक्टोरेट जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस नासिर मोहम्मद ईसा अल सईद, प्रेसिडेंट कम्युनिटी कॉलेज डॉक्टर खालिद मोहम्मद अल होर और मेजर जनरल डायरेक्टोरेट पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट वजारत दाखिला अब्दुल्ला खलीफा और वजारत दाखिला के मेजर जनरल डायरेक्टोरेट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट खलीफा अल मुफ्ता ने शिरकत की, जबकि कई अफसरान और स्टैंडिंग कमेटी फॉर पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के अरकान भी मौजूद थे। ये ग्रेजुएशन वजारत दाखिला की इस कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद इसको मजबूत बनाने और कैदियों के लिए तालीमी मौके बढ़ाना है, जो उनकी तालीमी और पेशवराना तरक्की में मददगार साबित होती हैं और मुआशरे में मुस्बत तौर पर दोबारा शामिल होने के उनके इम्कानात को बढ़ाते हैं। यह कदम जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पीनल एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कतर के दरमियान जारी तआवुन की भी एक मिसाल है, जो कैदियों के तालीमी इसलाही सफर को सपोर्ट कर रहा है। बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले, मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। मेहतराज ऐप के जरिए रिहायशी अफराद अपने रिन्यू किए गए पासपोर्ट की तफसीलात को आसानी और सहूलत के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती। इस अमल को शुरू करने के लिए होम स्क्रीन पर रेसिडेंसी सेक्शन पर जाएं, फिर चेंज डेटा सिलेक्ट करें और उसके बाद चेंज पासपोर्ट पर टैप करें। इसके बाद अपना QID नंबर या उस स्पॉन्सर शुदा फर्द का QID नंबर एंटर करें जिसका डेटा अपडेट करना हो। फिर नया पासपोर्ट का पहला सफा स्कैन या अपलोड करें और साथ ही एक पर्सनल फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद तमाम मालूमात को दोबारा चेक करें, ताकि ये यकीन हो जाए कि सब कुछ दुरुस्त है। मुकम्मल होने के बाद अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और

पर टैप करें। आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी और अपडेटेड QID सीधा कतर पोस्ट के जरिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी। गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट ने तावुन को मजबूत बनाने और तजुर्बे का तबादला बढ़ाने की कोशिशों के तहत मलेशियन पुलिस के अफसरान के एक वफ्द का इस्तकबाल किया। उनका खैर मकदम करने में कर्नल असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ड्रग इन्फोर्समेंट तारिक अली अल मालकी ने उनका खैर मकदम किया, जिनके साथ चंद अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान मलेशियन वफ्द को जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारियों और बुनियादी किरदार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। साथ ही नशीली अशिया के खिलाफ उसकी कोशिशों से भी आगाह किया गया। वफ्द को उन आगाही और इंतहाई बरनामे के बारे में भी बताया गया जो डायरेक्टोरेट मुआशरे के तहफ्फुज के लिए लागू करता है। इसके अलावा वफ्द को नशीली अशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीकों और टेक्नोलॉजी के हवाले से मालूमात भी फराहम की गई। जबकि इस शोबे में बैनुल अक्वामी तावुन को फरोग देने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी रोशनी डाली गई। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अथॉरिटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फोर्थ गल्फ गेम्स दोहा 2026 की सिक्योरिटी इंतजामात में हिस्सा लेने वालों के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया
इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी शेख खलीफा बिन खालिद अल्फानी, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस मेजर जनरल अहमद उसामा अल दहीमी, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट स्टाफ ब्रिगेडियर खालिद

0: बिन अहमद अल्फानी और चेयरमैन सिक्योरिटी कमेटी फॉर द टूर्नामेंट मेजर सईद जुमा अल हितमी ने शिरकत की। इसके अलावा कई अफसरान, सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के ममालिक से ताल्लुक रखने वाले चंद एथलीट्स भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें टूर्नामेंट के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी कोशिशों को उजागर किया गया। इसके साथ वजारत दाखिला के मुख्तलिफ इदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और शिरकत करने वाले अफसरान को सिक्योरिटी जिम्मेदारियों की अंजामदेही पर तकरीम से नवाजा गया। ये कोशिशें टूर्नामेंट की कामयाबी का सबब बनी और रियासत कतर की बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स को आला तरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी मयार के मुताबिक मुनज्जम और महफूज बनाने की सलाहियत और महारत को जाहिर करती हैं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सामिनी किराम, एक नहायत ही लतीफ और माना खेज अरबी कहावत है, अज़ैन मन ज़ानत मानी, यानी खूबसूरती उसकी है जिसके अखलाक खूबसूरत हों। बाज़ लोग चेहरे के हुसन पर फख्र करते हैं, मगर असल हुसन तो अखलाक, किरदार और सीरत में होता है। अरब इस कहावत को उस शख्स के बारे में कहते हैं जो अपने हुसन जमाल पर मगरूर हो जाए, मगर उसके अंदर अखलाकी या इंसानी खूबियाँ ना हों। गोया ये कहावत हमें याद दिलाती है कि चेहरे की चमक नहीं, दिल की रोशनी असल जीनत है। हमारे यहाँ भी इस मफहूम की कई खूबसूरत कहावतें राइज हैं। जैसा कि कहते हैं, हुस्ने सूरत नहीं, हुस्ने सीरत असल है, यानी असल खूबसूरती किरदार में है। मजीद कहते हैं, सूरत नहीं सीरत देखो। तो दोस्तों, ये कहावत हमें ये सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं देखी जाती, बल्कि दिल से महसूस की जाती है। वही इंसान खूबसूरत है जिसके अखलाक नरम, बात मीठी और नीयत पाक हो। जी हाँ, यही है असल माना इस कहावत का, अज़ैन मन ज़ानत मानी, खूबसूरती उसकी है जिसके अखलाक, जिसके मानी खूबसूरत हों।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सबिनकराम, लिबास अल्लाह की नेमत है। एक मोमिन लिबास को सिर्फ फैशन या जाहिरी खूबसूरती का जरिया नहीं समझता बल्कि उसे अल्लाह की नेमत जानकर शुक्र अदा करता है, और जब नेमत का इस्तेमाल सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इसमें मजीद बरकत पैदा हो जाती है। लिबास के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खूबसूरत रहनुमाई अता फरमाई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद लिबास पहनो क्योंकि ये तुम्हारे बेहतरीन लिबासों में से है, और अपने फौत शुदगान को भी इसी में कफन दो। सदी से मालूम होता है कि सफ़ेद रंग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। अलबत्त इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सफ़ेद लिबास ही पहन सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे रंगों के लिबास भी इस्तेमाल फरमाए, लेकिन सफ़ेद लिबास की एक ख़ास फजीलत और पसंदीदगी बयान फरमाई है। इसमें एक बात यह भी हो सकती है कि हिकमत कि सफ़ेद लिबास में सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब लिबास सफ़ेद हो तो मामूली दाग भी नुमायाँ हो जाता है। इसी तरह मोमिन को अपने दिल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने लिबास को साफ रखने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हमें अपने दिल को हसद, बुग्ज, तकब्बुर और गुनाहों से भी पाक रखने की कोशिश करनी चाहिए। सामने कराम, लिबास और ज़ाहिरी शख्सियत की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा खुशबू भी है। कहते हैं ना, खुशबू लगाना, अतर इस्तेमाल करना। सुन्नत की दलील हमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से मिलती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन खुशबू लगाती थी, यहाँ तक कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में खुशबू की चमक देखती थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। सबने कराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई, पाकिजगी और खुशबू का ख़ास अहतमाम फरमाते थे, चूँकि यही खुशबू अपने आसपास के लोगों के लिए राहत का सबब बनता है, जबकि नागवार बू दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा सकती है। इसीलिए ख़ास तौर पर नमाज, जुमा, ईद और इज्तिमाआत के मौके पर खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि सिर्फ महंगा लिबास पहनना कामयाबी है, बल्कि इस्लाम का मेयार ये है कि लिबास पाक हो, हलाल हो, सतर को ढांपने वाला हो, तकब्बुर से पाक हो और सुन्नत के मुताबिक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी

0: लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्सियत थी। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, मौसम बदल रहा है, बदल क्या है, और आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम और में हमारी जो कुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी है उस पर क्या असरात होते हैं। और जैसे ही मौसम बदलता है तो नज़ला, खांसी, बुखार, गले की ख़राबी, थकन, ये सब क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि मौसम के अचानक बदलने से जिस्म जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाता। वायरसेस इस वक्त तेज़ी से फैलते हैं और बच्चे और बुज़ुर्ग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हवा में नमी या खुश्की जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो होते हैं और एलर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। हम में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें अपनी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़त को ज़्यादा करना है, तो इसके लिए फिर हम सिट्रस फ्रूट जो हैं वो अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा करने चाहिए हमें, जैसे जिसमें विटामिन सी होती है, जैसे माल्टा है, लेमन है, कीवी है। इसके अलावा शहद गर्म पानी में आप मिलाकर आप लीजिए, और जो लहसुन है वो भी कुदरती एंटी बैक्टीरियल है। इसी तरह जो हरी सब्जियां हैं वो हम जब खाते हैं तो उसमें हमें आयरन भी मिलता है और वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ड्राई नट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्दी फैट्स उनमें होते हैं, और पानी तो बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो जरासीम है उन्हें फ्लश आउट करता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि क्यों हम इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जैसे ही मौसम बदलता है। तो ये है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है, नींद कम होती है, और जिससे फिर हम कमज़ोरी महसूस करते हैं। इसलिए बदलते हुए मौसम में 7 से 8 घंटे नींद लेना बेहद ज़रूरी है। कमरे की जो हवा है उसको भी बदलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी विंडोज़ को ऊपर रखें टाइम टू टाइम सुबह के वक्त जो है ज़रूर, और कोशिश कीजिए कि जो सनलाइट है वो आपके कमरे में ज़रूर आए। और सोने से पहले गर्म आप जो दूध है वो ले सकते हैं या कोई भी हर्बल टी आप इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, हम अपने हाथ धोकर इन तमाम मुश्किलात से दूर रह सकते हैं। ऑफिस में या स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो जो सैनिटाइजेशन है वो ज़रूरी है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी आप अवॉइड कीजिए, और जो एसी का टेम्परेचर है उसे भी मॉडरेट रखिए। बच्चों के कपड़ों की जो लेयर्स हैं वो मौसम के मुताबिक हों, और अगर आप महसूस करें कि 3 दिन से आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बुखार है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, गले में शदीद दर्द है, या बच्चों में भूख बहुत कम लग रही है उन्हें, और बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करें, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर रابطہ कीजिए। मौसम बदलने पर छोटी छोटी एहतियातें बड़ी बीमारियों से भी बचा सकती हैं। तो सेहतमंद रहिए, तवाना रहिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। FM 107, दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम कतरी फुटबॉल के वन ऑफ द टॉप लेजेंडरी नेम्स खालिद सलमान के बारे में बात करूंगा। खालिद सलमान कतरी फुटबॉल की तारीख के सबसे नुमाया नामों में से एक हैं। वो एक बासलाहियत अटैकर थे और कतर नेशनल टीम के लिए कई सालों तक खेलते रहे। उनकी पहचान उनकी मजबूत मार्किंग, हिम्मत और लीडरशिप की वजह से बनी। खालिद सलमान ने क्लब और इंटरनेशनल दोनों सतह पर कतरी फुटबॉल को बुलंद मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, अब 1981 फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस टूर्नामेंट में कतर की टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कतरी फुटबॉल के लिए एक तारीखी लम्हा था। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इस टूर्नामेंट में कतर ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल तक सफर तय किया। दुनिया भर के फुटबॉल माहिरीन ने इस छोटे गल्फ मुल्क की कामयाबी को हैरानी और तहसीन की नज़र से देखा। खालिद सलमान उस मशहूर टीम के अफराद में शामिल थे जिन्होंने कतर को वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाने और मुल्क के फुटबॉल मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। दोस्तों, इस कामयाबी ने कतर में फुटबॉल के लिए नया जज्बा पैदा किया और नए टैलेंट को उभरने का रास्ता खोल दिया। खालिद सलमान की मेहनत और उस जनरेशन की नुमाइंदगी करती हैं जिसने कतरी फुटबॉल को एशिया की ताकतवर टीमों में शामिल करने की बुनियाद रखी। उनका नाम आज भी 1981 के उस तारीखी सफर से जुड़ा जाता है जो कतरी फुटबॉल की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और वो है बच्चों की गजाइत और उसके फवायद। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सेहतमंद, तवाना, ज़हीन और खुशबाश हो। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद मुनासिब और मुतवाजन गजाइत पर होती है। बचपन, जिस्मानी नशोनुमा, दिमागी तरक्की और मजबूत मुदाफती निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम की तामीर का अहम तरीन दौर है, इसलिए इस उम्र में अच्छी खुराक बेहद ज़रूरी है। सवाल ये है कि गजाइत क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों के जिस मुसलसल ग्रोथ या नशोनुमा के अमल से गुजर रहे होते हैं और इनके जिस्म को बोन्स, मसल्स, ब्लड, दिमाग और दीगर जो अज़ा हैं उनकी तामीर के लिए मुख्तलिफ गजाई अज्जा की ज़रूरत होती है, और अगर बच्चों को मुनासिब गजाइत ना मिले तो उससे उनकी ग्रोथ मुतासिर हो सकती है, सीखने की सलाहियत कम हो सकती है, बीमारियों का ख़तरा बढ़ सकता है और इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी भी पैदा हो सकती है। बच्चों की गज़ा में प्रोटीन बेहद अहम रोल अदा करती है, जैसे कि प्रोटीन जिस्म की तामीर और नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इसके लिए अंडे, दूध, दही, मछली, चिकन, दालें और लोबिया जो हैं वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों को। प्रोटीन बच्चों के मसल्स मजबूत बनाते हैं और जिस्मानी नशोनुमा में मदद दे सकती हैं और जिस्म के टिश्यूज की भी नशोनुमा, उनकी जो तोड़ फोड़ है और उसमें बेहतरीन काम सर अंजाम देती हैं। कैल्शियम बच्चों की जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बेहद ज़रूरी है, और उसे हासिल करने के लिए बच्चों की गज़ा में दूध, दही, चीज़ और ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल कीजिए उनकी खुराक में। बचपन में मुनासिब कैल्शियम मुस्तकबिल में हड्डियों की कमज़ोरी से बचाने में मदद देता है। मुख्तलिफ वाइटमिन्स और मादनियात बच्चों की मजमू सेहत के लिए ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर वाइटमिन ए आँखों की सेहत के लिए मुफीद है, वाइटमिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज़ख्मों को ठीक करने में मदद देता है। आयरन ब्लड बनाने और दिमागी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। यह गजाई अज्जा फलों, सब्जियों, गोश्त, दालों और अनाज से हासिल कर सकते हैं। पानी भी बच्चों की गजाइत का अहम हिस्सा है। मुनासिब मकदार में पानी जिस्म को हाइड्रेट रखता है, उनके हाजमे को बेहतर बनाता है, जिस्मानी दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है। बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक से बचाए पानी पीने की आदत डालिए। बैलेंस जो डाइट है उसका असूल ये है कि एक सेहतमंद प्लेट में फल और सब्जियां, प्रोटीन वाली गजाएँ, अनाज, दूध या दूध से बनी हुई अशिया मुनासिब मकदार में शामिल होनी चाहिए। याद रखिए कि सिर्फ पेट भरना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस्म को ज़रूरी गजाई अज्जा फ्राहम करना असल मकसद है। बच्चों की अच्छी गजाइत सिर्फ उनकी मौजूदा सेहत ही नहीं बल्कि उनके फ्यूचर में भी सरमायाकारी है। बैलेंस डाइट, ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, प्रोटीन और मुनासिब पानी बच्चों को मजबूत जिस्म, तेज़ दिमाग और बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम फ्राहम करते हैं। अपने बच्चों की खुराक पर खुसूसी तवज्जो दीजिए, क्योंकि सेहतमंद गिज़ा ही सेहतमंद और कामयाब मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की बुनियाद है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस एंड SMEs. देखिए, लोकल बिजनेसेस और SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। कतर विजन 2030 का एक इम्पॉर्टेंट गोल ये है कि इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जाए और इसके लिए छोटी और मीडियम लेवल कंपनीज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। SMEs इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस एक्टिविटी का एक मेजर सोर्स होती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करें। जब नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं तो नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आती हैं। ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं जो ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव करता है। साथ ही नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं इनके चलते, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी तो बूस्ट करता है। देखिए, SMEs की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये जॉब्स क्रिएट करती हैं। बड़ी कंपनीज के मुकाबले में SMEs यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं और इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो को एक्टिव रखती हैं। जब स्मॉल बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो लोकल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग होता है और डिपेंडेंसी एक्सटर्नल मार्केट्स पर कम हो जाती है। कतर जैसी इकोनॉमी में SMEs फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अट्रैक्टिव होती हैं। जब बिजनेस एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है, जैसे इजी लाइसेंसिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर एडवाइजरी सर्विसेज, तब नए एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स भी यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो बिजनेस सेटअप और कंप्लायंस में मदद करती हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सपोर्टिंग SMEs इज लाइक सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग टू प्रमोट एंड ग्रो द इकोनॉमी। सपोर्टिंग SMEs का मतलब सिर्फ छोटी कंपनीज को सपोर्ट करना भी नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब लोकल बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है और यही विजन 2030 की असली रूह भी है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं कुछ हद तक आपको समझा पाई हूँ कि SMEs क्या है और किस तरह से SMEs को सपोर्ट, यानी इनके बिजनेस या लोकल बिजनेस को ये SMEs कैसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्ट्रॉन्ग पिलर मानती है और ये कतर के नेशनल विजन 2030 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल भी है, जहां सपोर्ट करने की बात को बार बार दोहराया जा रहा है। इसका मतलब बस यही है कि मार्केट में जो है वो कैश फ्लो बना रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलती रहे और छोटी छोटी कंपनीज जो है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसेस को और अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का भी मौका देती हैं, जिससे फिर इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। तो बस इसी तरह से ये जो साइकिल है वो राउंड राउंड चलती है। कभी आपसे इसका ताल्लुक है, कभी मुझसे इसका ताल्लुक है, पर देखा जाए आप और हम मिलके फिर कहीं ना कहीं मुल्क की ग्रोथ में या मुल्क की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो हमारा प्राइम पर्पस भी है। पहले आज इसी टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करूंगी, कल एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे और फिर धीरे धीरे इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल में भी बात करना शुरू करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि सिर्फ मैं आपको सुपरफिशियसली सिर्फ बता दूं कि ये टॉपिक है, जिससे आप हल्का सा प्रिपेयर्ड हो जाएं एंड देन लेटर ऑन डेप्थ में इन डेप्थ डिस्कशन या इन डेप्थ टॉक्स भी होंगी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, नाइस टू मीट यू। ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन फॉर्मली इनफॉर्मली कैजुअली मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि कतर में इतने सारे इवेंट्स हैं। क्या समझ के आए थे, समर जाएंगी तो बाहर इवेंट नहीं होंगे? हैं बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां आप जा सकते हैं, जहां आप एक्चुअली में फैमिली के साथ जा सकते हैं, जहां आपको फुल एसी मिलेगा भाई साहब, आपकी सेहत का आपकी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल भी रखा जाएगा और सब कुछ आपको मिलता रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं हर हफ्ते कहता चला जा रहा हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स में आता है स्टेकेशन। इस पर ध्यान दें आप, समर्स में अगर आप छुट्टी पर नहीं जा पा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कई लोग नहीं जा पाते भाई, कोई गल नहीं, आप

आराम से स्टेकेशन देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया होटल है भाई, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके हैं, इतने शानदार रूम सर्विसेज एंड एवरीथिंग। एंड इनका फायदा क्या है कि इस मौके पर बहुत कमाल के ऑफर्स भी होते हैं, तो उनका फायदा उठाइए। तो ये तो सबसे पहले है जो मैं हर हफ्ते आपसे कहता रहूंगा जब तक गर्मियां हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे एंटरटेनमेंट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। आप फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो आप भाई, हम भी बैचलर रहे हैं, बहुत कुछ होता रहता है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, काफ़ी कुछ है बताने के लिए। सबसे पहले आ जाइए सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इसी नाम से हैं हम, एंड आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसकी आवाज़ और शक्ल को मैच करूँ मैं, मैच खारी नहीं खारी, तो ये चेक करने के लिए भी आप आ सकते हैं। बहुत सारे लोग यही करते हैं आजकल। एनीवे, तो स्टार्टिंग ऑफ कतर कैलेंडर से, जिसमें बहुत सारे दिन बहुत ही मेथोडिकली मार्क्ड होते हैं जो कतर में होते ही होते हैं, और ये इवेंट्स अगर आगे पीछे भी होते हैं तो दे टेल यू कि भाई ऐसा ऐसा है, इस डेट पे है, उस डेट पे नहीं है। तो अभी जो है, जो मैं आपको चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उनमें से नंबर वन है कलर वर्स। ये बड़ा कमाल का इवेंट है, एक कलर वर्स एक्सपीरियंस इसका लॉन्च किया गया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी इमर्सिव एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन है। कलर वर्स एक्सपीरियंस जो है वो इन्वाइट करता है बहुत सारे लोगों को जो इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग में बिलीव रखते हैं, और मैं तो खुद स्टोरी टेलर अपने आप को थोड़ा बहुत मानता हूं, तो मुझे ऐसे इवेंट्स बड़े पसंद होते हैं जहां पे एक इंटरेक्टिविटी हो और साथ में स्टोरी टेलिंग है, पूरी जर्नी हो थ्रू द वर्ल्ड ऑफ कलरामा। बेसिकली एक वाइब्रेंट रेल्म में आपको ले जाते हैं जहां पर कोई कलर नहीं है, है ना, और कोई कलर नहीं है, वाइटैलिटी है। एंड इस पूरे एक्सपीरियंस में विजिटर्स को मौका मिलता है कि वो रिस्टोरर्स बने, वो इसमें रंग भरें, एंड उनको मौका दिया जाता है कि वो रीएक्टिवेट करें उस कोर आरजीबी कलर को जो इस सिस्टम में होना चाहिए। एंड जब आप करते हैं, बड़ा ही सूदिंग एक कमाल का एक्सपीरियंस है। इसमें क्रिएचर्स हैं जिन्हें मंचर्स कहा जाता है, एंड अल्टीमेटली यू रीस्टोर द बैलेंस एंड लाइफ टू दिस वर्ल्ड, टू दिस रेल्म, और ये काफ़ी काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस की जो खास बात है, इसके साथ आपको एक फ्रेंडली गाइड मिलती है जो आपके साथ हमेशा रहती है और रहता है, एंड विजिटर्स को थ्रू आउट ये हेल्प करते हैं। इसमें 7 इंटरेक्टिव जोन्स बनाए गए हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग मिशंस हैं, और अलग अलग मिशंस में अलग अलग तरीके से आप कलर को रिस्टोर करते हैं, ओके। एंड ये जर्नी शुरू होती है एक ग्रे और कलरलेस दुनिया में। जरा जस्ट इमेजिन, आप एक दुनिया में जहां पे कोई कलर नहीं है सिवाय ग्रे के। यहाँ पर विजिटर्स डिस्कवर करते हैं मंचर्स को, ये यहाँ के क्रिएचर्स हैं जिनका पूरा कलर जो है ड्रेन्ड आउट कर दिया गया, उसकी वाइब्रेंसी खत्म हो गई है, मगर यहाँ पर आपको मौका है रिस्टोरर बनने का। आपको मौका मिलता है कि इंटरेक्टिव चैलेंजेस को फॉलो करें, उन चैलेंजेस को कंप्लीट करें, और अलग अलग कलर को रिएक्टिवेट करें। भाई ये बिल्कुल गेमिंग जोन की तरह है, आप इसमें रिएक्टिवेट करते हैं लाल रंग, हरा रंग, ब्लू रंग, और एक कलर सिस्टम ग्रेजुअली आपकी नजरों के सामने जो आपने एक्टिवेट किया है वो अनफोल्ड होता है। दिस इज सच एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये इसकी लोकेशन कहाँ है आपको बता दूं, कतारा कल्चरल विलेज साउथ पार्किंग की तरफ, और ये 15 जुलाई को शुरू होने वाला है। सो अभी थोड़ा सा टाइम है, ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड इसके बाद आप जरूर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जरूर जाएं। अगर आप सिंगल में तो भी आप जाइए, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव प्लेस। 15 जुलाई से ये इवेंट शुरू होगा और 15 सितंबर तक रहेगा। इसकी टाइमिंग बता देता हूँ, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक। सो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, प्लानिंग प्लॉटिंग कर लीजिए, यहाँ पे जरूर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत कमाल का इवेंट है ये, कलर वर्स के नाम से, कतारा कल्चरल विलेज साउथ पार्किंग की तरफ, ओके भाई, नोट डाउन। राजू बेटा मार्क कर लो कैलेंडर को, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला इवेंट जो है इसका नाम है समर स्प्लैश। ये एक मंथ लॉन्ग फैमिली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैरियल वाटर पार्क में चल रहा है, बीच एरिया में। ये 1 जून को शुरू हुआ था और 30 जून तक है। भाई मौका है आपके पास, ऐसे इवेंट आके चले जाते हैं फिर आपको लगता है पता नहीं, हाँ तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएं घूमने के, ये है ना जगह, ये जाइए यहाँ पे, और आपको बाहर निकलना चाहिए। नंदलेस वो गर्मी है कि भाई सर्दी हो रही है कि बरसात हो रही है, हर इवेंट के लिए कुछ ना कुछ, हर सीजन के लिए कतर के पास कुछ ना कुछ है। मैं तो खुद अब बाहर निकलने लगा हूँ इस शो के चक्कर में, बिकॉज आई रियलाइज कि मैंने भी ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स बहुत सारे ऐसे इवेंट स्किप कर दिए जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था, एंड कतर हैज इट। तो ये एक बड़ा ही कमाल का इवेंट है समर स्प्लैश। इसमें फीचर करते हैं निकोलोडियन का पूरा जो उनके फैमिली ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज कैरेक्टर्स हैं जैसे कि पॉ पेट्रोल और स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स। और जो इवेंट है ये बहुत इमर्सिव है, एंटरटेनिंग है, इसमें कई सारे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए, एंड लाइव परफॉर्मेंसेस भी हैं, एंड
ये सारे के सारे एक वन एक्साइटिंग डेस्टिनेशन को मुकम्मल करती हैं। तो फैमिली विजिटर्स ऑफ ऑल एजेस, बच्चों के लिए तो अलग से इवेंट है ऑफ कोर्स, मगर बड़ों के लिए भी काफी कुछ है। इसमें इंटरेक्टिव फैमिली एक्टिविटीज हैं, गेम्स मिलेंगे आपको, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं जो कि बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही फन, उनको देख के आप कहीं कहीं तो चले जाएंगे, आपको लगेगा आई ट्रांसेंडेड इनटू समथिंग एल्स, थोड़ा सा परेशान था अभी थोड़ा हल्का फील हो रहा है। यहाँ पे फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं, और फोटो अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं कि आप खड़े होकर फोटो के चले ना, यहाँ पे थीम्ड जोन है, सो यू गो देयर, यू क्लिक फोटोग्राफ्स, एंड यकीन दिला रहा हूँ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके लिए वो जो याद है उनके दिलों में, जो आप एक एक्टिविटी साथ में करेंगे, वो उनके क्या कहते हैं उसको, इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत डेवलप करता है। ऐसी एक्टिविटीज आर रियली रियली गुड। एंड इसके अलावा बीच सॉकर है, वॉलीबॉल है, सैंड प्ले एरियाज बनाए गए हैं जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स वाटर गन बैटल्स। इसमें आपका भाई जिस दिन मार्केट में उतर गया भाई, उस दिन कोई टिक ना पाएगा, बहुत बढ़िया वाटर गन बैटल्स भी इसमें है। एंड बच्चों के लिए वाटर इन्फ्लेटेबल फ्लोट्स भी हैं, इन पूल्स में आपको अलग अलग जगह वहाँ पे जो पूल्स हैं नजर आ जाएंगे। एंड इसी के साथ थीम टेंट्स हैं और बीच गेम्स अलग से डिजाइन किए गए, विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ न्यू फीचर, एंड आई थिंक बहुत बहुत काम की चीज है। बिकॉज इन इवेंट्स का होता क्या है कि आप जाते हैं एक चीज के लिए, फिर आपको लगता है कि कुछ तो कमी रह गई, मगर कतर में जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो ये जब भी होते हैं इनमें मल्टीपल चीजें अटैच्ड होती हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हो सकता है कि बोलते बोलते कुछ और भी चीजें कनेक्ट हो गई हों, बहुत सारी चीजें और बना दी गई हों, डेवलप कर दिया गया हो हाथों हाथ, एंड इट हैपेंस इन कतर, और ये सबसे खूबसूरत बात है। तो इसकी लोकेशन क्या है, मेरियल वाटर पार्क, MERYAL, डेट है शुरू हो चुका है 1 जून से और 30 जून 2026 तक ये इवेंट रहेगा। इसकी टाइमिंग है शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक, तो यहाँ पर भी आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए, एंड ऑफ कोर्स जाना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेवलप होता है, और जब इंटरेक्टिविटी ज़्यादा होती है गेम्स में, सो दे डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज। भारी भारी वर्ड है लेकिन आप जानते ही, मुझसे बेहतर जानते हैं जो माँ बाप है उनको, तो मैं क्या ही समझाऊँ, दे नो इट फार बेटर देन मी, बट एक रिमाइंडर के तौर पर बता रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, नॉट जस्ट फॉर फन एंड एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स बच्चे जाना ही चाहते हैं बाहर कहीं ना कहीं, आप उन्हें पार्क ले ही जाएंगे कहीं ना कहीं, बट यू नो गर्मियों में वो भी चिड़चिड़े हो जाते होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस वाटर पार्क नाम में ही है, बच्चे सुन के ही पहुंचेंगे, चलो अभी चलो मम्मी पापा। तो ये एक इवेंट है, मेरियल वाटर पार्क बीच एरिया में है, 1 जून से 30 जून 2026 शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक। ओके, नाउ अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला इवेंट जो है, देखो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है पर है टाइम, पर जब ये आएगा आके निकल जाएगा और आप जो है कहते रह जाएंगे कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, देखता हूं, जाता हूं, देख लूंगा, ये सब करते रह जाएंगे, ये बहाना निकल जाएगा। ऐसा मेरे साथ पहले साल हो चुका है जब मैंने ये मिस किया था, एंड आई रिग्रेटेड इट बैडली। इस बार मैं मिस नहीं करने वाला हूं, और मेरा सजेशन है ऑफ फॉर ऑल एजेस, आप ये वाला इवेंट मत मिस कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये है कतर टॉय फेस्टिवल, वापिस आ रहा है भाई साहब दुहा में। मेरे पास अभी अगर कन्फेटी या फिर कुछ होता ना यहाँ पे, मैं शोरगुल मचा देता, बिकॉज आई एब्सोल्युटली अडोर एंड लव दिस इवेंट। इट्स गोइंग टू बी बिगर दिस टाइम, इट्स गोइंग टू बी बोल्डर देन एवर बिफोर, और इसमें बच्चों के लिए जो मीटअप तैयार किया जाता है वो बड़ा कमाल का है, बिकॉज दे गेट टू मीट देयर फेवरेट कैरेक्टर्स, यू नो आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत कूल कूल टॉयज है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं पिछली बार जब ये टॉय फेस्टिवल देखा था मैंने, वहाँ पे वो जो स्पेशली वो जो गन्स दिखाते हैं ना, वो वाटर गन्स जो होते हैं, इतनी कमाल की लगती हैं भाई, इतनी सॉलिड, मन सा कर गया मेरा, अंदर का बच्चा जाग गया, ये तो चाहिए मेरे को। इस बार भी मैं जाऊँगा, एंड नॉट ओनली किड्स, अभी हमारे भी फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें भी अच्छा लगता है फोटो खिंचाना, सो बड़ा ही कूल है बच्चों के लिए इस इवेंट में जाना। एंड देर आर मैनी मैजिकल लाइव शोज, समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि बच्चे गए उन्होंने टॉयज वगैरह की शॉपिंग करी कह रहे खर्चा करा दिया भाई नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा दे गेट टू मीट देयर फेवरेट कैरेक्टर्स, एंड उसके अलावा मैजिक लाइव शोज हैं, एंड स्टेज शोज होते रहेंगे, उसमें डांसिंग है, उसमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हैं, बच्चों के लिए इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसमें साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, इसके अलावा सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस होते रहेंगे, लगातार सेलिब्रिटीज आते रहेंगे, कोई ना कोई जरूर आता रहेगा, मैस्कॉट मीट एंड ग्रीट है, इसमें 5 आइलैंड्स, 10 रिटेल स्टोर्स और 30 एंटरटेनमेंट कॉर्नर्स हैं। You cannot miss this one.
मैं बता रहा हूँ, बहुत हाई हाई रिग्रेट करेंगे आप जब इसकी रीले बनेंगी और आपको मार्केट में नजर आएंगी, आप बोलेंगे भाई चला ही जाता मैं तो बहुत बढ़िया हो जाता। यहाँ पे जो विजिटर्स आएंगे ऑफकोर्स वो सिर्फ कतर से नहीं है, बाहर से भी आएंगे, मगर क्योंकि कतर में हो रहा है तो कतर

के जो जिम्मेदारी का तरह अच्छे से निभाता है, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। विजिटर्स जब पहुंचेंगे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे एक्शन पैक्ड एक्सपीरियंसेस हैं यूथ जोन में, पबजी मोबाइल का, फिर पॉपी प्ले टाइम, मुझे बहुत पसंद है पॉपी प्ले टाइम, इफ यू हैवंट प्लेड इट, पॉपी प्ले टाइम का एक लाइट वर्जन भी, एक हॉरर वर्जन भी है, तो दोनों मिलेंगे यहाँ पे। एंड इसके अलावा चैंपियंस लैंड फॉर फन बनाया गया है यहाँ पे, जो कि इंस्पायर्ड है उन अरीना से जो आपको देखने को मिली थी हॉट व्हील्स में। रिमेंबर हॉट व्हील्स? हॉट व्हील्स की मूवी बाय द वे आने वाली है इन सम टाइम, बट हॉट व्हील्स का जमाना अगर आपने जिया है तो आप चाहेंगे कि अपने बच्चे को आप भी वुमेन ऑफ कल्चर या मैन ऑफ कल्चर बनाएं। सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक देम, क्योंकि क्या है वो मोबाइल में देख लिया, ये जो सामने से एक्सपीरियंस होता है ना, दिस इज व्हाट दे विल रिमेंबर फॉर एवर। तो हॉट व्हील्स के स्टाइल में बनी अरीनाज हैं, पैकमैन है, समझ रहे हैं आप, पैकमैन, ये तो बड़ों को भी एक्साइटमेंट होनी चाहिए इस चीज के लिए। एंड यू स्टेप इनटू द स्टूडियोज जो बहुत अलग से बनाए गए हैं, एक ब्रांड न्यू जोन है जो बनाया गया है सब के लिए कि वो सब चीज एंजॉय कर सकें। अच्छा, अब हाईलाइट हो गया इस इवेंट में, फ्लिंटस्टोन्स, यू रिमेंबर फ्लिंटस्टोन्स, याबडाबडू, एंड मैं अभी स्कूडू की आवाज निकालने वाला था लेकिन फ्रेड फ्लिंटस्टोन्स, याबडाबडू, साथ में मिक्की माउस एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा फैंसी लैंड बनाया गया है जो कि स्पेशली नन्नी नन्नी बच्चों के लिए, वो परियां जो आपके घर में है, है ना, जो पापा की परी है माशाल्लाह, तो जो घर की शहजादी हैं छोटी छोटी प्यारी सी, उनको यहाँ पे जरूर ले जाएगा। दिस इज डेडिकेटेड टू गर्ल्स। यहाँ पे मैजिकल मोमेंट्स हैं विद लीलो एंड स्टिच, डिज्नी प्रिंसेस एंड फ्रोजन के कैरेक्टर्स, एंड एक जगह है क्यूटी पाई लैंड जो इससे अटैच्ड है। बाइक कतई क्यूट है, इट एड्स एन एक्स्ट्रा जॉय जो यंगर विजिटर्स हैं। इसमें पॉ पेट्रोल, मिस रेचल एंड काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इतनी सारी वजह मैंने दे दी है, ये नहीं बताया कहाँ पे हो रहा है और कब हो रहा है। सो टॉय फेस्टिवल जो है वो होने वाला है दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में, यानी DECC में, और ये 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक। अभी भी कह रहा हूं मेरी तरह मत करना, पहले साल मैंने यही किया था, कल जाते परसों जाते देखते हैं जाएंगे पता लगेगा, बट दिस टाइम अराउंड आई विल आल्सो बी देयर, मैं जरूर पहुंचूंगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इवेंट्स। और DECC में जगह बतेरी है भाई, तो बहुत कुछ है घूमने फिरने के लिए, एंड आई गेस मैं इस बार टॉय शॉपिंग करने वाला हूँ, पता नहीं घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, बट आई विल गोइंग टू बाय समथिंग, एटलीस्ट अ की चेन और समथिंग, ताकि ऐसा ना लगे कतई बाला गए तो, पर मैं जरूर पहुंचूंगा। दोपहर के 2 बजे से रात की 11 बजे तक इवेंट रहेगा, एंड हर एज ग्रुप के लिए, ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक अ किड समटाइम्स, सो एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, आप पहुंचिए। जैसे मैंने कुछ नाम बीच में लिए, फ्रेड फ्लिंटस्टोन्स, ये तो भाई 90s वालों को भी जाना चाहिए, याबडाबडू। तो ये एक इवेंट है जो DECC यानी दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होगा, दोबारा बता रहा हूँ, 1 जुलाई से टॉय फेस्टिवल इज कमिंग बैक टू कतर, यू कैन नॉट मिस इट, और 31 जुलाई तक ये रहेगा, दोपहर के 2 बजे से रात के 11 बजे तक। ऑलराइट, एम आई क्लियर? ओके, डन हो गया। अब जरा बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अभी जो अगला इवेंट है, इट इज बेस्ड ऑन हांस क्रिश्चियन एंडरसन स्टोरी और डिज्नी फिल्म। अभी ये प्रोडक्शन जो उसका पूरा किया है इस इवेंट का, हावर्ड एशमैन और जॉन मस्कर ने किया, आई डोंट नो कितने लोगों का नाम पता है। इट इज रिटन डायरेक्टेड बाय बोथ ऑफ देम आल्सो। ओरिजिनली ये जो पूरा प्लान है, जो इवेंट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिज्नी थिएट्रिकल प्रोडक्शन, और डिज्नी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, अलग ही लेवल का है। तो डिज्नी का जो एक जो थिएट्रिकल म्यूजिकल होता है वो आपको देखने को मिलेगा, रिबेलियस मरमेड। एरियल याद है आपको? एरियल तो भाई याद होगी यार, मतलब हिंदी में भी देखा है हमने तो एरियल को, वो यहाँ पर आपको उसका जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है वो नजर आएगा, एंड जो विजिटर्स हैं उन्हें डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। एंड किंग ट्राइटन याद है? किंग ट्राइटन जो फादर होते हैं एरियल के, इनकेस यू डोंट नो, अरे क्या मैं ही जी रहा हूँ कार्टून्स को तो ये जरूर देखिए जो पूरी स्टोरी है एरियल की, कि एरियल को का हालांकि मरमेड है लेकिन उसे एक ह्यूमन प्रिंसेस से प्यार हो जाता है ना, एंड कहानी आगे बढ़ती है, एंड दोनों की मोहब्बत को एक करने की कोशिश में वो दोनों बहुत दुनिया से लड़ जाते हैं, फिर एरियल जो होती है एक डेंजरस डील करती है सी की विच

से, जिसका नाम है उर्सला। उर्सला ही कहते हैं ना, मैं इसका नाम गलत स्पेल नहीं कर रहा, बचपन में तो हिंदी में पता नहीं क्या सुना था। ताकि वो उनसे कहती है कि मुझे 3 दिन के लिए ह्यूमन बना दू। एंड स्टोरी गोज लाइक दिस, जहां तक

इंटरनेशनल स्कूल, गेट नंबर 3 वसाई मीर, ये यहाँ पे है, ये 4 जून से 20 जून तक है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, यू कैन स्टिल एक्सप्लोर, आप जा सकते हैं, ये दोपहर के 2:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक है, है ना, दोपहर के 2:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक ये इवेंट रहेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ऐसा इवेंट पहले नहीं देखा होगा, बिकॉज म्यूजिकल्स बहुत देखने को मिलते हैं, बट देर आर हार्डली म्यूजिकल जहाँ पे आपको ये मौका मिलता है कि भाई यू नो मैं जाऊं और मजे कर सकूं, तो ये कुछ एक मोमेंट रहेगा आपके लिए भी अगर आप जाना चाहें तो। इसके अलावा अब कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं, ओके लेट्स बिगिन। ओके, तो अब फुटबॉल का सीजन शुरू हो चुका है कतर में, एवरीबॉडी इज आफ्टर द वर्ल्ड कप, मैं तो भाई डंकी की चोट पे कह रहा हूं, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में हो लिया वैसा कहीं हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मगर अगर आप मैचेस देखना चाहते हैं, जो कि देखना चाहेंगे जब तक कतर परफॉर्म कर रहा है, तो कतर की जो जो टीम का मैच है दैट इज वर्सेस स्विट्जरलैंड 13 जून को रात के 10 बजे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये चल रहा होगा तो ये सबने देख लिया होगा अलग अलग जगहों पे, लेकिन आने वाले जो इवेंट हैं फॉर एग्जांपल कनाडा वर्सेस कतर जो कि रात के 1 बजे 19 जून को, फिर 24 जून को है बोस्निया वर्सेस हर्जेगोविना, ये बड़ा डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए वर्सेस कतर, तो ये भी 10 बजे, ये सारे के सारे मैचेस आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो आप ट्रॉपिकाना 360 ड्यूसेट होटल जा सकते हैं, बहुत बढ़िया मॉल है वहाँ पे, काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं, आप जो है इसके अलावा मॉल ऑफ कतर जाके देख सकते हैं भाई, सबसे बढ़िया क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्री में है, फ्री में सिस्टम, बैठ के देखो मैच, और ये जो है 11 जून से 19 जून को पूरा रखा गया है यहाँ पे हिसाब किताब, सो यू कैन हैव अ फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस वहाँ का जो ओएसिस स्क्रीन है, तो पूरा लाइनअप है 11 जून से शुरू हो चुका है, व्हेन आई एम स्पीकिंग बहुत सारे मैचेस हो भी चुके होंगे व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, लेकिन जो बाकी बचे कुछ मैचेस हैं 19 तक वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड अ प्लेस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की स्क्रीन है, आराम से देखिए, एंड फ्री की स्क्रीन से याद आया दोहा फेस्टिवल सिटी में भी जा सकते हैं, मॉल में भी आपको 11 से 19 जुलाई तक फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत सारे लोग पहुंच भी होंगे देखने के लिए, लोकेशन है नॉर्थ फूड कोर्ट दोहा फेस्टिवल, वैसे तो आपको शोर शराबा वहां पे अपने आप ले ही जाएगा डेफिनेटली, इसके अलावा द क्लब हाउस है दोहा, क्लब में भी देख सकते हैं, बैक रूम दोहा में भी जाके देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा दोस्तों के साथ जाइए, खर्चा वर्चा करके आराम से देखिए, हालांकि दे आर गिविंग 50% ऑफ, एंड इन तमाम जगहों के अलावा एक वो भी है क्या कहते हैं, अरे मेरे जहन में से उतर गया, हाँ कतारा में भी आप जाके देख सकते हैं, कुछ जगहों पे आपको स्क्रीनिंग वहाँ पे भी लग के मिल जाएगी, एंड बाकी तमाम होटल्स में तमाम जगहों पे आपको सिलेक्टिव डेज पे ये मौका मिलेगा कि आप मैचेस को एक्सप्लोर कर सकें और देख सकें, बट डू नॉट मिस द वर्ल्ड कप, कतर जब तक वहाँ उसमें खेल रहा है कतर की परफॉर्मेंस देखना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करते रहना है हमें, अगेन यहाँ पे जैसा वर्ल्ड कप वैसा तो भाई साहब करना बहुत मुश्किल है, पर कोई गाल नहीं जी, फिर भी सह लेंगे। अच्छा अब अगला इवेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत बहुत मेजर और बहुत जरूरी है, ये तो हम सबके लिए, तो जो अगला इवेंट है इसका टाइटल सुन के ही आप बोलेंगे अरे कब किधर किया, अगला इवेंट है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन 2026, ठीक है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन, ये तो कहने की बात ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा जाने, मैंने बताने से पहले घर वालों ने बोल दिया बेटा चल नहीं चलना है यहाँ पे, तो ईस्टर्न स्क्वायर जो है सूग वाकिफ का, वहां पर 18 जून से 27 जून के बीच में ये पूरी एग्जीबिशन है, तो ज्यादा दिन नहीं है, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक है, एंड इट्स ओपन टू ऑल, अंदर जाके आप आम वाम खरीदें बात दूसरी है, लेकिन आपको वैसे सब कुछ एकदम बाहर से एंट्री फ्री है, यहाँ पे प्रीमियम मैंगोज की वरायटी मिलती है आपको पता ही है, मैंगो से इंस्पायर्ड यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने भाई ऐसे प्रोडक्ट्स ना तो सोचे ना देखे जो उसके अंदर मिलते, बस सही बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंगो का क्या क्या किया जा सकता है, पर यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें अचार है, उसमें मिठाई है, कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जिनके नाम भी मुझे नहीं पता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आम से बनाए गए हैं, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट तो है ही, एंड अलग अलग आम की वराइटी है, तो अगर आप आम के शौकीन नहीं है, प्रॉब्लम है ये, आप आम के शौकीन कैसे नहीं है, आम तो खाना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको हर किस्म का आम मिलेगा, वो वाला भी आप उस आम में मिलेगा, आप उस आम क्या बात है, वो कौन सा आम होता है जो चूस के खाया जाता है, आपूस ही होता है ना, अल्फांसो होता है, दोनों में से होता है, आई एम कंफ्यूज भाई, मेरी देखो नॉलेज इसमें थोड़ी कम है, मुझे खाने से मतलब रहता है साफ सीधी बात, और जब आप आम ले गए हैं तो जिन्होंने आज तक ट्राई नहीं किया है रोटी से आम कभी नहीं खाया है, ये है टाइम आपके लिए, मेरे मुंह में पानी आ गया भाई ये है टाइम आपके लिए कि आप ये जरूर जरूर ट्राई करें, डेफिनेटली वर्थ इट है, आप बोलेंगे भाई ये तो टेस्ट डिस्कवर ही नहीं हुआ था इससे पहले,
पता ही नहीं था ऐसा भी कोई।

गेस्ट होता है। ये एक टेस्ट है जो आप डिस्कवर करेंगे इस इवेंट में, डेफिनेटली डेफिनेटली वर्थ इट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो हैं इसके बाद थैंक यू जरूर बोलने आएंगे, कबीर भाई अच्छा इवेंट बताया यार, मजा आ गया, तो जरूर जरूर पहुंचेगा। ओके एंड इसके अलावा जो है कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में भी हैं, जिसकी तरफ आपको रुख करना चाहता हूँ। एक स्पेशल स्क्रीनिंग है ऑफ इनसाइड गाजा बाय लैम ट्रोंग, दिस इज को होस्टेड बाय अ फ्रेंच एम्बेसी इन कतर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन कतर। अब यहाँ पे दिस इज अ सीरियस मैटर बिकॉज ये इवेंट है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट ऑडिटोरियम में। आई थिंक 15 को जब आप सुन रहे हैं तो हो चुका है इवेंट, मगर बहुत ही शानदार इवेंट है। एज आई एम टेलिंग यू ये होने वाला होगा तो उस नजरिए सोचेगा, इसमें लोग पहुंचे होंगे एंड दिस वाज अ वेरी प्लान्ड एंड वेरी नाइस इवेंट। इसमें अनप्रेसिडेंटेड लुक है डेली लाइफ ऑफ एजेंट्स फ्रांस जर्नलिस्ट जो कि गाजा में काम कर रहे हैं। एंड ये जब इवेंट बाहर आएगा ब्रिटिश और आपको उसकी रील से कुछ वीडियोज वगैरह सब मिलेंगे, लेकिन ये 6:30 बजे होने जा रहा है। एंड जैसे मैंने कहा जब आप ये सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली हो चुका होगा या होने वाला होगा। सो या तो ये ऐसे इवेंट्स कतर में भी होने जरूरी हैं एंड दिस इज वन ऑफ दोज इवेंट्स जो कभी भी नजरों से जाने नहीं चाहिए बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइव्स दैट दीस जर्नलिस्ट्स लिव देयर। ये बहुत मुश्किल जिंदगी एंड वी शुड ऑल प्रे फॉर देम। अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगेन अ वेरी मेजर इवेंट विच इज अबाउट टू कम। अगला इवेंट है मोनिन कप कतर 2026। ये जो इवेंट है मोनिन कप कतर 2026, ये सेलिब्रेशन है बोल्ड आइडियाज का, क्रिएटिव फ्लेवर्स का, और ये इंस्पायर करता है मिक्सोलॉजी, बेसिकली डिफरेंट टैलेंटेड लोग जो अलग अलग जूसेस को मिक्स करके कुछ ना कुछ बना देते हैं, ये उनके लिए है। सो इट इज लाइक अ स्टेज जहां पे वो अपना शोकेस कर सकते हैं टैलेंट, अपना सिग्नेचर स्टाइल एंड एक दूसरे से कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन के साथ कतर में बेस्ट वाइब्रेंट बेवरेज पेश कर सकते हैं। सो दिस इज लाइक फॉर द बेवरेज कम्युनिटी और ये 13 जुलाई को होगा। रजिस्ट्रेशन डेडलाइन इसके ऑलरेडी 15 जून की तय कर दी गई थी, इसमें टाइमिंग्स एंड टिकट्स अभी तक आए नहीं है, पर जब आ जाएंगे तो आपको बताऊंगा। फिलहाल जो इवेंट की डेट अनाउंस की गई है वो 13 जुलाई है, 13 जुलाई 2026, एंड टाइम रखा गया रात के 12 बजे। ऑब्वियसली इसका अभी कुछ आए नहीं, सो देर इज नो प्राइस अवेलेबल राइट नाउ, बट एज सून एज इट कम्स शोरली आपको बताया जाएगा। उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये मेजर इवेंट्स हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा वीक है उसका ध्यान रखा गया है, कतर सस्टेनेबिलिटी वीक 2026, एंड ये चलता रहेगा अलग अलग लोकेशंस में। इसमें आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, पर फिर भी मैं आपको पहले ही तैयार कर देता हूँ क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसे देखें, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द व्यूइंग एक्सपीरियंस, मगर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इसमें थोड़ा सा टाइम है, अक्टूबर में आएगा ये, बट अभी से मैं आपको तैयार कर दूँ कतर सस्टेनेबल वीक, क्योंकि हम ऑलरेडी 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कतर का प्लान है। ये एक नेशनल कैंपेन है और इसमें हम सबको एकजुट होना चाहिए। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और इसका मकसद है कि कम्युनिटी में एक वाइड रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज रखी जाएं जो कि अवेयरनेस को रेज करें, और कतर जिस तरफ प्रोग्रेस कर रहा है 2030 की तरफ, उस तरफ भी लोगों को आगाह किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए, एंड ये यूनिक प्लेटफॉर्म जो है नेशन के सस्टेनेबिलिटी के विजन को आगे ले जाएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ मेजर इवेंट एंड अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर they said it in a recent interview, उन्होंने बोला कि they are really proud to announce कि इस बार ये 11th edition है, 11वां edition है जो कतर sustainability week का है जो होने वाला है। And I think last to last year or probably last year event, and बड़ा बड़ा कमाल का event है ये, and this definitely shows कि कतर सिर्फ बातें नहीं करता है, कतर अमल भी करता है जिस चीज पे वो believe करता है, and ये बहुत ही engaging public event है। तो जब ये होगा आप जरूर इसका हिस्सा बनेगा, बिकॉज दीज इवेंट्स जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा इक्वल फर्ज बनता है कि इस मुल्क के लिए हम भी उतना ही करें। दिस इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग इवेंट नाउ। अगला जो इवेंट है ये उस जगह पे है जो मुझे बहुत पसंद है, जगह पर्पल आइलैंड कतर, कमाल की जगह है भाई, कमाल की जगह। अगर आपने कभी जिंदगी में काइकिंग नहीं करी है तो सबसे पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, वरना भाई साहब बाहें अकड़ जाती हैं। आप शाहरुख खान वाला भी वो जो प्यार के 3:45 हो जाते हैं, आप वैसे भी हाथ नहीं फैला पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो कायकिंग का एक बहुत शानदार ये पूरा सफर है जो आप तय कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड कायकिंग, समर मैंग्रूव कायकिंग एडवेंचर

शुरू हो रहा है पर्पल आइलैंड में। हालांकि इसकी कुछ फीस है, वो आप देख लीजिएगा, वो आपका मैटर। देखें आप, इसमें बच्चे बड़े सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 8 जून से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक चलेगा। सो यू कैन स्टिल गो एंड डू काइकिंग शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक, 2 घंटे का सफर है। सो यू कैन बुक। अब ये कहाँ पर है, ये अलखोर के पास में कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर आपको मिलेगा। एंड आप यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट दूर से दिख जाएंगे पर्पल आइलैंड, आप लोकेशन डालेंगे तब भी सीधे पहुँच सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके साथ गाइड रहेंगे, पूरी टीम है, एंड दे विल टीच यू हाउ टू डू इट। बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप एंथुजियास्ट हैं, आप नेचर में जाना चाहते हैं, सनसेट को देखना चाहते हैं कायकिंग करते हुए, इससे बढ़िया टाइम है ही नहीं भाई। यही है सबसे बढ़िया टाइम, द सूदिंग एक्सपीरियंस दैट यू गेट विद सच इवेंट्स। वो जो फॉरेस्ट मैंग्रोव एरियाज के जो सूदिंग साउंड्स होते हैं उनको इम्बाइब करते हुए कायकिंग करना फैमिली के साथ, चिड़िया चहचा रही है, इधर उधर हरियाली है, नेचर के बीचों बीच सामने सूरज झल्ला, ओ हो बोल के फील आ गई। अब इस साधन नहीं बेच पाऊंगा इस इवेंट को पर पहुंचेगा जरूर। ये जो टूर है ना, ये इसकी टाइमिंग अलग अलग है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए तो पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आपको काइकिंग के लिए जो बुलाएंगे टूर के लिए, वो सुबह का सिस्टम होगा। सो आप ना सिर्फ सनसेट देख सकते हैं, सनराइज भी देख सकते हैं। इफ यू एन अर्ली राइजर, तो सुबह के 5 बजे से सुबह के 7 बजे तक भी है। सो यू कैन स्टार्ट योर डे इस मैजिकल सनराइज के साथ, अगेन डूइंग द काइकिंग। इसमें यू विल सी द गोल्डन स्काई, द गोल्डन ह्यूज। इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपको बता दूं, इस इवेंट में काइकिंग फंडामेंटल्स एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक वार्म अप सेशन होगा जहां पे आपको वार्म अप कराया जाएगा, सारे काइकिंग इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे, पैडल्स, लाइफ जैकेट्स, सिंगल डबल काइक्स दोनों, एंड 90 मिनट ऑफ गाइडेड काइकिंग एडवेंचर पूरा का पूरा। इसमें साथ साथ फ्री रिफ्रेशमेंट्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, जूस है और कड़क चाय है। और जो स्पीकर्स हैं जो आपके गाइड होंगे, जो आपको सिखाएंगे, वो इंग्लिश और अरेबिक स्पीकर्स हैं। दे वेरी वेल वर्स्ड विद द होल काइकिंग थिंग। सर्टिफाइड लाइफ गार्ड आपके साथ काइकिंग में रहेगा। मैंने एक दफा की थी काइकिंग, पर्ल में करी थी, एंड इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। इसमें बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन और एजुकेशनल ब्रीफिंग सब कुछ बताएंगे आपको। मैंग्रोव के बारे में बताते बताते चप्पू चलवाएंगे आपसे। तो ये जो एक्सपीरियंस है आप जरूर जरूर करें। इनके इसके अलावा आपको एक्सेस मिलेगा बिडोइन कैंप फैसिलिटी का, जहाँ पे शावर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, सिटिंग एरिया है, सब कुछ, एंड मरीन इंश्योरेंस कवरेज साथ में है। ये बहुत बहुत खास इवेंट है, अगर मैं आपकी जगह तो मिस नहीं करता। आई एम गोइंग फॉर दिस इवेंट फॉर श्योर, क्योंकि पर्ल वाला मैं जा नहीं पाया था, बट प्रिटी मच श्योर कि मैं इस बार इंशाल्लाह ताला शाम वाले तो मैं जरूर जाऊंगा भाई। मजा जरूर आता है। जैसे मैंने कहा वो तो वहाँ भी वार्म अप कराएंगे, मगर आप भी थोड़ा वार्म अप करके जाइए घर से, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करके, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार है, बोले बताया नहीं, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग दैट विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक लास्ट इवेंट जो बताना चाहूंगा वो है SFA लेडीज ट्रैक चैलेंज 2026। एस्पायर इंडोर ट्रैक तैयार किया गया है, ऑफकोर्स पूरा मॉल है, AC सब लगा भाई। 6 जून से 26 जून की तरफ सुबह के 9:30 से 10:30 बजे। और ये जो इवेंट है ये जूनियर्स, अडल्ट्स सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इसमें, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाके खुद भी मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन रहेंगे, ऑल वुमेन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, एंड दिस विल बी हेल्ड इन द एस्पायर इंडोर ट्रैक। सो वुमेन्स ओनली स्पोर्टिंग एनवायरमेंट सूटेबल रहेगा हर एज ग्रुप के लिए। इसकी डेट्स 6, 13, 20 और 26 जून। 6, 13, 20, 26 जून। लोकेशन एस्पायर पार्क। टाइमिंग्स बताता हूं क्लासेस की, सुबह के 9:30 से 30 मिनट अडल्ट्स के लिए, सुबह के 9:30 से 15 मिनट अडल्ट्स के लिए, सुबह के 10:10 से 10 मिनट जूनियर्स के लिए, फिर सुबह के 10:25 नन्ने नन्ने शहजादों और शहजादियों के लिए, बच्चों के लिए 5 मिनट के लिए। एंड दिस इज ऑल कैन बी एक्सेस्ड थ्रू QSFA ऐप, ठीक है। अगेन वुमेन्स ओनली, तो शहजादियों का जिक्र ज्यादा करना पड़ेगा मुझे तो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल इवेंट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ऐसे इवेंट में बच्चों को ले जाएंगे तो आप ही का फायदा होगा। तो ये था कतर 2026। फिलहाल कैलेंडर और भी जैसे बढ़ता चला जाएगा बताता चला जाऊंगा। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, एंड मुझे भी ढूंढ सकते हैं आप दोहा वाले कबीर के नाम से। फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: दोस्तों साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें याद रखें आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामीन किराम, जिंदगी को मुअत्तर करने वाली रूह परवर सुन्नतों में एक अहम सुन्नत ये भी है कि लोगों के दरमियान सुलह कराना। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि ताल्लुकात का दीन भी सिखाता है। इंसानों के दरमियान मोहब्बत, अखुव्वत और भाईचारा कायम रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी मकसद के लिए इस्लाह ज़ातुल बैन को सबसे अफजल अमाल में शुमार किया गया है। हज़रत उम्मे कुलसूम बिन्त उक्बा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, वो शख्स झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराता है और इस मकसद के लिए भलाई की बात पहुंचाता है या अच्छी बात कहता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक अजीम उसूल बयान फरमाया। वैसे आम हालात में तो झूठ गुनाह है, मगर अगर मकसद सिर्फ सुलह कराना और दिलों को जोड़ना हो तो ये झूठ नहीं बल्कि नेकी है। इस हदीस से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हर मुसलमान नफरत बुझाने और प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने में लगा रहे तो हमारा मुआशरा किस कदर पुरसकून और खुशहाल हो सकता है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107
6: FM 107
5: दिल से देसी।
7: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
8: روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
9: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام
10: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن FM 107 دل سے دیسی۔
11: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे।
12: सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी,
13: मुफीद साबित होंगी,
12: तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड।
13: सन एंड साउंड
12: आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
13: दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के एक मारूफ खिलाड़ी के बारे में, फुटबॉलर के बारे में, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और इसमें हम सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में नथिंग बेटर दैन टॉकिंग अबाउट फुटबॉलर जो कि कतर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में। तो अल मोइज़ अली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अकरम हकीका अगर नाम किसी ने सुना है तो उनके साथ साथ अल मोइज़ अली का भी नाम लिया जाता है। अल मोइज़ अली कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अहम स्ट्राइकर्स में से एक माना जाता है। सूडान में उनकी पैदाइश हुई थी और अल मोइज़ ने छोटी सी उम्र में कतर का रुख किया और एस्पार एकेडमी के निज़ाम से निकल कर नेशनल स्टेडियम तक पहुँचे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2019 एएफसी एशियन कप में देखने को मिली जब उन्होंने 9 गोल्स करके टूर्नामेंट का रिकॉर्ड बनाया और कतर को पहली मर्तबा एशियन चैम्पियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल मोइज़ की फिनिशिंग पेस और मूवमेंट कई डिफेंडर्स को बहुत ही गहरा चैलेंज की बात करूं तो डेफिनेटली थ्रोज अ चैलेंज एट दोस डिफेंडर्स। वो कतर के लिए फीफा वर्ल्ड कप और कई कल टूर्नामेंट्स में भी खेल चुके हैं। अल दोहेल के लिए भी उनकी परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही हैं और अल मोइज़ आज भी कतर फुटबॉल की पहचान और नए खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल समझे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
5: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के जो फायदे हैं और उन तरीकों के बारे में जो इस सफर को आसान बना सकते हैं।

मैं नहीं, मैं तेरे मकाम व मर्तबे से ना वाकिफ था, ना मैं तेरे अजाब को हकीर समझता था, और नहीं तेरी निगरानी को भूल गया था। लेकिन मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दिया, मेरी कमज़ोरी ने मेरा साथ दिया, और तेरी पर्दापोशी ने मुझे गफलत में डाल दिया, और इस तरह मैं गुनाह में मुबतला हो गया। समझ के देखें, ये कोई गुनाह के बाद जो है ना बंदा बहाना नहीं बना रहा, बल्कि अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है, और अल्लाह के एहतराम को, उसकी अजमत को इकरार कर रहा है, उसका इतराफ़ कर रहा है, बंदा तस्लीम करता है। आगे यूँ कहता है, ए अल्लाह, अगर आज तू अपनी रहमत का दरवाज़ा बंद कर दे तो फिर मुझे कौन बचाएगा? अगर तू अपनी रस्सी मुझसे काट ले तो मैं किसके सहारे रहूँगा? अफसोस, कल जब तेरे सामने खड़ा किया जाऊँगा, जब नेक लोगों से कहा जाएगा कि जन्नत की तरफ बढ़ो, और गुनाहों के बोझ तले दबे लोगों से कहा जाएगा कि रुक जाओ, तो मैं नहीं जानता कि मेरा शुमार किस जमात में होगा। हाय मेरी हालत, जिंदगी लंबी होती जा रही है, मासी का बोझ बढ़ता जा रहा है, आखिर कब तक तौबा करके फिर तेरी तरफ रुजू करूंगा? सामिन कराम, बहुत लंबी दुआ है, आप सब भी इसे जो है ना सर्च करके इस दुआ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ इस दुआ में मुझे वो बात दिखी कि भाई बंदा जो है ना साथ साथ एक तरफ दुआ भी कर रहा है, और अपने अकीदतमंदी, अपने अकायद के हवाले से, और एक पॉजिटिव वेव भी है, एक वाइब भी है इस दुआ में, कि अपने नियतों की तस्हीह करना, आमाल को आगे जो है ना तौबा की तरफ राह को हमवार करना, अजायम पेश करना। दुआ मीन्स जस्ट अपने रब से बात करना है। लोग ये समझते हैं कि मुसीबत के वक्त हम दुआ करेंगे, मुसीबत जब पेश आ, मुश्किल पेश आती है तब हम दुआ करने लगते हैं ये वो, लेकिन दरअसल बात ये है कि ये इस हकीकत को अगर सब जान ले कि दरअसल ये दुआ हम अल्लाह से गोया की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो आप खुशी में हों तब भी अल्लाह से दुआ करें, अब जब मुश्किलात में हों तब तो दुआ करते ही हम और भी ज़्यादा दुआ करेंगे। तो दुआ की हकीकत को जानना ये ज़रूरी है, और दुआ में जो नेचुरल एक चीज़ होती है कि बंदे अपने आप को दोबारा एक्टिव करना, और तरह तरह के शैतान के वसवसा से, वसाविस से, और जन्नात के मस से, सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को महफूज और पाक रखने के लिए, ये एक असलहा अल्लाह सुब्हानहु ताला ने हमें दिया है कि हम हर वक्त इससे अपने आप को लेस रखें। अच्छा जी, तो बहुत यानी गहरी बातें हो गई दुआ के हवाले से। इंशाल्लाह आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा इसको ज़रा आप लोगों से शेयर करूँ, इससे पहले कि हम हमारा जो दुरूद का अमल है वो शुरू करें। तो मौजू है जुमा रिफ्लेक्शन, जब आप जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें हम इज्तिमाई सरगर्मी के हवाले से बात करते हैं, जुमा इज्तिमाई अहमियत को किस तरह शरीयत बार बार इस सिलसिले में हौसला अफजाई करता है कि भाई हम सबको जो है ना इज्तिमाई कारकुन सही माने में बनना है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन तभी सही दिखेगा हमें, जुमे का सही रिफ्लेक्शन तभी दिखेगा हमें जब हमारा डायरेक्शन सही हो, सही है ना? और इसी तरह काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन एक पहलू मोटिवेशन का भी है। तो मोटिवेशन का क्या मतलब है, या मोटिवेशन किस हद तक, चूँकि आजकल हर एक को आपको ये कहते हुए सुनाई देगा कि कह रहा है कौन मोटिवेशन स्पीच की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ये वो। तो व्हाट इज़ मोटिवेशन? तो लोग इतने सुस्त क्यों हो गए, और मोटिवेशन की जो ये नारा लगाया जा रहा है, तो असल इसकी हकीकत क्या है, इसके राज क्या है, और इस मोटिवेशन के क्या सही नतायज हमें देखने को मिल रहे हैं हकीकत में? ये वो जो जिस सतह पर स्पीच होने की ज़रूरत थी, जो जिस नौीयत की ज़रूरत थी वो आ रही

लज्जत तो ख़त्म हो गई, अफसोस उस गुनाह पर जिसकी लज्जत तो ख़त्म हो गई लेकिन उसका हिसाब अब भी मेरे नामे आमाल में बाकी है। अल्लाह अकबर। समझ कर हम ये जुमला हर एक को सोचने पर मजबूर करता है। पास गुनाह ऐसे होते हैं चंद मिनट की होती है ना, लेकिन उसका बोझ सालों तक इंसान के दिल पर रह जाता है। तौबा न हो तो बात तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है। तो यहाँ हमें तौबा की ज़रूरत है। अच्छा, इस सिलसिले में मोटिवेशन की बात इंशाल्लाह हमारी होगी। आप सिलसिले में जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं फ़ोन कर सकते हैं स्टूडियो के नंबर पर 4434377। भाई मोटिवेशन स्पीच की कितनी ज़रूरत है, और आज क्या हमारे मोटिवेशन स्पीच जो है ना इस मंजर आम पर जो हम देखते हैं, क्या ये बायाज इसमें कोई इस तरह यानी वो सही रुख की तरफ जा रहा है, या कोई इसमें कोई बायाज है, कोई यानी दाएं बाएं तरफ ये जा रहा है कि सही है, उसकी जो डायरेक्शन सही नहीं है, यानी मोटिवेशन का सही माना हम नहीं ले रहे हैं और सही माने में हम इसको अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ओके, तो दुआ के हवाले से बात हो रही थी और बताया हमने कि गुनाह की जो होलनाकी है इस पर भी हमने गुफ्तगू की। देखिए कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं सूरतुल फुरकान की बहुत ही चंद आयात यहाँ काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदीही يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا। سامعين الكرام ان آيات میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن بندہ جو ہے نا وہ اپنی انگلی کو اس طرح کاٹے گا ये कहते हुए काश मैंने फ़लाँ शख्स को अपना गहरा दोस्त न बनाया होता, यकीनन उसने मुझे अल्लाह की याद से दूर कर दिया जबकि हिदायत मेरे पास आ चुकी थी। समझ कराम ये जो दोस्ताना जो बातें होती हैं ना दोस्त के हवाले से, हम किसको दोस्त बनाएं, किससे दूर रहें, तो यहाँ तो एक मेयार ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते जो हमें अल्लाह की याद से दूर करते हैं, जो हमें नेकी के कामों से दूर करते हैं, तो ऐसे ये दोस्त नहीं होते। अच्छा, और एक बात यहाँ ये भी है कि ये अफसोस करेंगे कि इस तरह के दोस्त अगर काश मुझे न मिलते। मैं एक अलग एक जाविये से आपको इसकी इस आयत की वजाहत वाज़े करता हूँ। इस आयत को वो ये कि बाज़ औक़ात दुश्मन भी हमारे लिए बेहतर है। दुश्मन जो कि गुमराह हो, अरे दुश्मन की गुमराही को देखकर आपके दिल में तो ये एहसास होगा कि अरे भाई मैं और भी ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्त जो आपके सामने आपके खैर ख्वाह नज़र आ रहा है आपको, लेकिन वो आपके पीठ पीछे छरा मार रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको अफसोस होगा कि लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी। तो बाज़ औक़ात खुला दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक गुमराह करने वाला दोस्त पहुंचा देता है। तो दोस्त और दुश्मन के इन मायीर को सही तरीके से समझना ये एक बहुत ही एक अहम पॉइंट है, नुक्ता है। देखें आजकल हम प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, एक तरफ वो तो ज़रूरी है, लेकिन कौन एविल है और कौन दोस्त है इसकी सही मैयार आपके पास इसका वो माना सही तौर पर वाज़ रहना चाहिए ना, क्योंकि जिसके साथ रहने से आपकी अखलाक में आपके किरदार में जहाँ कुछ यानी आप गलत किसी रवैये के शिकार हो रहे हैं तो उन चीज़ों से आपको मोहतात रहना है ज़रूर, इन लोगों से इन अफराद से। तो इस वजह से कहा गया या वही लता लई तनी लम अतखिज़ फ़लानन ख़लीला, ताकि मैं इसको अपना दोस्त जिगर कहते हैं ना, तो इस तरह जो जिगर का दोस्त इसे न

बनाता। देखिए दुश्मन, जैसे कि हमने कहा, एक तरफ है दुश्मन, दुश्मन ऐसा भी दुश्मन की दुश्मनी, पर आप उसकी हरकत से और भी मोहतात रहते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअर रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, बच्चों को सलाम करना, जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो उन्हें सलाम करें, ये सुन्नत है और इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल भी किया है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, आप बच्चों के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा। रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम की। वैसे बच्चों को सलाम करने की एक हिकमत तो ये है कि दिल में इज्जो इनकसार आए, दूसरे बच्चों को भी सलाम कहने की आदत पड़े, नेज इस्लाम का ये शियार उनके दिलों में जड़ पकड़े।
4: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हमने इंसान को सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिनों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। फिर याद करो उस मौके को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के कि उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। रब ने पूछा, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों का साथ न दिया? उसने कहा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं उस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। रब ने फरमाया, अच्छा तू निकल जा यहां से क्योंकि तू मर्दूद है और अब रोजे जजा तक तुझ पर लानत है। उसने अर्ज किया, मेरे रब ये बात है तो फिर मुझे उस रोज तक के लिए मोहलत दे जबकि सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। वो बोला, मेरे रब जैसा तूने मुझे बहकाया उसी तरह अब मैं जमीन में इनके लिए दिल फरेबियां पैदा करके इन सब को बहका दूंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने इनमें से खालिस कर लिया हो। फरमाया, ये रास्ता है जो सीधा मुझ तक पहुंचता है, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस न चलेगा, तेरा बस तो सिर्फ उन बहके हुए लोगों ही पर चलेगा जो तेरी पैरवी करें और उन सब के लिए जहन्नुम की वाइद है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान।
3: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उर्दू रेडियो कतर के प्रोग्राम कससुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद। कुरान करीम के इन सबक आमोज वाकयात के प्रोग्राम में तलहा अशरफ जमान की तरफ से आप सबका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम कुरान करीम के वाकयात और इनसे निकलने वाले असबाक और हिकमतों पर गौर करते हैं। सामिन इकराम, आज जिस किस्से के हवाले से या जिस वाक़े पर हमारी गुफ्तगू होगी वो है किस्से असहाबुस्सब्त, यानी पीपल ऑफ द सैटरडे की कहानी। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये तो एक कहानी नहीं बल्कि हमारे लिए एक जिंदा वाक़या और सबक है कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। सामने कराम, कुरान करीम में अस्हाब सब्त या पीपल ऑफ द सैटरडे का जिक्र सूरह बकरा, निसा, माईदा और आराफ में किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से दीन हनीफ यानी खुदा के सच्चे दीन की तालीम का सिलसिला उनकी दो शाखों बनो इस्माइल और बनो इसहाक के जरिए कौमों और मुल्कों में फैला है। इसलिए इन दोनों सिलसिलों में शायरुल्लाह के मुतालिक यकसां उसूल पाए जाते हैं। मगर इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादा इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने, जो कि बनी इसराइल कहलाती हैं, अपने ज़माने के अम्बिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ और झगड़े करके बास मामलात में मिल्लत इब्राहिमी से जुदा अहकाम का बार अपने कंधों पर डाल लिया था। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत में इबादत इलाही के लिए हफ्ते के 7 दिनों में से जुम्मे का दिन मुकर्रर फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना यहूद बनी इसराइल ने अपनी रिवायती कजरवी की बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि उनके लिए हफ्ता का दिन इबादत व बरकत का दिन मुकर्रर कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनको हिदायत फरमाई कि वह अपने गलत इसरार से बाज आ जाए और मिल्लत इब्राहिमी के इस इम्तियाज़ को, जो खुदाए बरतर के नज़दीक पसंदीदा व मकबूल हैं, हाथ से ज़ाय न होने दें। लेकिन जब उनका इसरार हद से मुतजावज़ हो गया तो वही इलाही ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह इत्तला दी कि खुदाए ताला उनके इसरार बेजा के नतीजे में जुमे की सआदत व बरकत को उनसे वापस ले लेता और उनके मुतालबा को मंजूर करते हुए उनके लिए हफ्ता को जुमे का कायम मकाम बना देता है। लिहाजा आप उनको मुतले कर दें कि वह अपने इस मतलूबा दिन की अजमत का पासो लिहाज करें और उसकी हुरमत को कायम रखें। हम इस दिन में उनके लिए खरीदो फरोख्त, ज़रात व तजारत और शिकार को हराम करते हैं और इसको सिर्फ इबादत के लिए मखसूस किए देते हैं। कुरान अज़ीज़ ने भी मुख्तसर अल्फाज में इस इख्तिलाफ़ का जिक्र किया है जो उन्होंने हफ्ते में इबादत के लिए एक दिन मखसूस करने के मुतालिक अपने पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। इरशाद खुदावंदी है।

गोया कलजम में मछली का नामो निशान बाकी नहीं रहा। मगर हफ्ते के दिन वो इस कसरत से पानी पर तैरती नजर आई कि जाल और कांटे के बगैर हाथों से आसानी गिरफ्त में आ सकती थी। कुछ दिनों तक तो यहूद इस हालत को सबर आजमा तरीके पर देखते रहे, आखिर न रह सके और उनमें से बाज ने खुफिया तरीकों से ऐसे हीले ईजाद कर लिए कि जिससे भी ये जाहिर न हो सके कि वो हफ्ते के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सब के दिन यानी सैटरडे के दिन मछलियों की कसरत आमद से भी फायदा उठा ले। चौचावाज तो ये करते कि जुम्मे की शाम को कलजम के करीब गढ़े खोद लेते और दरिया से इन गढ़ों तक नहर की तरह एक गोल निकाल लेते और जब हफ्ते के रोज सतह आप पर मछलियां तैरने लगती तो वो दरिया के पानी को खोल देते ताकि पानी गढ़ों में चला जाए और इस तरह मछलियां भी पानी के भाव से उनमें चली जाए। और जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो इतवार की सुबह को इन मछलियों को गढ़ों में से निकाल कर काम में लाते। और बाज ये करते कि जुमे के रोज दरिया में जाल और कांटे लगा आते ताकि हफ्ते के रोज उनमें मछलियां फंस जाएं और इतवार की सुबह को इन जालों और कांटों में गिरफ्तार मछलियों को पकड़ लाते और ये सब अपनी उन तरकीबों पर बेहद मसरूर नजर आते थे। चुनाचे जब उनको उलमाए हक और मुखलिसीन उम्मत ने उनको इस हरकत से रोका तो उन्होंने मुतरिजीन को ये जवाब दिया कि खुदा का हुक्म ये है कि सब्त के दिन शिकार न करो, लिहाजा हम उसकी तामील में हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते बल्कि इतवार के रोज करते हैं, बाकी ये तरकीबें मना नहीं है। और अगरचे उनका दिल और जमीर मलामत करता था मगर कचरवी ये जवाब देकर उनको मुतमईन कर देती थी कि हमारा ये हेला खुदा के यहाँ जरूर चल जाएगा। असल बात ये थी कि वो दीन के अहकाम पर सदाकत और सच्चाई के साथ अमल नहीं करते थे और इसीलिए शरी हीले निकाल कर उनके इम्तिसाल से बचना चाहते थे। वो या खुद फरेबी में मुबतला थे और दूसरों को भी गुमराह करते थे। चुनाचा नतीजा ये निकला कि उन चंद हीला जो इंसानों की उन हरकत का इल्म दूसरे हीला साज अफराद को भी हुआ और उन्होंने भी उनकी तकलीद शुरू कर दी और आखिरकार बस्ती की एक बहुत बड़ी जमात इन हीलों की आड़ में हफ्ते की हुरमत के खिलाफ वर्जी करने लगे। तो इस जमात की ये जलील हरकत देखकर बस्ती ही में से एक सादतमंद जमात ने उनके मुकाबले आकर उनको इस बदअमली से बाज रखने की कोशिश की और इस तरह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को अदा किया। मगर उन्होंने कुछ परवाह नहीं की और अपनी हरकत पर कायम रहे। तब वो साजमन जमात के दो हिस्से हो गए, एक ने दूसरे से कहा कि इन लोगों को नसीहत करना और समझाना बेकार है, ये बाज आने वाले नहीं, क्योंकि ये इस काम को अगर गुनाह समझ कर करते तब तो ये तवक्को थी कि शायद किसी वक्त बाज आकर तायब हो जाए। लेकिन जबकि ये शरी हीले तराश कर अपनी बदअमली पर नेकी का पर्दा डालना चाहते तो हमको यकीन होता जाता है कि इस जमात पर बहुत जल्द खुदा का अजाब आने वाला है, या ये हलाक कर दिए जाएंगे और या किसी सख्त अजाब में मुब्तला किए जाएंगे, लिहाजा अब उनसे कोई तारुज न करो। ये सुनकर साजिदमंद जमात के दूसरे हिस्से ने कहा कि हम इसलिए उनको बराबर नसीहत करते रहना चाहते हैं कि क्यामत में हम अपने परवरदिगार के सामने ये उजर पेश कर सके कि हमने आखिर वक्त तक उनको समझाया और नहीं आरिन मुनकर के फरीजे को अदा किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह नहीं माना। नहीं, हम मायूस नहीं है बल्कि तवक्को रखते हैं कि उनको तौफीक नसीब हो जाएगी और ये अपनी बदअमली से बाज आ जाएंगे। और इस तरह वक्त गुजरता गया, अचानक गैरत हक को हरकत हुई और मोहलत के कानून ने गिरफ्त के कानून ने गिरफ्त की सूरत इख्तियार कर ली, यानी खुदा ताला का हुक्म हो गया कि जिस तरह तुमने मेरे कानून की असल सूरत और शक्ल को हीलों के जरिए मस्ख कर दिया उसी तरह तुम्हारी सूरत और शक्ल भी मस्ख कर दी जाती है ताकि दूसरे लोग भी इबरत और बसीरत हासिल करें।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी,
3: दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर, दिल से देसी।
4: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
5: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
5: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने के जो फायदे हैं और उन तरीकों के बारे में जो इस सफ़र को आसान बना सकते हैं। बहुत से अफराद समझते हैं कि अगर वो कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं तो अब छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। स्मोकिंग छोड़ने के फायदे तकरीबन फौरन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो उसके चंद मिनट के बाद दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर मामूल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। चंद हफ्तों में ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की जो गर्दिश है वो बेहतर होने लगती है और सांस लेने में आसानी महसूस होती है। चंद माह बाद खांसी और सांस फूलने जैसी अलामत में कमी आ सकती है, जबकि फेफड़ों की कारकर्दगी बेहतर होना शुरू हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ दिल की बीमारियां, फालिज और मुख्तलिफ इकसाम के जो कैंसर हैं उनके खतरात नुमायां तौर पर कम होते चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि सिगरेट या स्मोकिंग कैसे छोड़ी जाए। सबसे पहले एक क्विक डेट यानी सिगरेट छोड़ने की तारीख मुकर्रर कर लीजिए। अपने अहलेखाना और दोस्तों को अपनी इस डिसीजन अपने फैसले से आगाह कीजिए ताकि वो आपकी हौसला अफजाई कर सकें, और जैसे ही स्मोकिंग की ख्वाहिश पैदा करने वाले जो अवामिल हैं उन्हें आप पहचानें। मिसाल के तौर पर कुछ अफराद चाय, कॉफ़ी या फिर जहनी दबाव के दौरान ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। ऐसे हालात में मुतबादल सरगर्मियाँ अपनाना मददगार साबित हो सकता है, यानी आप पानी ज़्यादा पी लीजिए और वॉक शुरू कर दीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए या फिर गहरी सांसों की जो मश्क है वो कीजिए, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। निकोटीन गम और इसी तरह से बेशुमार जो हैं वो चीज़ें दस्तयाब हैं, आप जो हैं वो स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं और ये बाज़ अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित भी होती हैं। याद रखिए स्मोकिंग छोड़ना एक अमल है। अगर किसी से दोबारा जो है वो स्मोकिंग शुरू हो गई है या वो सिगरेट जो है वो लेना शुरू हो गए तो मायूस ना हो, दोबारा कोशिश कीजिए क्योंकि हर कोशिश आपको कामयाबी के करीब ले जाती है। और फिर यही इस बात के साथ कि सिगरेट नोशी जो है वो आप तर्क कर दीजिए अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए। इस तरह करके आप अपने ख़ानदान को एक बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं। तो सेहतमंद जिंदगी का आगाज आज ही कीजिए। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और स्मोकिंग से दूर रहिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. दोस्तों वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स के बढ़ते क्रेज के बीच एक नया रियल स्टेट फ्रॉड मार्केट में आया है मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम फ्रॉडस्टर्स अब वर्चुअल वर्ल्ड में फेक प्रॉपर्टीज कमर्शियल लैंड्स और डिजिटल लग्जरी एसेट्स बेच रहे हैं ये लोग आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करते हैं और बायर्स को झूठे डॉक्यूमेंट्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाकर फंसाते हैं मासूम इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो किसी बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें मोटा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन जब वो पैसा क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में पे कर देते हैं तो वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही रातों रात गायब हो जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल्स निकल आते हैं 2026 में मेटावर्स ओनरशिप के क्लियर लॉज ना होने की वजह से विक्टिम्स को लीगल हेल्प मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है डिजिटल एसेट्स खरीदते वक्त पूरी रिसर्च और वेरिफाइड प्लेटफॉर्म का ही सिलेक्शन करना आपको इस नए मेटावर्स फ्रॉड से बचा सकता है कई बार फेक वर्चुअल ब्रोकर्स खुद को बड़े प्लेटफॉर्म के एजेंट्स बताकर सोशल मीडिया पर फेक लिंक्स शेयर करते हैं जो असल में फिशिंग प्लेटफॉर्म होते हैं और आपका पूरा डिजिटल वॉलेट लिंक होते ही साफ हो जाता है दोस्तों आपको FM 107 पे सॉल्यूशन भी मिलता है अगर कोई ब्रोकर आपसे आउट ऑफ प्लेटफॉर्म पेमेंट करने को कहे तो तुरंत रुक जाएं क्योंकि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है वर्चुअल एसेट्स की मार्केट रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उनके कम्युनिटी फोरम और पास्ट ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री को ओपन सोर्स ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जरूरी है कि वेरीफाई करें दोस्तों ये था नए जमाने का नया स्कैम मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी प्रॉपर्टी का स्कैम इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जमाने के स्कैम के बारे में बात करते हैं
0: स्कैम अलर्ट कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ आरजे सफा और आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है जूनियर जनाब। भाई आप सभी को मेरी जानिब से वेरी गुड डे और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन वंडरफुल जा रहा होगा। साथियों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जूनियर जनाब, जहाँ हर हफ्ते मैं यानी सफा करवाती है आपकी मुलाकात एक ऐसे यंग अचीवर से जिसकी बातें सुनकर आपको लगता है कि भाई इनका तो अलग ही लेवल का बूस्ट है, जो आपको आपके ख्वाब पूरा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। क्यों ना करें भाई, उनकी अपनी अचीवमेंट भी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें सुनकर आपको खुद ब खुद बूस्ट मिल जाता है। आज जो अचीवर हमारे साथ हैं उनकी ऐसी कहानी है जो ना सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान के अंदर अगर पैशन हो, मेहनत करे और डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करे तो उनके ख्वाब जरूर पूरे हो सकते हैं। हमारी आज की मेहमान हैं एक यंग अचीवर जिनका नाम है वैष्णवी। वैसे तो मैं इनका इंट्रोडक्शन इन्हीं से लूंगी लेकिन इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं बातें बता देती हूँ कि ये फुटबॉल फील्ड की शाइनिंग स्टार हैं भाई, स्कूल कॉम्पिटिशन्स की चैंपियन हैं और स्टेज पर फैशन और म्यूजिक की भी रोशनी बिखेरती हैं। वैष्णवी ने इतनी छोटी सी उम्र में कामयाबी की इतनी लंबी लिस्ट बना ली है कि आप उनको सुनकर वाह वाह करेंगे, चाहे वो फर्स्ट प्लेस इन एजुकेशन अबव ऑल फुटबॉल चैंपियनशिप हो या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड एट स्कूल क्लस्टर्स हो। वैष्णवी ने हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है। नॉट जस्ट दैट साथियों, उन्होंने एक्सपो 2023 फैशन शो QIAF अवार्ड भी जीता है और हाँ ये कैसे भूल सकते हैं भाई, एवास्कस कंपटीशन में टॉप किया है भाई इन्होंने और DPSMIS स्कूल की ये आवाज भी बनी है। और ये सारी चीजें अलग अलग लोगों ने नहीं की, इनका चेहरा एक ही है और इन्होंने ही एज अ इंडिविजुअल ये सब कुछ अचीव किया है। आज के शो में हम उनसे बात करेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी रही, उनको क्या चैलेंजेस फेस हुए और उन्होंने कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया और अपने ख्वाबों के बारे में भी बताएंगी कि भाई उनके दिल में क्या चल रहा है। सो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन के लिए जहां आप सुनेंगे वैष्णवी की कहानी उन्हीं की जबानी। तो भाई मैंने तो बहुत कुछ बोल लिया, अब आई वैष्णवी की बारी। वैष्णवी हाउ आर यू?
3: I'm fine, how are you?
2: Alhamdulillah, all good. अच्छा भाई ये बताएं कि अभी हमसे मैंने इनसे पूछा था कि इंग्लिश के उर्दू मिक्स मैच चलेगा?
3: हाँ
2: मिक्स मैच चलेगा। अच्छा कैन यू टेल आवर लिसनर्स अ बिट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट हाउ योर जर्नी एज अ यंग अचीवर स्टार्टेड? चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं।
3: Hi, I'm Vaishnavi. I'm 13 years of age and my journey as a young achiever, it started when I was in 5th grade. When I was in 5th grade 2022, Qatar mein FIFA ho raha tha. FIFA dekh ke mujhe ye inspiration aaya ki agar main bhi aise kuch competitions win kar sakun, agar mujhe bhi awards aur medals mile to kitna acha lagega, mummy aur papa ke chehre pe wo proud feeling bhi aaye.
2: सही सही सही सही। अच्छा मोस्टली हम एज अ चाइल्ड एज अ किड हमारा यही होता है कि बस किसी तरह से ना अम्मी अब्बू को इम्प्रेस कर दें। आपका भी यही मामला रहा है
3: जी?
2: सम हाउ जस्ट फिट इन टू सम बॉक्स सो दैट वी कुड मेक देम प्राउड ऑफ अस।
3: या
2: राइट। अच्छा ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया मुझे कि ये फीफा के दौरान ये फुटबॉल का माशाल्लाह से पूरा एक हमने इवेंट कतर ने होस्ट किया और हमने इसे विजुअली हमने इसको एक्सपीरियंस किया, तो ये बताएं कि उससे पहले कभी भी सोचा था कि फुटबॉल वुड बी समथिंग कि जिसके लिए आप कहो कि भाई आई विल लिव फॉर दिस?
3: एक बार मैंने सोचा था और वो भी फीफा 2018 के टाइम में था. हाँ, जब मम्मी और पापा ने टीवी का नया सेट लिया था देखने के लिए.
2: ओके ओके ओके. अच्छा, कोई फुटबॉल का कोई ऐसा प्लेयर है जिसे इंस्पायर? अक्सर लोग कहते हैं अब मैं हूँ, बेशक मुझे टूटी फूटी फुटबॉल खेलना आती है, लेकिन एक होता है ना CR7, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा है?
3: एक्चुअली मैं काफी फीमेल फुटबॉलर्स को भी देती हूँ. एक मैरी अर्ब्स गोली, और मेल में तो हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरा फेवरेट.
2: अरे भाई, हमारी दोस्ती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? CR7 के नाम पे हमारी दोस्ती हो सकती है. ओके, अच्छा भाई, जैसा कि मैंने लिसनर्स को भी बताया था कि आपने एजुकेशन अबव ऑल में भी पार्टिसिपेट किया. गोल आई बिलीव इट वाज गोल्स फॉर गुड, राइट? तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्या था, कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या चीज थी?
3: गोल्स फॉर गुड एक्चुअली हुई थी जब मैं सिक्स ग्रेड में थी, 2023 में हुई थी. कतर फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की थी. इट वॉज अ चैरिटी इवेंट जो एजुकेशन फंड कर रहा था.
2: सही.
3: तो हमारे सब एज ग्रुप्स के फुटबॉल कॉम्पिटिशन थी, और जब हमें सेकेंड प्लेस मिला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. और वेन आई लिफ्टेड द ट्रॉफी बिफोर दे गिव वेन दे वर गिविंग मी द मेडल, फिर हमें पता चला कि क्वीन मदर शेखा मोजा हमें खुद मेडल दे रही थी.
2: ओह, दैट वुड बी ह्यूज. अच्छा, मुझे सुनकर गूज बम्स आ रहे हैं. तो फील कैसा हो रहा होगा? आई कैन इमेजिन. मतलब इट्स समथिंग स्पीचलेस, राइट?
3: या टू बी सो क्लोज टू हर, टू फील दैट यस आई एम नेक्स्ट टू द क्वीन मदर, शी इज अवार्डिंग मी फॉर समथिंग आई हैव डन. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस.
2: ओह, इट वाज अ वेरी, ओह, मुझे भी सुनकर ऐसा वाह वाह. अच्छा, ये बताएं कि Do you think it was a big deal for you to win that thing? Yeah, आपने कहा अच्छा चीज है, next achievement भी आएंगी, I will do something else also.
3: No, see, that was the first medal of football competition I had won. That was the first one I had participated in. मतलब ये पहली अवार्ड जीती थी मैंने जब मैं स्टार्ट ही कर रही थी इसके साथ. तो हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी डील थी कि आप पहले टाइम में ही सेकेंड आ गए.
2: ओहो. अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
0: हर बच्चा एक स्टार होता है, और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
2: टेल मी, यू हैव वन मेडल्स एज द बेस्ट प्लेयर in evolution sports twice, I believe, right? So ye batayein ki what do you think makes you stand out from on the field, ki aapko ke nahi bhai main alag se nazar aati hu, and this is why jaise hum apne aap ko sell karte hai na jab hum workplace pe jaate the, you should hire me because I have these qualities. So what is that thing in you that you can say bhai proudly I stand totally, मैं बिल्कुल क्लियरली मैं फील्ड पे अलग से नजर आऊंगी, क्यों? बिकॉज आई हैव दिस स्किल.
3: आई थिंक दैट वॉज बिकॉज जब मैंने ये मेडल जीता था, हमारा समर कैंप चल रहा था एक वीक का, और वो समर कैंप में एक दूसरे को जानते नहीं कोई, तो इट्स लाइक यू हैव टू मेक फ्रेंड्स ओवर देयर. सो योर फ्रेंडलीनेस एंड योर एटीट्यूड डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट. सो आई थिंक कि जो व्हाट मेड मी स्टैंड आउट वॉज फर्स्ट वॉज माई फ्रेंडलीनेस, एंड आई थिंक हाउ आई फेयरली प्लेड इन गेम्स. I supported my team, but I wasn't mean to the other team either.
2: अच्छा, मुझे
3: स्पोर्ट्समैनशिप
2: सही ऐसा जितना आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं. मतलब
3: जी,
2: फ्रेंड्स बना लेती हैं जल्दी से, इंट्रोवर्ट टाइप की नहीं है.
3: एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन माय मदर हैज फोर्स्ड मी इनटू पब्लिक स्पीकिंग.
2: अच्छा, ये भी होता है, बट डू यू थिंक इट वॉज, एक तो होता है ना बच्चे कहते हैं कि भाई अम्मा अब्बा ने फोर्स कर दिया, तो आपको लगता है ये फोर्सफुलनेस पॉजिटिव थी?
3: जी
2: थी. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, अब इस बात पे तो फिर कोई हमारा डिस्कशन हो ही नहीं सकता कि हम कहें अम्मा अब्बा बेटा हमेशा सही होते हैं. ठीक है. अच्छा भाई ये बताइएगा, इन फुटबॉल विच रोल और पोजिशन डू यू लव प्लेइंग द मोस्ट एंड वाई?
3: आई फील लाइक आई लव प्लेइंग डिफेंडर द मोस्ट बिकॉज इट गिव्स मी अ चांस टू, मतलब इट गिव्स मी लाइक आई कैन गिव द टीम अ चांस टू स्कोर अ गोल, और आई कैन मतलब पीछे से डिफेंड कर सकते हैं, और आई कैन प्रोटेक्ट आवर गोल. सो या आई थिंक डिफेंडर इज अ वेरी नाइस पोजिशन.
2: बहुत मैं कहूँ कि बहुत कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजिशन है बेटा. ही मतलब आप कहो कि पूरी टीम मेरे ऊपर रिलाय कर रही है, मुझे कोई कभी खड़ा करे मैं तो वैसे ही डर से कांप जाऊँ कि भाई पूरी टीम मेरी तरफ देख रही है कि आप ऐसी पोजिशन पर हो.
3: एक्चुअली मैंने तो पहले स्ट्राइकर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मुझे स्ट्राइकर अच्छा नहीं लगता, उसमें ज्यादा ही दौड़ना पड़ता है, नीचे ऊपर नीचे. मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं था, मतलब मुझे इतना मतलब ये भी नहीं था स्ट्राइकर का. तो जब कोच ने मुझे एक बार डिफेंडर में डाला, अरे ये तो बहुत अच्छी है.
2: गुड
3: या
2: हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है. कोच वाह वाह, अच्छे कोच भाई, ऐसे कोच अल्लाह ताला सबको दे जो आपका हिडन टैलेंट ढूंढ ले. कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्हेन यू गो फॉर ट्रेनिंग्स एंड स्टफ, तो कोच आपको साइड, अगर आप ये नहीं हो तो आपको साइड पे कर देते हैं.
3: जी
2: ऐसा होता है. बट योर कोच आई बिलीव फाउंड आउट समथिंग स्पेशल इन यू के नहीं, अच्छा बच्चा एक जगह नहीं खड़ा हो पा रहा तो दूसरी जगह ट्राई करके देखा जाए.
3: या क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग्स रहते हैं उसमें हमारे परमानेंट पोजीशंस नहीं रहते अभी.
2: सही,
3: तो चेंज करते हैं वो लोग.
2: हां गुड नाइस, दैट मींस दे आर मेकिंग यू लर्न
3: न्यू पोजीशंस.
2: न्यू पोजीशंस ओके. अच्छा ये बात बताइएगा कि फुटबॉल जो है ना, हम सबको बताया कि फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट.
3: या
2: एक दूसरे के, आप कह लें कि इशारों से, आंखों के इशारों से, वर्बल वॉइसेस से, मतलब टीम ही काम कर रही होती है सारा. तो आपको क्या लगता है, हाउ डू यू बैलेंस पर्सनल अचीवमेंट विद टीम स्पिरिट?
3: आई फील लाइक वी शुडंट ब्रिंग दैट, वी शुडंट बोस्ट लाइक आवरसेल्फ व्हाट वी हैव डन व्हेन वी आर एज अ टीम, बिकॉज यू, या यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, बट देन व्हाट वुड यू बी विदाउट गोली, without the striker, who would score goals, who would protect your goal.
2: सही.
3: तो मतलब टीम स्पोर्ट होती है, everybody plays a role. You can't single yourself out and say that yeah, I'm the best over here.
2: हाँ ये भी बड़ी अच्छी thought है. ये अक्सर मोस्टली लोगों के अंदर नहीं होती, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ डिफेंड कर ली, या मैंने, चलो फॉर एग्जाम्पल कीपर भी हो तो मैंने कुछ डिफेंड कर लिया, या डिफेंडर हो तो मेरी वजह से, मी, इट वॉज मी. यू डोंट हैव दैट thing in you work as a team.
3: वो तो जोक जोक में, मतलब दोस्तों में कर लेते
2: हैं, जता लेते हैं. अगर नए, देखिए हमने अपनी क्या कहते हैं, हमने अपने शो ऑफ भी तो करने होते हैं ना.
3: जी जी उस समय क्रेडिट तो नहीं लेना चाहिए वैसा.
2: अच्छा चलिए भाई, एज अ टीम वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन लाइक पुलिंग दोस्तों में चलती रहती है. खैर है, वो तो एक फन पार्ट का हिस्सा है. अच्छा ये बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, हु हैज बीन योर बिगेस्ट सपोर्टर इन योर फुटबॉल जर्नी? योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कोच, हु डू यू गिव दिस क्रेडिट टू? अगर मैं बोलूं कि एक या दो मेंशन करें लोग जिनको आप प्राउडली कहेंगे हाँ अगर ये नहीं होते ना तो माय जर्नी वुड हैव एंडेड ऑलरेडी.
3: I feel like one would be my coach and then second would be my mother. My coach, because in school he has coached me through all of these competitions mein unhone coach kiya hai, and he's matlab improvement pe bhi points diye hain. Aur mummy pehle mujhe boli thi ki she was the one who first made me join a football club.
2: Nice. I like it. Okay.
3: She's the one paying for everything. So the one paying for me to go to competitions, all the new boots, the equipment, everything. So
2: you are grateful, gratitude. Amma kabhi show kiya hai, amma I love you, thank you, bola hai mujhe. Because aksar jo na bacche confuse hi kar jate hain bhai, jitna pyar amma abba ko jatana chahiye na, dikhana chahiye. You will always remember this, you will always be their baby. Aap chahe 50 60 years ke kyun na ho jao, if they are alive they will always look towards you as a toddler. Ye hota hai. अच्छा भाई, वेरी आई एम वेरी इम्प्रेस माशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है कि जिसके बारे में अभी भी एक हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है जो कहता है लड़कियां और फुटबॉल. आपका कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है? कभी आपके पेरेंट्स को आपने कभी देखा है आपको सपोर्ट करते हुए अगेंस्ट दीज स्टीरियोटाइप्स?
3: My parents have, मतलब हाँ उन्होंने सपोर्ट दिया है. आई थिंक ऐसे ज्यादा आपको मिलेंगे स्कूल में.
2: स्कूल में मिलेंगे?
3: स्कूल में मेरे क्लास में, मेरे क्लास में लड़कों का, लाइक जब आप बताते उन्हें कि हाँ फुटबॉल खेलती, their first reaction is never PE ke class mein open hamari team mein aa jao. It's never that. They will ask you questions about football. Aditya, how well do you know football?
2: They have insecurities. ladkiyan football nahi khel sakti. Wo wala scenario ek aa jata hai. Acha, mostly phir aap usko kaise deal karti?
3: Ignore aur usually kya hota hai ki hamare school competitions mein they see me playing. तो उसके बाद मतलब पहला जो कंपटीशन था हमारा उसके बाद तो कभी किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं.
2: अरे वाह, ये तो वही वाली बात हो गई. मुझे आपकी बात सुन के बात याद आ रही है, हम कहते हैं ना एक कोट था कि वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस स्पीक फॉर यू. ओ माय गॉड, दैट वुड हैव बीन टू मच लाउड. जब जीत कर आओ ना तो सबको एक ऐसा शट अप कॉल मिलता है ना, पहले इग्नोर करो और फिर दिखाओ कि मेरे पास टैलेंट क्या है. And then your success says it all. Very good, very good. अच्छा, ये टेक बहुत अच्छा है. अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने एक अपनी प्लेस बनाई स्कूल इंटर हाउस फुटबॉल कॉम्पिटिशन में, ठीक है, वॉज इट मोर देन अ चैलेंज प्लेइंग अगेंस्ट योर क्लासमेट्स या आपके कोई फेलोज होंगे आपके साथ जो अगेंस्ट वाली टीम में थे?
3: जी, हमारे जो इंट हाउस हैं उसमें मतलब सब जो स्कूल टीम पे हैं वो सब कंबाइंड हाउसेस हैं.
2: ओके.

0: हर एक प्लेयर मतलब कोई कोई प्लेयर डिवाइडेड रहेंगे.
1: सही.
0: फोर हाउसेस थे हमारे और प्लेयर्स तो हर जगह डिवाइडेड थे. तो ऐसा भी होता था कि वी वर प्लेइंग अगेंस्ट आवर ओन टीममेट्स फ्रॉम द स्कूल टीम.
1: तो इसमें ये बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो होता है. इमोशनली है ना आप जुड़े हुए होते हो दोस्तों के साथ, लेकिन खेलना अपनी टीम के साथ होता है, तो ये कैसे बैलेंस होता है?
0: फिर मतलब व्हेन यू आर अगेंस्ट दैट टीम, मतलब आपको मन भी नहीं होता कि हाँ उससे बॉल ले लें, उनके उनके सामने जीत जाए, लेकिन हो जाता है. मतलब देयर इज सम लाइक पर्सनल लाइक दिस, बट देन इट्स ऑल लाइक फन, यू नो, इट्स ऑल
1: स्पोर्ट्समैनशिप.
0: या स्पोर्ट्समैनशिप मतलब ओके फाइन वी वन अगेंस्ट यू, लेकिन यू वी स्टिल ऑन द सेम टीम एज द स्कूल ना. इट्स देयर इज नथिंग पर्सनल.
1: अच्छा, इसकी एक बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी मिसाल मुझे कभी किसी ने दी थी कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ इट्स गेम्स, तो अगर आप कभी ऐसा होता है ना कि अगेंस्ट यू प्लेइंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, तो मेक श्योर यू टॉक टू देम अबाउट इट कि भाई आई एम वेयरिंग अ कैप फॉर माय टीम, ये मेरी टीम की पर्सनालिटी है, जो आई एम नॉट प्लेइंग अगेंस्ट यू, आई एम जस्ट अ प्लेयर, डोंट टेक इट पर्सनली. यू शुड हैव फ्रेंड्स लाइक दिस टू अंडरस्टैंड. हाँ, उनको टीज करना बाद में कि आई वन अगेंस्ट यू, वो तो हमारे हमें करना ही करना है वो तो. अच्छा ये चलो चलो जाओ जाओ, मैं तो फलानी गेम में तुमसे ऐसे जीत गया था. चलो मैं ये भी इट्स अ बैलेंस एंड इट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा भाई ये बताइएगा, जब आपको आपकी कोई अचीवमेंट होती है, जब आपको कोई अवार्ड फॉर एग्जांपल आपकी फुटबॉल में मिला, तो द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जब आपको अवार्ड मिला ना, आपको द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का, तो ये बताइएगा कि एट स्कूल क्लस्टर्स फुटबॉल आपको कैसा कैसा फील हुआ, आपको रिएक्शन क्या था लोगों का? और वो एक होता है ना जब आप अपने आप को बिल्कुल शाहरुख खान वाली पर्सनालिटी में लेकर आते हैं, आप कहते हैं ओह माय गॉड आई फील लाइक अ सुपरस्टार, ऐसा था?
0: एक्चुअली मेरे साथ ना हर एक गेम में हर एक स्पोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिला था. तो मुझे मिला था फुटबॉल पे, मेरे साथ स्टेज पे आई थिंक चार और थे, वॉलीबॉल हैंडबॉल और स्पोर्ट्स के लिए थे, और प्रिंसिपल मैम हमें दे रही थी अवार्ड्स. तो हाँ ऑफ कोर्स मुझे लगा था कि हाँ मुझे आई एम सो गुड एट फुटबॉल, हमें मुझे
1: कॉलर चढ़ा करो. अच्छा अच्छा, फिर ये होता है कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है ना, तो स्कूल में आपकी चाल चलन भी चेंज हो जाते हैं. द वे वी वॉक, द वे वी थिंक, ओह माय गॉड आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट द स्कूल राइट नाउ.
0: आई थिंक द बेस्ट मोमेंट इज जब आपकी जो ट्रॉफी है उस पर वो नाम लिख के अराइव होती है, फिर आप क्लास मतलब क्लास जाते हो हाथ में पकड़ के आते.
1: दैट्स द बेस्ट मोमेंट ऑफ कोर्स. You achieved this because of me and it's going to be there for the rest of the time. Wow, good. अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
1: अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा कोई लेसन है जो आउटसाइड द फील्ड आप कहें आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सिखाया आपकी गेम ने आपके स्पोर्ट ने?
0: आई थिंक ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आई थिंक द मोस्ट क्लीशे वन इज डोंट नेवर गिव अप, लेकिन दैट ऑल्सो इट लाइक गोज इन टू लाइक डीपर भी, एज इन इफ यू रियली लाइक आई कोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेड दिस, इफ यू रियली इफ योर लव फॉर द गेम or the work you are doing is it should be greater than the fear you have of failure. So agar aapko itna game pasand hai or you love what you're doing so much, you wouldn't be scared of what if I fail.
1: Sahi. Acha ye bhi ek baat hai and it is true. Ye sunne mein baat bahut choti lagti hai ki never give up. It's always about you reach the finish line. It's not about which आप कह लें कि आप 1, 2, 3 कौन से लेवल पर आप आते हो. द पीपल देर आर सम पीपल, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, हु नेवर स्टार्टेड बिकॉज दे वर स्केयर्ड. तो इफ यू आर स्टार्टिंग एंड यू आर फिनिशिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ये मत सोचो जब आप शुरू करते हो ना, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव समथिंग ना, इफ इट गोज बैड, इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस. इफ यू आर केपेबल ऑफ फिनिशिंग इट विदाउट हैविंग अ क्लाउडेड माइंड कि नहीं मुझे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आना था, मैं कॉम्पिटिशन का हिस्सा था, यू आर गोइंग नोवेयर. Your biggest competition is you yourself. If you're getting out of your comfort zone, if you're doing things like you said, you're introvert, but you pushed yourself, you pushed your limits and you went for public speaking. And I believe, jaisa aapne pehle din start kiya hoga, when you look yourself in the mirror now, you would be a totally different person.
0: Yes, I think so.
1: It was a hard journey.
0: Yeah.
1: You came out of your comfort zone. You were embarrassed. People made fun out of you. But in the end, Now you feel achieved. मैंने कुछ तो किया लाइफ में, कुछ तो किया ही है बाबू, कुछ तो सीखा है. सो आई ऑल्सो बिलीव दिस स्ट्रांगली कि हम कहते हैं ना कि जब जीतता वही है जिसको ना हारने का डर होता है ना जीतने की लालच होती है. आई एम माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन. यू कैन नॉट जज मी, यू डोंट नो मी. तो अपना माइंड सेट ऐसी क्लियर रखना चाहिए भाई. वेरी गुड, आई लाइक दिस. अच्छा भाई ये बताइएगा कि यू हैव ऑल्सो वन आई बिलीव QIAF अवार्ड इन एक्सपो, इज इट 2023 का जो था फैशन शो.
0: या दैट वाज इन एक्सपो जो बिगदा पार्क में आई थिंक हुआ था. इट वाज फॉर द कतर इंटरनेशनल कुछ फेस्टिवल था उनका. से तो आई हैड गॉन फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से हमें सब कॉस्ट्यूम्स और वो सब दिए गए थे.
1: सही.
0: बट ओवर देयर ये मेरा था बिकॉज देयर वाज प्रेस एंड देयर एवरीथिंग, इट वाज अ फुल ऑन इवेंट. सो टीवी पे न्यूज़ पे भी था वो. सो आई फेल्ट रियली, मतलब दैट वाज अ डिफरेंट वे ऑफ यू नो शोइंग कॉन्फिडेंस. हाँ यू शो कॉन्फिडेंस ऑन द फील्ड, बट दैट वाज अ होल डिफरेंट वे यू शो
1: योरसेल्फ. सही सही. अच्छा आपने टेल अस अबाउट द एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या किया था और उसके अंदर कुछ ऐसा था कि आप कहें कि भाई कंफ्यूजन थी, देयर वाज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट नो बट येट आई ओवरकम इट.
0: आई हैड अ प्रॉब्लम विद हाउ on the like the fashion show, the ramp, you have to present yourself, you have to look confident, you have to look the part. I had a problem with being confident, so
1: everybody all eyes on me and yeah. I'm still,
0: and you know how they have to maintain that very serious face, matlab maintain karna padta hai. Mere se nahi ho raha tha wo. I kept laughing. Meri teacher ne ek do bar mujhe matlab ye
1: aankhein dikhayi.
0: Haan aankhein dikhayi.
1: Sahi.
0: तो फिर मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फिर मतलब आई वाज स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट नॉट टू लाफ ऑन द रैंप.
1: अच्छा सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है. सम पीपल लुक गुड व्हाइल देयर सीरियस फेस, मतलब हम कहते हैं ना बिल्कुल पोकर फेस बनाकर आप यूं करके नीचे यू ट्राई टू एक्ट लाइक अ माचो. और कुछ लोग जो होते हैं वो इफ दे बिकम सीरियस तो मजा नहीं आता उनको देख कर. सकता है नो देयर नॉट,
0: बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन लगता है.
1: It is there. So, congratulations for that also. ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से कैरी करते हो कहाँ पर. आई थिंक कि हम कहते हैं ना कि अपनी डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, बी हु यू आर. तो यू आर हु यू आर, नॉट चेंज फॉर एनीबॉडी. आई एडमायर दैट. मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, अपनी फेवरेट हूँ. अच्छा भाई, अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपसे शो शुरू होने से पहले मैं बात कर रही थी, तो ये जो बैलेंस है स्पोर्ट्स का और एकेडमिक प्रेशर का कैसा चलता है?
0: कभी कभी
1: सच बताना, सच सच.
0: हाँ कभी कभी मुझसे हैंडल नहीं हो पाता वो, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिस रहते हैं उनका अलॉटेड टाइम नहीं रहता कभी. खाली इफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने बोला अभी क्लस्टर्स भी आ रहा है हमारा, तो वो सुबह को बुलाते हैं स्कूल के पहले.
1: सही.
0: तो वो ठीक हो जाता है. लेकिन कभी कभी जो ये गोल्स फॉर गुड थे और ये चैरिटी इवेंट्स, वो लास्ट 3 पीरियड्स स्कूल के ही ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो मेरा वो नोट्स और वो जो जितना भी मैम उस मतलब पीरियड पे पराठी पढ़ाती हैं, वो कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगता है.
1: अच्छा Now the question which I am going to ask you, I am going to be very clear about it. Listeners से मैं बिल्कुल clear जाती हूँ. हर इंसान का ना अपना living standard होते हैं और अपना एक दिमाग होता है. ठीक है. There have been footballers as well. There have been many successful people around us जिन्होंने ये सोचा कि जो मेरा interest है ना, जो मेरी hobby है ना, मैं उसको पढ़ाई छोड़कर उसके ऊपर चलेगा. ठीक है. तो आपको कैसा लगता है, इज इट द राइट थिंग कि अगर आपको कभी लाइफ में ये बोला जाए कि वैष्णवी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अपना स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, तो डू यू थिंक इट इज द राइट थिंग टू डू? आई थिंक दैट आई वुड यूज इट, मतलब एज फार एज गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर इट. सो मतलब अगर मतलब आई एम गुड एट फुटबॉल, दैट्स वन थिंग आई नो, तो अगर मुझे उसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाए कॉलेज में तो दैट इज गुड, बट देन आई वॉन्ट टू फोकस ऑन एकेडमिक्स ऑल्सो. बिकॉज लाइक आई डोंट हैव दैट मच आग दैट आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू बिकम
3: पैशन दैट डिजायर कि आपको भाई नहीं मुझे वो अपनी फुटबॉल ही ज्वाइन करनी है. यू हैव अ पैशन फॉर स्टडिंग एज वेल राइट?
1: यस आई हैव अ पैशन टू बिकम अ लॉयर.
3: ना माशाल्लाह. सो आई विल कीप यू, आई विल कीप इन टच विद यू कुछ थोड़े बहुत सालों में इंशाल्लाह. फिर मैं जब कॉल करूंगी मैं साल गिन लूंगी कि कितने सालों वालों मैं पूछूंगी फिर फोन करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मे गॉड ब्लेस यू विद अचीविंग योर गोल्स इंशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि अब हम बात करते हैं थोड़े चैलेंजेस के बारे में, ठीक है? विद सो मैनी अचीवमेंट्स, व्हाट वॉज द टफेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस अलोंग द वे टिल नाउ? What do you think it was the toughest thing to do?
1: I think the toughest thing to do was, you know, have the proper, for me in sports, it was always have the proper physique and strength. Yes, because so many many times what happened was when we as a club outside school used to go against, वैसे when we go with school, it's all just, we're all Indians, we're all मतलब same type के हैं, तो it's not that big of adjustment for us. But then club ke saath, it's all people from different countries, different physiques, different unka strength rehta. So to adjust and to stand up, dekhte hue bhi they look tall. To aise matlab mind mein ye ho jata hai ki haan inko kaise defend karenge, inse ball kaise.
3: Are koi nahi, koi nahi, practice karte raho shehzadi, pahunch jaoge kahin tak inshallah. Acha ye bataye ki besides from being an achiever, besides from people expecting more from you, how does your normal day feels like? वैष्णवी खुद क्या करती है नॉर्मल डे में, क्या दिमाग में चल रहा होता है, क्या दिल में चल रहा होता है, कैसे स्पेंड करूं डे? अगर मैं आपको एक चांस दूं कि अपने लेवल का डे मनाओ भाई.
1: I think my day would start with me waking up very late.
3: Sleep is the most important thing.
1: Yes, yes.
3: अरे इधर तो हम दोनों फ्रेंड्स हो गए भाई, हाई फाइव. इधर तो हम दोनों, हमें अगर मौका मिले तो हम तो सोएंगे भाई, हमें कोई ना जगाए, हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, हमें सोना है. एंड देन व्हाट कम्स नेक्स्ट?
1: आई थिंक व्हाट वुड कम नेक्स्ट वाज इज ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट. आफ्टर दैट आई वुड लाइक इफ द कंडीशंस लाइक द वेदर वाज फेवरेबल आई वुड प्ले फुटबॉल फॉर अ व्हाइल. देन लाइक व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक इज आल्सो वन थिंग.
3: सही सही. तो मतलब अगर मैं कहूँ कि फुटबॉल को एक साइड पे कर दें और अपने कॉम्पिटिशन को एक साइड पे कर दें, तो इसके अलावा क्या चीज़ एंजॉय करती हैं? एक तो म्यूजिक हो गई.
1: म्यूजिक और पेंटिंग.
3: ओह नाइस, क्रिएटिव बच्चा, वेरी नाइस, मल्टी टैलेंटेड, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये बताएं कि डू यू हैव अदर देन स्पोर्ट्स, डू यू हैव एनी ड्रीम्स और एनी गोल्स इन माइंड विच यू हैव सेट टिल नाउ, या अभी अभी आप कह रहे हो कि नहीं मेरा माइंड ब्लैंक है, और डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड?
1: As in job, मतलब हाँ मेरा अभी बोल दिया था मैंने lawyer बनना as a job, but then one of an other goal in life is like I want to be able to live comfortably. I don't want to have a shortage of money.
3: अरे वाह भाई, ये अच्छी बात है. It's very good that you have a clear goal in your mind के भाई मुझे financially strong बनना है. Okay, independent and financially strong. That's good. That's very good. That's I like it when people are very clear about their goals and their understand. मतलब दूसरों को बता देते हैं पर्टिकुलरली, देखो हमारे को लाइफ में ये चाहिए. आई विल वर्क फॉर दिस. अच्छा ये बताएं कि फाइनली हाउ वुड यू लाइक पीपल टू रिमेंबर वैष्णवी? हु इज वैष्णवी, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट एज अ पर्सन? हाउ डू यू वॉन्ट पीपल टू सी यू, परसीव यू?
1: Fun, outgoing, warm, very, I would not say very kind. No. I think sometimes.
3: नहीं थोड़ा बहुत तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो कड़वा इंसान को होना ही चाहिए वरना दुनिया खा जाएगी.
1: जी जी
3: हाँ जी. अच्छा फिर
1: helpful, easy to approach type person.
3: हाँ good, मतलब down to earth. चलेगा. अच्छा गुड पर्सनैलिटी. अच्छा बेटा जाने से पहले
1: जाने से पहले कोई एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि हमारा टाइम अब तकरीबन खत्म हो गया, तो ये बताएं एक ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो आप जाने से पहले देना चाहेंगी जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं उनको.
0: इफ यू मतलब इफ यू ट्रूली हैव अ पैशन, शुड कीप गोइंग, यू शुड कीप लाइक, यू शुड हैव अ डेडिकेशन, यू शुड हैव हार्ड वर्क, यू विल रीच योर गोल.
1: सही बात, बिल्कुल सही है साथियों. अब हमारा वक्त ख़त्म होता है और इसी बात पर मैं ये शो ख़त्म करती हूँ कि मैं वैष्णवी की इस बात पे अग्री करती हूँ कि इंसान जब तक प्रैक्टिस करता रहे, डोंट गिव अप ऑन थिंग्स, थिंग्स आर नॉट ईजी, ना बड़ों के लिए ना ही छोटों के लिए. जब हमने फॉर एग्जाम्पल स्कूल भी स्टार्ट किया था, ABC पढ़ना सीखना शुरू की थी, तो दैट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर अस, राइट. तो वो मामला जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले गए, इट बिकेम मोर बेटर. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, चाहे वो लाइफ के रियल लाइफ सिचुएशंस हों, एकेडमिक्स हों, स्पोर्ट्स हों, यू बिकम बेटर एट इट. तो भाई अपना पैशन जिंदा रखें, प्रैक्टिस करते रहें, वर्क हार्ड, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि याद रखें जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. यू कैन नेवर पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. मेरी तरफ से साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा FM 107, दिल से देसी.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Qatar ka pehla desi radio station, FM 107. Dil se, desi.

Assalamualaikum दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं एक और प्रैक्टिकल और डेली लाइफ से रिलेटेड सेगमेंट जिसका नाम है इको स्विच। यहाँ हम बात करते हैं उन हैबिट्स की जो हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं और साथ ही एनवायरमेंट और बजट दोनों को बेनिफिट करती हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग की। भाई, ये तो मेरी फेवरेट चीज है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसको फॉलो करती ही करती हूँ। चलिए, एक बहुत ही रिलेटेबल सीन के साथ शुरू करते हैं कि भाई यूं समझ लें कि आप सुपरमार्केट गए हैं सिर्फ 5 चीजें लेने के लिए। ये मेरी अम्मा करती हैं असल में। 5 चीजें, 4 चीजें लेने जाएंगी लेकिन लेकर 40 चीजें आ जाएंगी। होता ये कि हाथ में एक लिस्ट बनी हुई होती है लेकिन जैसे जैसे आप आयल्स में चलते जाते हैं हर शेल्फ पर आपको कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव नजर आता रहता है ना। चॉकलेट्स, स्नैक्स, ऑफर, बाय वन गेट टू फ्री या बाय टू गेट वन फ्री, होता ये आपको नजर आ रही है डील्स। और जो आइटम आपने 5 आइटम लेने थे ना, आप तो 5 आइटम लेने गए थे, होता ये है कि उन 5 आइटम्स के साथ साथ और मजीद शॉपिंग कर लेते हैं और हमारी कार्ट फुल हो जाती है। घर वापस आकर आप अपना सर खुजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भाई ये देखो, कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा नहीं आ गई और कुछ जरूरी आइटम्स रह नहीं गए। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं, ये हम सबके साथ होता है। देखिए, अनप्लान्ड ग्रोसरी शॉपिंग का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अननेसेसरी आइटम्स खरीद लिए जाते हैं जो या तो वेस्ट हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट पर नहीं पड़ता भाई, बल्कि फूड वेस्ट और

एनवायरमेंटल लोड पर भी होता है। देखिए यहाँ इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में, मैं आपको बता देती हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है, सोच समझकर ग्रोसरी शॉपिंग करें, मतलब प्लान बनाना, लिस्ट फॉलो करना। लिस्ट लेकर तो जाते हो, आधा दर्जन लोग लिस्ट लेकर जाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। लिस्ट फॉलो करना और कॉन्शियस बाइंग डिसीजंस लेना। अब बात करते हैं कि भाई स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो फूड वेस्ट रिडक्शन होती है। जब आप सिर्फ जरूरी आइटम्स खरीदते हैं ना, तो घर में खाना खराब होने के चांसेस नहीं होते ना। अब आपने लेनी एक पालक है, पालक लेने गए हैं आप, फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने गए, पालक लेने गए, उसके साथ आप 5 से 6 सब्जियां और उठाकर लेकर आ जाते हैं, फ्रेश फूड तो और ज्यादा जल्दी एक्सपायर होता है। तो भाई दूसरा फायदा है बजट कंट्रोल। अननेसेसरी शॉपिंग से बच कर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम होना। देखिए कम वेस्ट का मतलब होता है कम लैंडफिल्स प्रेशर और कम रिसोर्सेज वेस्टेज। इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इसको मैं लास्ट कहूंगी कि टाइम सेव होता है ना। देखिए फोकस शॉपिंग से आप जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं और अननेसेसरी ब्राउजिंग से बच जाते हैं। ब्राउजिंग सिर्फ इंटरनेट पर नहीं होती साथियों, ये कभी कभी प्रैक्टिकल भी होती है, और प्रैक्टिकल वे में, फिजिकल वे में आपने कभी ब्राउजिंग देखनी हो ना, आप शॉपिंग मॉल्स चले जाएं, आप ग्रोसरी शॉपिंग करने चले जाएं, आपको हजारों लोग ऐसे ही नजर आएंगे जो इररिलेवेंट सी शॉपिंग कर रहे होंगे। अच्छा भाई अगर मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दूं ना इसकी, तो जरा सोचिए आप फ्रिज चेक किए बगैर ग्रोसरी शॉपिंग करने चले गए, आपने ये देखा ही नहीं कि आपके फ्रिज में क्या पड़ा हुआ और क्या नहीं पड़ा हुआ। वहां जाकर आप वही चीज दोबारा ले लेते हैं जो घर में पहले से मौजूद होती है। तो फिर ऑफर के चक्कर में 3 बॉटल जूस और ले आते हैं, जबकि जो घर में बॉटल पड़ी होती है वो यूज होने वाली होती है या वो एक्सपायरी के पास आ रही होती है। तो रिजल्ट क्या होता है, फ्रिज ओवरलोड जाता है और कुछ चीजें वेस्ट हो जाती हैं। देखिए दोहा जैसी सिटी में जहां सुपरमार्केट्स मॉडर्न और अट्रैक्टिव है ना, जहां मार्केटिंग और ऑफर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल ललचाए रहा न जाए ये वाला सीन है। इसीलिए यहां स्मार्ट शॉपिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आप मार्केटिंग ट्रैप्स से बच कर रियल नीड्स पर फोकस करें ना। अच्छा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ मैं आपको जो मेरे लिए बहुत काम करती है, मैं इनके ऊपर चलती हूँ। हमेशा शॉपिंग लिस्ट बनाएं, घर से निकलने से पहले क्लियर लिस्ट तैयार करें और उसी पर डटे रहें, स्टिक टू इट। देखिए एम्प्टी स्टमक कभी भी शॉपिंग ना करें। जब आपका पेट खाली होता है ना, तो भूख में आप इंपल्सिव बाइंग करते ही करते हैं। तीसरी चीज है फ्रिज और पैंट्री अपनी हमेशा चेक करें शॉपिंग पे जाने से पहले। शॉपिंग से पहले देखें कि घर में ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है, और ऑफर्स को क्रिटिकली देखें, मतलब ये कि हर डिस्काउंट यूजफुल नहीं होता, सिर्फ वही लें जो जरूरत है। लाजमी नहीं कि एक चीज के ऊपर ऑफर लगी हुई, अरे भाई ऑफर लगी है उठा लो उठा लो उठा लो, नहीं भाई जरूरत है तो उठाओ ना, वरना तो नहीं उठाओ। और हाँ वीकली प्लानिंग करें, एक प्रॉपर वीकली प्लान, अपना मील का जो प्लान होता है ना वो बनाएं और उसके मुताबिक ग्रोसरी खरीदें, उससे ज्यादा मत करें। ये बड़ी ऑर्गेनाइज चीज आपको ऑर्गेनाइज रखती है चीज। अच्छा इसका इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये कि स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग सिर्फ सेविंग टेक्निक नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी हैबिट है। जब आप अननेसेसरी बाइंग खत्म करते हैं तो आप इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिमांड को भी कंट्रोल करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंटल प्रेशर कम करती है। अच्छा अगर एक इससे और ज्यादा रिलेटेड बात करूं, तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम जस्ट इन केस वाली चीजें उठा लेते हैं, जस्ट इन केस क्या पता अगर क्या पता जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो जस्ट इन केस आइटम ना अक्सर नेवर यूज्ड आइटम बन जाते हैं। जैसे मुझे बड़ा शुरू शुरू में शौक था भाई, वो जो कैन फ्रूट होते हैं ना भाई, मुझे बड़े लजीज लगते थे वो कैन फ्रूट। मैं कहती कैन फ्रूट उठा लो, पाइनएप्पल कैन है उठा लो, कोई भी मिक्स फ्रूट है उठा लो। मैंने एक दिन खोलकर देखा कैबिनेट, भाई 4-5-6 और आधा दर्जन तो वैसे ही कैंस एक्सपायर हो गए, पता नहीं वो कब से पड़े हुए थे। तो फिर उस दिन के बाद से मैंने भी ये सीखा कि जस्ट इन केस वाला, अगर कोई मेहमान आ जाए तो भाई ये चीज बनाकर दे दो उस चीज से, अगर कुछ हो जाए तो जस्ट इन केस उठा लेता हूँ, ये वाला नहीं। नो नो नो, डोंट डू दैट। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये है कि फ्यूचर गेस करने के बजाय प्रेजेंट नीड को प्रायोरिटाइज करें ना।
अब अगर थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज एंगल के बारे में बात करें करें तो जब आप स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप अपनी कंजम्पशन

0: हैबिट्स को डिसिप्लिन में लेकर आ रहे होते हैं. आप इंपल्सिव बायर से प्लान्ड बायर बन रहे होते हैं. और इसका इको स्विच बड़ा सिंपल है. ग्रोसरी शॉपिंग को प्लान्ड और स्मार्ट बनाएं. तो भाई इसी के साथ आज के चैलेंज पे हम आ गए. और आज का चैलेंज ये है कि आज या नेक्स्ट शॉपिंग ट्रिप से पहले एक प्रॉपर ग्रोसरी लिस्ट बना लो ना बाबू प्लीज. और सिर्फ उसी पर डटे रहो, उसके अलावा कुछ नहीं लेना. अपने फ्रिज पर या कहीं पर भी एक स्टिक नोट लगा लो, एक पेपर चिपका लो मैग्नेट से कि जब कोई चीज खत्म हो तो उसके अंदर लिखो और बस वही लेकर आओ. और अगर आप ऑलरेडी लिस्ट बेस्ड शॉपिंग करते हैं मेरी तरह, तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें, जैसे मैं आजकल अपनी अम्मी को एनकरेज कर रही हूँ कि मामा प्लीज अब हम लिस्ट से शॉपिंग करेंगे. तो भाई साथियों, शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं होती बल्कि डिसीजन मेकिंग होती है. जब हम स्मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचाते बल्कि फूड वेस्ट कम करते हैं और एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करते हैं. इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर. मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ. तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सदका। सदका देना सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि वो हर काम है जो किसी के लिए फायदेमंद हो, वो सदका कहलाता है। एक मुस्कुराहट, किसी को रास्ता बताना या किसी की मदद करना भी सदका है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जितना हो सके दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, और जो अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन असल में छोटा सा भी कुछ देना या कोई अमल बहुत बड़ा होता है। आज का अमल ये है कि किसी ना किसी तरीके से सदका जरूर दें, चाहे वो पैसे हो, वक्त हो या एक अच्छा सा लफ्ज। ये छोटे अमल ही असल बरकत लेकर आते हैं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी। One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
4: One Step to 2030.
3: आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है लोगों की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना। कतर का विजन 2030 का फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, बल्कि लोगों पर भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स के बगैर डेवलपमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसका एक कोर हिस्सा है। जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो वो बेहतर डिसीशंस ले सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। स्किल्ड वर्कफोर्स किसी भी इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज रैपिडली चेंज हो रही हैं, नए स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे डिजिटल स्किल्स, मैनेजमेंट एबिलिटीज और खास करके स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज। अगर वर्कफोर्स अपडेटेड ना हो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी स्लो हो सकती है। कतर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, फिर चाहे यूनिवर्सिटीज हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। इससे कहीं ना कहीं यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कम्पीट कर सके। दोस्तों, ह्यूमन कैपिटल किसी भी मुल्क का सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। जब लोग स्ट्रॉन्ग, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी तो इकोनॉमी सस्टेन करती है। कतर का नेशनल विजन 2030 ये फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कैपिटल से है। तो बस इसीलिए आपको मैंने इस टर्म को समझाने की कोशिश की है, और जैसे मैंने कहा था कि मैं आने वाले दिनों में और ज्यादा डीपली आपको ये टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी रेलेवेंस के बारे में डिटेल पर बात करूंगी। बट बिफोर दैट, मुझे लगा कि पहले हमें ये टर्म्स आपके साथ इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। तो आज हमने ह्यूमन कैपिटल पे बात की, कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक को लेकर आऊंगी, उस पर छोटी सी हल्की सी नॉलेज आपको मैं

0: दूंगी। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2020.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: उम्मीद है भाई जनता आ चुकी है टेक के बारे में जानने के लिए, क्योंकि टेक की दुनिया ऐसी है कि इसके बारे में मैं जानता अभी कुछ हूँ, अगले सेकंड में मामला आगे निकल जाता है। तो मुझे जो है रेस लगानी पड़ रही है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया रेस नहीं है, मैराथन है। तो वैसे बिल्कुल बीच बीच में हाँपते हाँपते चलो इतना जान लिया काफी है, वैसा वाला सीन। लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक चीजें बताने वाला हूँ। सो वेलकम टू टेक इनोवेशन। मैं हूँ जी दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आपको पता है हमारे बहुत सेगमेंट्स इजी हैं। सबसे पहले मैं आपको एप्स बताता हूँ, देन द गैजेट्स, एंड देन द न्यूज ऑफ कोर्स। तो न्यूज हर दुनिया से है, मतलब वो टेक्नोलॉजी की दुनिया हो चाहे गेमिंग की दुनिया हो, दोनों को मिला के बताता हूँ मैं। बट बिफोर आई कंटिन्यू, आज ऐप की दुनिया में AI टूल्स के बारे में बात करूंगा, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। और AI की दुनिया इंसानों पर कब्जा कर लेगी ऐसा कुछ नहीं है, पर AI को सीखना बहुत जरूरी है, बस अल्टीमेटली आपका ही कंट्रोल रहेगा अगर आप इसे सीख लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद एप्स दिस वीक। ट्रेंडिंग एप्स, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट, ये बहुत कमाल की ऐप है, ये AI टूल है, इसका नाम है नोट GPT। अब देखिए, आप चैट GPT यूज करते हैं, उसके लिए आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, एंड यू पे अ गुड अमाउंट ताकि आपको उसका प्लस वर्जन मिल जाए, जो कि पेड वर्जन है। फ्री वर्जन काम करता है मगर फिर भी वो ऐसा ही है, तो फिर आप उसके लिए पेड वर्जन लेते हैं। एंड माइंड यू, अगर चैट GPT का पेड वर्जन आप पूरी तरह से सीख लेते हैं, देन इट्स वेल एंड गुड। पर अगर आपको उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन चाहिए जो फ्री है, जो आपके बहुत बहुत काम आ सकता है, देन दिस इज द वन, नोट GPT। इसमें क्या क्या है, इसमें माइंड मैपिंग है। फर्ज कीजिए कि आपने कोई एग्जांपल के तौर पे आपने यूट्यूब का कोई वीडियो, उसका लिंक उठाया, इस पे अपलोड किया, और उसके बाद आपने पूछा, हाँ जी 10 मेनू इस वीडियो में क्या क्या है, तो आपको वो समराइज करके भी देगा, उसके अलावा माइंड मैपिंग करके देगा कि किस तरीके से वीडियो को बनाया गया होगा। और साथ साथ इसमें एक फीचर है ट्रांसक्रिप्शन का, मेनली कुछ वीडियोज में ऐसा नहीं होता कि आपको उसके कैप्शन मिल जाए, बट देन अगेन ट्रांसक्रिप्ट का इसका वर्जन बहुत बहुत कमाल का, इट वर्क्स अमेजिंगली स्मूथली। एंड इसमें एक फंक्शन है AI चैट का, तो आपने कोई भी चीज तैयार करनी है, आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक PPT बनाने में लगे हुए हैं, तो आपकी ये मदद जरूर जरूर करेगा। समराइज का जो ऑप्शन है, वॉइस टूल का जो ऑप्शन है, बड़ा कमाल का है, काफी काफी हद तक मुझे लगता है कि ये फ्री वर्जन होने के नाते चैट GPT को करारी टक्कर देता है। एंड दिस इज अ डेस्कटॉप वर्जन, तो आप डेस्कटॉप वर्जन तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई हैवंट यूज्ड द मोबाइल वर्जन, जो मैं चेक करूंगा अगले हफ्ते बताऊंगा, बट फॉर नाउ आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑन योर लैपटॉप्स और योर PC, और आपको सच में बहुत काम का लगेगा। ये लोगों को पता नहीं है, पता नहीं कैसे, क्योंकि इसलिए वो चैट GPT को बहुत अच्छा खासा रियाल लुटा रहे हैं, बट ट्राई दिस वन मेरे कहने पे, यू विल लव इट। नोट GPT, ओके, नोट GPT, ट्राई दिस वन, ओपन सोर्स है, फ्री है, एंड बहुत बहुत काम का, जैसे मैंने कहा, माइंड मैपिंग हो, समराइजिंग हो, AI चैट हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, एंड नॉट जस्ट दैट, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई किताब जो है उसका पहला ही पन्ना या कोई चैप्टर जो है इस पे अपलोड कर दिया फोटो खींच के, और आपने पूछा कि इस चैप्टर में क्या है, और आपने बता दिया उसको एक बारी कि ये बुक है या ये चैप्टर का नाम है, तो ये आपको पूरी तरह से समराइज करके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बताएगा, एंड इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने एक चीज ट्राई करी थी, मैंने इस पे चीज अपलोड करी और मैंने कहा कि एक्सप्लेन दिस टू मी लाइक आई एम अ 5-year-old, एंड इसने बहुत बहुत अच्छे से बताया। सो डेफिनेटली ऑन द लिस्ट नोट GPT, ये जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन, अगला जो है ये है मेटा AI। मैं अक्सर ऑफिस में बात करता हूँ उस AI की, जो इमेज जनरेट कर सके, जो आपको रीस्टाइलिंग कर सके, जो आपको एनिमेशन दे सके। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर एक सेलिब्रिटी या फिर एक नामी ग्रामी हस्ती जो है वो माइक के आगे गा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, एंड यू टेंड टू बिलीव कि यार ये पैसे देके बनाया होगा, ये फ्री में नहीं बन सकता, बट लेट मी टेल यू, बन सकता है। AI टूल का नाम है मेटा AI। अक्सर लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत अंडररेटेड है, आई हैवंट सीन इट अराउंड मी, आपने शायद देखा हो तो बहुत बढ़िया बात है। मेटा AI में आप इमेज जनरेट कर सकते हैं बहुत बहुत इजीली। नॉट जस्ट दैट, जब आप एक इमेज का प्रॉम्प्ट देते हैं और इमेज क्रिएट होती है, उसके बाद आप इमेज की रीस्टाइलिंग कर सकते हैं। आपको किस तरीके का चाहिए, आपको कार्टूनिश चाहिए, कॉमिकल लुक चाहिए, कैसा भी चाहिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नॉट जस्ट क्रिएटिंग इमेज बट एडिटिंग इमेजेस एज वेल, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आती है वो चीज जिसकी तलाश रहती है आपको, वो है एनिमेशन, जिसके लिए आप बहुत खर्च कर सकते हैं, पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं, 200-200 पॉइंट्स आपको $19 से मिलते हैं। बट विद दिस मेटा AI यू कैन एनिमेट योर फोटोज फॉर फ्री, और क्या चाहिए, try this one out and I'm pretty sure aapka aadha kaam aasan ho jayega and iske zariye aap ek literally ek social media platform pe ek account bhi bana sakte hain wherein you can create thousands of things and ho sakta hai ki iske zariye aapka social media ka career bhi on ho jaye because it definitely aapki bahut bahut madad karne wala hai not just that agar aap ek video banate hain aap ek social media influencer hain and if you want inputs in between aap kuch cheez samjhana chahte hain for example main apna example le leta hu agar main kisi पानी के जहाज की कहानी सुना रहा हूं और मुझे बीच में एक इमेज चाहिए जो थोड़ी एनिमेटेड हो और उसमें पानी का जहाज हो तो rather than finding it out from other places मैं सिर्फ इसको बताऊंगा और ये मुझे बना के दे देगा और वो मैं यूज कर सकता हूं अपने वीडियो में एंड वर्टिकल लैंडस्केप जैसा भी चाहें इस इमेज को आप क्रिएट कर सकते हैं मेटा एआई से ट्राई दिस वन आउट क्योंकि ये बहुत बहुत सही किस्म का एआई टूल है काफी अंडररेटेड ऑलराइट मूविंग ऑन अभी जो थर्ड ऐप है जो एआई टूल है ये उन लोगों के लिए जो कंपनीज बना चुके हैं बनाने वाले हैं या फिर एक मार्केटिंग मैनेजर की तलाश में जो उनके आइडिया के लिए एक कैंपेन तैयार कर सके ये कैंपेन तैयार करना कोई आसान काम नहीं है आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसमें आपको कई मरतबा एक दो नहीं दर्जनों मार्केटिंग मैनेजर्स की सलाहें लेनी पड़ती हैं उनमें से कौन सी चीज काम करेगी कौन सी नहीं एंड यू गेट कंफ्यूज्ड एंड वो काम कभी शुरू भी नहीं हो पाता है बट इफ यू ओन अ कंपनी इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग ये आपके लिए बेस्ट है फॉर एग्जाम्पल आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं आप कोई कॉन्टेंट है जिसके लिए आपको एक कैंपेन तैयार करनी हाउ डू वॉन्ट टू डू इट ये है ऐप इसका नाम है Pomelly Pomelly ये आपका पर्सनल मार्केटिंग मैनेजर है ये क्या करता है मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मान लीजिए आपने कोई उसे इमेज दिखाई जो आपकी और आपको कंटेंट क्रिएट करें आपने समझाया कि मेरा कंटेंट इस तरीके का है नाउ आई नीड अ कैंपेन ये आपको लोगों से लेकर लोगों के बाद आपको हफ्ते भर में क्या कैंपेन करना चाहिए कैसे अपलोड करना चाहिए ये सब आपको बताएगा इट इज डेफिनेटली वर्थ इट थोड़ी बहुत मेहनत प्रॉम्प्ट्स में लगेगी आपको पर वो करते करते जब आप सीख जाएंगे भाई साहब आपका कोई तोड़ी नहीं होगा मार्केट में बढ़िया छा जाओगे आप धुआं उठा दोगे बता रहा हूं मैं तो ये ऐप डेफिनेटली अप ऑन द लिस्ट नाम है Pomelly Pomelly ऑलराइट नाउ मूविंग ऑन टू गैजेट्स दिस वीक
1: कूल गैजेट्स
0: नंबर वन गैजेट अब ये नंबर वन कहने का मतलब ये नहीं कि आई एम रैंकिंग देम नंबर वन ऑन द लिस्ट बेसिकली तो कई बार सब आप रिंग्स तलाश करते हैं जो आपकी नींद को ट्रैक करते हैं आपके पल्स को ट्रैक करते हैं मगर वो काम नहीं करते इधर दे डोंट वर्क और दे आर नॉट गुड इनफ लेकिन एक रिंग है जो एक्चुअली में अच्छी दिखती है और एक्चुअली में काम करती है इसका नाम है रिंगकॉन RINGCONN रिंगकॉन ये इसका दूसरा वर्जन आ चुका है गेंट 2 ठीक है और ये आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने गेंट 2 बोल दिया जेन 2 पंजाबी निकल गई मेरी तो रिंगकॉन जेन 2 एयर स्मार्ट रिंग ये रीड करेगी आपकी पल्स को ये रीड करेगी आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को अंडर वाटर यूज कीजिए कोई मसला नहीं है आराम से स्विमिंग कीजिए एंड इट इज वंडरफुल मतलब ये मैं इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने सलाह दी मुझे इज एन इंजीनियर और उस पर मुझे भरोसा है तो उसके भरोसे

हैं, भरोसे पर हूँ और आप मुझे भरोसा कर सकते हैं। ये रिंग अगर आपको कहीं पे मिले ऑब्वियसली ऑन अमेजोन या फिर कोई कहीं और, तो अच्छे अच्छे डिस्काउंट से मिलती है एंड यू कैन गेट दिस वन। अगर आपको रिंग सच में चाहिए ऐसी कोई, ये मुझे पता है बहुत हाई डिमांड चीज़ है इसलिए मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज MSDIO स्मार्ट फ्लावर पॉट, MSDIO स्मार्ट फ्लावर पॉट IV। अब ये जो है ये एक गमला है कहने को, मगर ये स्मार्ट है। जब इसमें आप पौधे लगाएंगे तो पौधे की हालत कैसी है बहुत ही इंटरेक्टिव वे में बताएगा कि अभी पानी की जरूरत है, अभी धूप ज्यादा लग रही है, धूप ज्यादा चाहिए, वॉट एवर द कंडीशन इज, ये बताएगा। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि गार्डनिंग का कल्चर आपके घर में रहे और बच्चों को भी प्लांट्स की तरफ एक रुख करवाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट डिवाइस टू हैव। ऑलराइट, सो MSDIO स्मार्ट फ्लावर पॉट IV इज द थिंग, इज द स्मार्ट वे टू लिव। All right, let's move on. Third gadget on the list, इसका नाम है Soundcore AI. Soundcore AI. अब ये एक डिवाइस है जो आपके फोन के पीछे क्लब हो सकती है अगर आप मैग्नेटिक चिपक जाता है पीछे तो। ये मल्टीलिंगुअल AI टेक्स्ट और वॉइस सब कुछ तैयार करके देता है। मान लीजिए आपने फोन के पीछे लगाया और आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे नहीं सामने आमने सामने बात कर रहे हैं, तो ये आपको उसकी पूरी स्क्रिप्ट बना के देगा, उसको ट्रांसलेट करके देगा एंड उसको समराइज करके देगा। इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, जस्ट पुट इट ऑन एंड आपकी सारी की सारी मीटिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड उसको समराइज करके भी आपको बता देगा कि क्या क्या मेन पॉइंट्स रहे, क्या क्या जरूरी था, क्या क्या दूसरी लैंग्वेज में था, बट इट विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल। एंड ये जो Soundcore AI है, ये फोन के पीछे लगा सकते हैं ऐसे मैंने कहा, बट इनकेस आपके फोन के पीछे मैग्नेटिक चिपकन वो नहीं है, तो आप इसे टेबल में भी ऐसे भी रख सकते हैं आपके हाथों में, हैंड हेल्ड भी है ये, और ये डिवाइस बहुत बहुत काम का है। Soundcore AI, SOUNDCORE, Soundcore AI, बहुत कमाल का डिवाइस है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन, खबरें भी तो बतानी है आपको। इस हफ्ते की खबरों में बहुत सारी चीजें हैं। नंबर वन ऑन द लिस्ट इज एप्पल, ऑफ कोर्स उसका जो इवेंट है उसकी कवरेज आपको पूरी पूरी दूंगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि काफी कुछ लॉन्च होने वाला है और काफी कुछ बातें करनी है। मगर एप्पल ने टीज किया है एक चीज को, उन्होंने बताया कि वो काम कर रहे हैं अपने AI इंटेलिजेंस पे और सीरी पे। अभी तक बड़ा ही मैकेनिकल सा रिप्लाई आता है एप्पल का, एंड मेरी शिकायत एप्पल से ये रहती है कि क्यों एप्पल की कंपनी अपने सीरी पे काम नहीं करती, उससे कहीं गुना आगे बाकी AI से निकल चुके हैं, बहुत माइल्स अहेड, एंड एंड्रॉइड तो बहुत ही आगे निकल चुका है। तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन द इंटरेक्शन, कि ताकि आपको एक रियल और नेचुरल इंटरेक्शन मिले AI से, पर ये कब तक आएगा वी डोंट नो, बट दे हैव टीज्ड इट एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो पॉसिबिलिटी है कि इस बार की इवेंट में दे माइट टॉक अबाउट इट मोर, दे माइट रिवील समथिंग, और इस सब कुछ आपको पता लगेगा, तो आपकी कॉन्वर्सेशंस विद द AI ऑफ एप्पल विल बी स्मूदर आई बिलीव, और थोड़ा और आसानी हो सकती है। आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई होप सो कि एप्पल इस बात को सीरियसली ले, बिकॉज दो चीज़ों की शिकायत रहती है कि एक तो कतर में एप्पल के मैप्स काम नहीं करते हैं और दूसरी चीज़ उसका AI अभी भी देसी भाषा में कहूँ तो काफ़ी बंडल है तो दे रियली नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, अगली दो खबरें गेमिंग से। नंबर वन, सबसे पहले सोनी ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ प्ले, बहुत बहुत भारी भरकम गेम्स के बारे में बात की गई और लॉन्च की गई। गॉड ऑफ वॉर का इंतजार था सबको, गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस की वाइफ बन के आप प्ले कर सकते हैं, फाइनली समथिंग फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर। एंड टूम रेडर का ट्रेलर देख के माय भाई दीवाना हो गया, लारा क्रॉफ्ट इज फाइनली बैक एंड आई कैन नॉट वेट टू प्ले दिस वन। वुल्वरीन इज ऑल्सो कमिंग अप, सबके सब डरे हुए हैं, सब लॉन्च हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज नवंबर में GTA 6 आने की चांसेस हैं। चांसेस इसलिए क्योंकि मुझे रॉकस्टार पे दो रियाल का भरोसा नहीं है, बट दैट इज व्हाट वी विल सी इन नवंबर। दूसरी खबर, कंपटीशन में उतरा एक्सबॉक्स और एक्सबॉक्स का शोकेस लाइनअप था, बहुत लंबा लाइनअप था, उसमें भी सेनुआ जैसे बड़े बड़े गेम्स एंड मेटल गियर, ये सारे गेम्स का लॉन्च किया गया है। कुछ गेम्स जो हैं वो बिल्कुल बताए गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव है टू एक्सबॉक्स एंड बाकी गेम्स विल कम टू PS5 एज वेल। बट PS5 में जो मेजर लॉन्च रहा वो था रेसिडेंट ईविल कोड वेरोनिका, 2027 में आएगा हालांकि, मगर सबसे पहला यही गेम लॉन्च हुआ एंड भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने ये देखा। सो गेमर्स आउट देयर वॉच आउट फॉर दिस वन बिकॉज कैपकॉम इज कुकिंग ब्रो। बाकी इस खबरों इन खबरों के बाद सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। अगर आपने भी हाथ साफ किया है बहुत सारी एप्स पे और AI पे, एंड यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू टेल अपना

0: ज्ञान आप दुनिया को देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज मोस्ट वेलकम. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar. आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दोहा वाला कबीर के नाम से, मैं आपको मिल जाऊंगा. ओके, अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी. बहुत बड़ा इवेंट कवर करने वाला हूं मैं अगले हफ्ते, एंड इंशाल्लाह टेक इनोवेशन के अगले एपिसोड में उस बारे में खुल के बात होगी. बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मास्सलाम.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे कतर के एक मारूफ खिलाड़ी के बारे में, फुटबॉलर के बारे में, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है और इसमें हम सोच रहे थे कि इस प्रोग्राम में नथिंग बेटर देन टॉकिंग अबाउट फुटबॉलर जो कि कतर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में। तो अल मोइज़ अली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अकरम अफ्रीका का नाम किसी ने सुना है तो उनके साथ साथ अल मोइज़ अली का भी नाम लिया जाता है। अल मोइज़ अली कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे अहम स्ट्राइकर्स में से एक माना जाता है। सूडान में उनकी पैदाइश हुई थी और अल मोइज़ ने छोटी सी उम्र में कतर का रुख किया और एस्पार एकेडमी के निज़ाम से निकलकर नेशनल स्टेडियम तक पहुंचे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 2019 एएफसी एशियन कप में देखने को मिली जब उन्होंने 9 गोल्स करके टूर्नामेंट का रिकॉर्ड बनाया और कतर को पहली मरतबा एशियन चैम्पियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। अल मोइज़ की फिनिशिंग पेस और मूवमेंट कई डिफेंडर्स को बहुत ही गहरा चैलेंज की बात करूं तो डेफिनेटली थ्रोज अ चैलेंज एट दोस डिफेंडर्स। वो कतर के लिए फीफा वर्ल्ड कप और कई टफ टूर्नामेंट्स में भी खेल चुके हैं। अल दोहेल के लिए भी उनकी परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही हैं और अल मोइज़ आज भी कतर फुटबॉल की पहचान और नए खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल समझे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर मीडिया कॉरपोरेशन का उर्दू रेडियो आपसे मुखातिब है।

0: गुनाह कबीरा कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आप अपनी जिंदगी चाहते हो तो ये जिन्ना करो,
1: करना नहीं है आपको ये।
0: उसका फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर दोबारा जब आया तो उन्होंने अपना ये वाक्य बताया यहाँ पर करदावी साहब का, और करदावी साहब ने मुख्तलिफ मौके पर बयान किया, कम अज़ कम तीन दफ़ा मैं मुख्तलिफ मजारिस में उनसे सुन चुका हूँ ये वाक़ कि इतनी सख्ती वहाँ बरतते हैं कि अच्छा तुमने हदीस पर अमल कर लिया, तुमने इस हदीस पर अमल कर लिया, तुमने हमारी फिका को छोड़ दिया, तुमने हमारी सुन्नत को हमारे मसल को छोड़ दिया, जो तुम्हारी जान बख्शी नहीं होगी, अरे इस तरह की जान लेने तर के दरपे हो जाते, और मजबूरन वो हालांकि क्या शेख अली मियाँ शेख साहब जिनको अरब उलमा कहते हैं कि हम इनसे अरबी सीखते हैं, वो उनका ख्याल कर दिया गया कि वो कहते हैं कि मेरे तो जान के मैं लाल जान के लाले पड़ गए थे, इतनी सख्ती वहाँ करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हमने यही तो करते। और हर मौके पर ये बात हमेशा अपने आप को हमें अपने जहन में ताज़ा करनी चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी पैरों को नबी नहीं मानते हैं, जो मकाम नबी को दिया जाना चाहिए वो उन्हीं का है, वो किसी और के हवाले न करें, जबकि हम शिद्दत में आके अमलन वो मकाम किसी और तरफ मुंतकिल कर देते कि नहीं जी हम तो इनके फॉलोअर हैं, हमें हर हाल में इन साहब को फॉलो करना है, ना करें ऐसा, ये ज्यादती हो जाएगी, आखिरत की तबाही का ज़रिया बन जाएगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात भी सही साबित हो जाए उस पर हमें अमल करना चाहिए, और हमारे उलमा जो उन्होंने जो जो इज्तिहादात किए उनसे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नत में आला मकाम से नवाजे, वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, इमाम अहमद बिन हंबल हो, दूसरे आइमा हो, और दूसरे उलमा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस दीन में सर्फ कर दी हैं, दीन के काम दीन के मामलों में सर्फ कर दी हैं, अल्लाह ताला उनको इससे बेहतरीन अजर अता फरमाए। हम उनके लिए हर एक के लिए अपने दिल में कोई ज़रा बराबर भी नफरत का जज्बा नहीं रखते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम नापसंद करते हैं कि उनमें से किसी एक फर्द को मान लिया जाए कि बस हमें इसको फॉलो करना है, इसके अलावा किसी को नहीं करना, तो ये गोया कि आपने उनको वो मकाम दे दिया जो अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया है।
1: बिल्कुल शेख मोहतरम, उन लोग बाकी मज़ाहब के या बाकी उलमा के फॉलोअर्स को गलत समझना और उनसे खुदा नख्वास्ता इस वजह से नफरत करना शेख मोहतरम या उनसे झगड़ना, ये नाजायज है, यह हराम, यह गुनाह है।
0: बारकल्लाहु फीकुम। और उस्मान भाई के सवाल की तरफ आते हैं, फिर उनका दूसरा सवाल ये था कि डिलीवरी का काम करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, जुमे की नमाज अदा की जुमा और फारिग हो गए, क्या वो फ़र्ज पढ़ने के बाद फौरन निकल जाते हैं, चूँकि माली मसला है और या कि रोज़ी का मसला है, अगर निकल जाते हैं तो सुन्नत, अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि ना पढ़ें?
1: उस्मान भाई देखिए, आप कोशिश तो कर ले, जैसे शेख साहब ने आपसे लुत्फ़ फरमा कर इसका जिक्र किया, सुन्नत छोड़ना जो है ये अच्छी बात नहीं है, इसमें खसारा और नुकसान है हमारे लिए, क्योंकि सुन्नत की पाबंदी जो है, एक तो शेख मोहतरम क़ियामत के दिन नेकियों का जो पढ़ला है ना हसनात कफ़तुल हसनात, उसको हम बारी कर सकते हैं इससे
0: सही।
1: और दूसरी बात यह है शेख मोहतरम कि सुन्नत की पाबंदी जो है ये हुब्बे नबी की एक अलामत है ना शेख मोहतरम, और तीसरी बात यह है कि इससे अल्लाह की अल्लाह के हम नज़दीक होते हैं और क़ुरब हासिल होते हैं, हमें हासिल हो सकता है शेख मोहतरम, और अल्लाह के अवलिया बन सकते हैं, वमा तकर्रब इलैहि वला यज़ालु अब्दी यतकर्रब इलैहि बिन्नवाफिल, और जब आप अल्लाह के महबूब बनेंगे, वली बनेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तो फिर आपका काम बन गया, वो तो आपका कान और कुंत समअहु अल्लज़ी यस्मअ बिही व बसरह, और आँख बन गया शेख मोहतरम, और हाथ बन गया और पाँव बन गया, जैसे उलमा किराम की तशरीह में दो बातें कहते हैं कि आपके जो भी आप अल्लाह से चाहेंगे आप अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा, और जिससे आप पनाह तलब करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने पनाह में रखेंगे और पनाह देंगे आपको, तो ये बड़ी बात है ना शेख मोहतरम। लेकिन अगर किसी वजह से ख़ासतौर पर ये डिलीवरी की जो बात है उसमें मेरे ख्याल में शेख कुछ गरामात और फाइंस वगैरह भी होते हैं, तो अगर आप निकल गए और नहीं पढ़ सके तो गुनाह इसमें नहीं है, ख़ासतौर पर अगर नीयत ये रखकर आदमी इसको छोड़ता है शेख, कि अगर ये चीज़ नहीं होती, ये उज़्र नहीं होता तो मैं ज़रूर पढ़ता था, फिर तो अल्लाह से उम्मीद है कि आपको अजर भी देंगे
0: इंशाअल्लाह, कम अज़ कम नीयत का तो अजर मिलेगा ही, और उसके बाद अमल जब होता है उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी की जा सकती है कि कोई मौका थोड़ा सा मिल जाए तो जल्दी से दो रकात अदा कर ले। मोहम्मद सलमान भाई तलाक के हवाले से अपने किसी दोस्त का मसला बयान कर रहे थे, और उसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो बचत ही बताई उन्होंने कि तलाक दी नहीं है, लेकिन اس میں جاننا

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अज़कार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: Dil se desi.
3: Consistency is the key. Ye to suna hi hoga aapne. Aur isi consistency ke saath agar humne hamari duniya ka khayal kiya aur energy ko sustain karne mein aage haath badhaya to yun samajhiye ki humne hamare kal ko ek tohfa de diya. So sustain the future. RJ Mahvish ke saath. Chote chote kadam uthayein ek behtar aur sustainable mustaqbil ke liye. Sirf FM 107 par Dil Se Desi.
4: Assalamu alaikum and welcome to Sustain the Future. Aapka apna show jo baat karta hai hamare planet Earth ke future ke bare mein. Main hu aapki RJ Mahavish aur aaj hum discuss karenge ek bahut hi important topic.
5: Topic of the day.
4: Water blue gold of the future. Ji ha, ye pani जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है आजकल स्कार्सिटी और वेस्टेज के चैलेंजेस को फेस कर रहा है तो चलिए आज डीपली जानते हैं इस टॉपिक के बारे में वी विल शेयर सम प्रैक्टिकल टिप्स और सुनेंगे सस्टेनेबिलिटी की न्यू आइडियाज और इंस्पायरिंग वॉइसेस सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट होना ना भूलिए @FM107 कतर और हमें व्हाट्सएप करें अपना फीडबैक ताकि हम जान सकें कि आपको हमारे शोज कैसे लग रहे हैं ऑन 666-22-107 तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक है पानी के बारे में पानी जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है लेकिन दुनिया भर में इसकी कमी एक बड़ा चैलेंज बन रहा है ग्लोबली 2.2 बिलियन लोग पीने के साफ पानी तक एक्सेस नहीं कर पाते और ये है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और जब हम बात करते हैं कतर जैसे एरिड रीजन्स की तो ये मसला और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं कतर में हम मोस्टली डिसोलिनेटेड सी वाटर पर डिपेंड करते हैं डिसोलिनेशन एक प्रोसेस है जहां समंदर के पानी से सॉल्ट निकालकर उसे ड्रिंकिंग और डेली यूज के लिए सूटेबल बनाया जाता है कतर इज अ ग्लोबल लीडर इन डिसोलिनेशन टेक्नोलॉजी और ये प्रोवाइड करता है 99% पीने का पानी इसी प्रोसेस के थ्रू ये टेक्नोलॉजी इस रीजन के लिए लाइफ सेविंग है क्योंकि यहाँ के नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेस जैसे रिवर्स लेक्स बहुत लिमिटेड है जब हम वाटर स्कैसिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ कतर तक लिमिटेड नहीं ग्लोबल लेवल पे भी ये एक बड़ा इशू है जिसमें क्लाइमेट चेंज ओवर पॉपुलेशन और मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है दुनिया के कई हिस्सों में पानी का लेवल इतना गिर गया है कि लोगों को बेसिक ड्रिंकिंग वाटर तक ही एक्सेस नहीं मिल पा रही यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक आज भी 2.2 बिलियन लोग सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस नहीं रखते ये स्टेट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि पानी को एक प्रेशियस रिसोर्स के तौर पर ट्रीट करना कितना ज्यादा जरूरी है पानी की ये कमी हमारे लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज भी क्रिएट करता है जैसे कि कतर में डिसोलिनेटेड वाटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अगर ये प्रोसेस इनएफिशिएंट हो तो रिसोर्सेज का वेस्ट भी होता है इसलिए एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का होना जरूरी है ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें वाटर स्कार्सिटी सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एक सीरियस चैलेंज बन गया है ग्लोबल वाटर क्राइसिस का मतलब है कि दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की कमी है और जहां लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर से भी महरूम हैं यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हर साल मिलियंस ऑफ पीपल इस इशू की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं दुनिया के कई रीजन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और बारिश का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो रहा है ये सब फैक्टर्स वाटर अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आज साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका जैसे रीजन्स में पानी की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है कतर जैसे ड्राई रीजन्स में ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है कतर में नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और यहाँ के लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है जैसे डिसोलिनेटेड सी वाटर इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी कीमती हैं लेकिन उनका भी ओवर यूज हो रहा है इसलिए वाटर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अब ग्लोबल लेवल पे इवॉल्व हो रहा है एफिशिएंट वाटर यूजेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना बेहद जरूरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन और वर्ल्ड बैंक ने मल्टीपल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं ताकि वाटर स्कैसिटी को टैकल किया जा सके ये ऑर्गेनाइजेशंस पानी के सस्टेनेबल मैनेजमेंट कंजर्वेशन और पोल्यूशन रिडक्शन पर काम कर रही हैं। पानी की वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है दुनिया के बहुत से रीजन्स में ये अपनी इकोनॉमिक वैल्यू के साथ पॉलिटिकल टेंशन भी क्रिएट कर रहा है मुल्कों के दरमियान वाटर राइट्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ इस इशू को सॉल्व करें ना कि सिर्फ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस पर फोकस करें
5: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
4: पानी की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है पानी सिर्फ एक बेसिक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक ड्राइवर भी है जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर और डेली लिविंग को इफेक्ट करता है वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पानी की अहमियत को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पर्पस में प्राइमरी रोल अदा करता है एग्रीकल्चर जो दुनिया के कई रीजन्स में इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है पानी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए वाटर की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और अगर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो क्रॉप प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट करता है इंडस्ट्रीज भी वाटर के एफिशिएंट यूज पर डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल फूड प्रोसेसिंग और केमिकल्स को अपने ऑपरेशंस के लिए सब्सटेंशियल वाटर चाहिए वाटर स्कैसिटी से ये इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इफेक्ट हो सकती हैं जो कि जॉब लूजर्स हायर प्रोडक्शन कॉस्ट और ओवरऑल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सबब बन सकती हैं। जियोपॉलिटिक्स में पानी का रोल और भी बढ़ गया है वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना खास तौर पे ड्राई रीजन्स में बेहद जरूरी है वाटर डिप्लोमेसी अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कंट्रीज अपने म्यूचुअल वाटर रिसोर्सेज का एफिशिएंट मैनेजमेंट करने के लिए एग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं वाटर को अब एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स समझा जा रहा है जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैनेज करना जरूरी हो गया है अगर ये रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज नहीं किए गए तो फ्यूचर में ये कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का सबब बन सकते हैं पानी का एग्रीकल्चर में रोल बहुत ही क्रिटिकल है एग्रीकल्चर दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है और ये वाटर रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज पर हेविली डिपेंडेंट है वाटर स्कार्सिटी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है जो डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है, खास करके उन एरियाज में जहां रेनफॉल का अमाउंट कम होता है। क्रॉप्स की ग्रोथ पानी पर डिपेंड करती है, जैसे कि वीट, राइस और मेज वगैरह, इन क्रॉप्स को इरिगेशन के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर पानी की सप्लाई लिमिटेड हो तो क्रॉप प्रोडक्शन का लेवल गिर जाता है जो फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेट कर सकता है। वाटर एफिशिएंसी को इन्हांस करना और वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बेहद जरूरी है। आजकल एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है जो पानी की वेस्ट को कम करते हैं और क्रॉप्स को इफिशियंट तरीके से पानी देते हैं। ये टेक्नोलॉजीज स्पेशली ड्राई रीजन्स में फायदेमंद है जहां नेचुरल वाटर सोर्सेस लिमिटेड हैं। क्लाइमेट चेंज भी एग्रीकल्चर पर पानी के यूजेज को इम्पैक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। ड्रॉट्स और वाटर शॉर्टेजेस का रिस्क बढ़ गया है जो डायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है।

0: को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है और सोशल अनरेस्ट तक भी लीड कर सकता है। पानी के कंजर्वेशन के लिए आजकल बहुत सी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जो वाटर स्कर्सिटी के इशू को टैकल करने में मददगार साबित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाटर मैनेजमेंट में इफिशेंसी को इम्प्रूव कर रहा है और ये ग्लोबल स्केल पर पानी के सस्टेनेबल यूज के लिए जरूरी हो गया है। डिसोलिनेशन टेक्नोलॉजी ने सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का एक अहम तरीका दिया है। डिसोलिनेशन प्लांट्स के जरिए समंदर के पानी से सॉल्ट को रिमूव करके उसे यूजेबल बनाया जाता है। कतर जैसे रीजन्स में ये टेक्नोलॉजी एक लाइफलाइन बन गई है, जहां नेचुरल फ्रेश वाटर सोर्सेज काफी लिमिटेड हैं। डिसोलिनेशन एक्सपेंसिव है, लेकिन एक की सॉल्यूशन भी है यहां पे फ्रेश वाटर फराहम करने के लिए। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स भी वाटर कंजर्वेशन में बहुत मददगार हैं। ये सिस्टम्स वेदर कंडीशंस और सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर करते हैं, जिससे पानी का कंजप्शन मिनिमम हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी बढ़ गया है, जो पानी को डायरेक्ट क्रॉप रूट्स तक पहुंचाते हैं और वाटर वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज खास तौर पे वहां जहां पे पानी की कमी है बहुत इफेक्टिव है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉम्बिनेशन वाटर मैनेजमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। IoT बेस्ड वाटर सेंसर्स फील्ड में रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज के एफिशिएंट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, स्मार्ट वाटर मीटर्स की हेल्प से वाटर कंजप्शन को एक्यूरेटली मॉनिटर किया जा सकता है और वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। वाटर फिल्टरेशन टेक्नोलॉजीज भी एवोल्यूशन के रास्ते पर हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, RO और UV फिल्टरेशन जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पानी को इम्प्यूरिटीज से प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जरूरी है। ये टेक्नोलॉजीज होम्स और इंडस्ट्रीज दोनों में अपना रोल अदा कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी पुराने जमाने से है, लेकिन आजकल इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को डिजाइन करना और इंस्टॉल करना इजी हो गया है, जो पानी को स्टोर करके यूज किया जा सकता है। ये स्पेशली उन रीजन्स में फायदेमंद है जहां सीजनल रेनफॉल होती है। डिसोलिनेशन प्लांट्स, स्मार्ट इरिगेशन, AI एंड IoT बेस्ड वाटर मैनेजमेंट और रेनफॉल हार्वेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजीज की वजह से वाटर कंजर्वेशन में नई उम्मीद जागी है। अगर इन टेक्नोलॉजीज को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जाए तो वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जा सकता है, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहद जरूरी है। अब हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में पानी का वेस्टेज बहुत देखते हैं। गार्डनिंग में बहुत से लोग होस का इस्तेमाल करते हैं विदाउट टाइमर्स या ड्रिप इरिगेशन, जिससे गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है। सिमिलरली, घर में क्लीनिंग के दौरान टैप्स को अननेसेसरीली चलता छोड़ देते हैं। एक छोटी सी मिसाल, जब हम डिशेस धोते हैं या कार वॉश करते हैं, रनिंग टैप से एक मिनट में 10 से 15 लीटर पानी वेस्ट हो सकता है। अब सवाल ये है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी? सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। कतर में गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले रही है, लाइक कहारमा तरशी प्रोग्राम, जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। एज इंडिविजुअल हम भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। इंस्टॉल वाटर सेविंग टैप्स, जो पानी का फ्लो कम करते हैं। ग्रे वाटर का इस्तेमाल, यानी वॉशिंग मशीन या सिंक से निकले पानी को गार्डनिंग के लिए रीयूज किया जा सकता है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स अडॉप्ट करना, जो कतर के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट है। पानी की वेस्टेज को ये ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल, हर कतरा काउंट होता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, लाइक शॉर्टर शावर्स या लीक्स को फिक्स करना, वी कैन इंश्योर कि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए पानी ही बचा रहे हैं। आफ्टर ऑल, वाटर इज द ब्लू गोल्ड ऑफ आवर प्लैनेट्स फ्यूचर। अब चलते हैं सस्टेनेबिलिटी न्यूज की तरफ, ग्रीन फ्लैश पे।
1: ग्रीन फ्लैश।
0: Let's dive into three inspiring watery

0: साइकिलिंग स्टोरीज। पहली खबर सिंगापुर से। सिंगापुर का एनी वाटर प्रोग्राम दुनिया में एक मिसाल है। ये कंट्री अपने 40% वेस्ट वाटर को हाईटेक ट्रीटमेंट के जरिए रिसाइकिल करता है, जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का हिस्सा होता है। इसका एक प्लांट चंगी वाटर रिक्लेमिनेशन प्लांट हर रोज 900,000 क्यूबिक मीटर्स पानी रिसाइकिल करता है। Isn't that incredible? दूसरी खबर है ऑस्ट्रेलिया से। पर्थ में ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट स्कीम के अंडर ट्रीटेड वेस्ट वाटर को अंडरग्राउंड एक्वाफाइर्स में इंजेक्ट किया जाता है, जो फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है। ये एक सस्टेनेबल वे है पानी के रिसोर्सेज को सिक्योर करने का। ये स्टोरीज हमें इंस्पायर करती हैं टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से हम वाटर स्कैसिटी के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट की, जहां हम देखते हैं कटिंग एज आइडियाज जो सस्टेनेबिलिटी को शेप कर रहे हैं।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं गेम चेंजर टेक्नोलॉजी पे, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स। ये मशीन हवा में मौजूद मॉइस्चर से पानी एक्सट्रैक्ट करती है, इवन इन एरिड क्लाइमेट लाइक कतर। कुछ कंपनीज ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो सोलर एनर्जी से चलती है और घर, ऑफिसेज या रिमोट एरियाज के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकता है। इमेजिन कतर के डेजर्ट में एक मशीन जो हवा से पानी बनाए। ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: डियर लिसनर्स, अब चलेंगे हम कुछ इको लिविंग टिप्स की तरफ, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं पानी बचाने के लिए। एरेटर्स या लो फ्लो टैप्स लगाएं, जो पानी का फ्लो 50% तक कम कर सकते हैं। अपनी वॉशिंग मशीन या सिंक से निकला हुआ पानी कलेक्ट करें और इससे प्लांट्स को पानी दें। स्प्रिंकलर्स की जगह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करें, जो पानी डायरेक्टली प्लांट रूट्स तक पहुंचाता है और वेस्टेज कम करता है। एक छोटा सा लीक भी महीने में थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर वेस्ट कर सकता है। अपने टैप्स और पाइप्स चेक करें रेगुलरली। इन टिप्स को फॉलो करके आप ना सिर्फ पानी बचा सकते हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वक्त है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का।
1: Voices of the planet.
2: Climate change has impacted the hydrological cycle. It has created more variability, unpredictability in the rainfall cycle. So you have fewer rainy days, protracted dry days, and as a result, you have a scenario where you have more extreme events happening in the countries. And that is creating fundamental challenges in the water sector. But the good news is that the water sector also provides solutions to be able to respond to the climate crisis. This is about better water storage management, right kind of policies and the institutions in the country, right pricing of the water services. There are many things which can be done. At the World Bank, we have a what we call one water strategy, where we look at managing water resources in an integrated manner.
0: जी तो लिसनर्स, आपने सुना ये जबरदस्त सा मैसेज। उनके दिल की बात जो कि थी तो छोटी, लेकिन हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपना हिस्सा डालें। अब टाइम है हमारे टेक अवे चैलेंज का।
1: वीकली चैलेंज।
0: इस हफ्ते में आप सबको चैलेंज देती हूँ, नो रनिंग टैप्स फॉर अ वीक। जब आप डिशेस धो रहे हो, टीथ ब्रश कर रहे हो या कार वॉश कर रहे हो, टैप को बंद रखें। जब यूज नहीं कर रहे तो पानी सिर्फ उतना ही यूज करें जितना जरूरी है। अगले हफ्ते हमें व्हाट्सएप करें ऑन 666-22-107 या सोशल मीडिया पे @FM107 कतर पे बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। लेट्स सेव वाटर टुगेदर। शुक्रिया आप सबका, आपने सस्टेन द फ्यूचर के साथ ये इको फ्रेंडली सफर शेयर किया। अगले हफ्ते हम बात करेंगे फूड वेस्ट के हवाले से और सुनेंगे एक नई इंस्पायरिंग वॉइस। कनेक्ट विद अस एट FM107 कतर और व्हाट्सएप पे 666-22-107। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज और अपना और अपने प्लेनेट का ख्याल रखिए।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है।
2: दोस्तों वो कहते हैं ना कि हिम्मत वो चाबी होती है जो बंद दरवाजे खोल देती है। अगर आप दरवाजा खोलना चाहते हैं तो उठिए, पहला कदम बढ़ाइए और अपने लिए नए दरवाजे खोलिए।
3: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ नाज़िया फ्रॉम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन। दोस्तों इस शो का हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हर उन लेडीज की स्टोरीज को हम आप तक पहुंचाएं जो हिम्मत जज्बे की मिसाल है। फिर चाहे बात छोटी हो या बड़ी, चाहे कामयाबी छोटी हो या बड़ी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हर किस्सा किसी न किसी के लिए रोशनी का सबब बनता ही बनता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड का आगाज करते हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है फैमिली बॉन्ड की। लेट्स वेलकम आलिया मसूदी ऑन FM 107। होप शी इज डूइंग गुड एंड ग्रेट, हाउ यू डूइंग?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग वेल।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलिया, सबसे पहले आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जानना चाहूंगी और किस तरह से सोशल वर्क को करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ, कब पैदा हुआ?
4: जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं अक्सर इस बात को बोलती हूँ, मैं बचपन से ही ना बहुत रेबीलियस चाइल्ड रही हूँ। सो और विद डैट मैं बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो एकदम से मुझे फील होता था लाइक अगर मैं पेन किसी को पेन में देखती थी या कुछ भी, जब बचपन से लाइक आई यूज टू फील अलॉट। तो बचपन से जो मेरा ये रेबीलियस अंदर मेरा नेचर था लाइक अराउंड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, चाहे पेरेंटिंग स्टाइल्स हो, चाहे जहाँ मुझे ऐसे लगे कि एक मतलब किसी एक आवाज़ को ज़्यादा पावर दिया गया है देन दूसरी आवाज़ को साइलेंस किया गया है, स्पेशली अबाउट गर्ल्स बीइंग साइलेंस्ड। तो डॉवरी सिस्टम जहाँ पे मैं देखती थी कि लड़कियों का लाइक देयर वर्थ इज वो बिल्कुल वो मटेरियल थिंग्स पे डिसाइड किया जाता है, एजुकेशन सिस्टम कंपेयरिंग चिल्ड्रन क्लासरूम में बच्चों को, तो आई वाज देयर ऑलवेज। तो इसके रिलेटेड मेरे अंदर हमेशा क्वेश्चंस हुआ करते थे और मुझे पता था लाइक आई यूज टू फील लाइक जज्ड व्हेन आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू स्पीक लाइक ये कहीं सही नहीं है, तो आई यूज टू बी जज लाइक शी इज़ टू टॉकेटिव, शी इज समटाइम्स रूड, लाइक यू नो, क्योंकि मेरे अंदर वो फायर था कि मैं जहाँ बोलूँ मैं पूछूँ मैं सवाल करूँ कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, दिस इज समथिंग।
2: आलिया सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाउ ऑफन यू हैव बीन सप्रेस्ड?
4: वेरी ऑफन, सो इट्स वेरी ऑफन, इट्स वेरी कॉमन लाइक
2: इन क्लासरूम और
4: इन क्लासरूम इन आर फैमिलीज, लाइक यू नो व्हेन यू हैव अ चाइल्ड हु इज समबडी हु इज रेबेलियस, हु विल आस्क क्वेश्चंस, हु विल क्वेश्चन द सिस्टम्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, दैट child will be labeled. So I was often labeled, but I always knew ki ye cheez jo main andar se soch rahi hu kar rahi hu ye galat nahi hai. So I had that whatever I'm doing it's very right, it's not wrong jo main kar rahi hu. लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे अंदर कंपैशन था, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो मुझे माइक दे दो मुझे स्टेज दे दो आई यूज टू फील लाइक यू नो अलाइव, सो इसका मुझे बहुत पैशन था। सो क्या था कि मुझे हमेशा लगता था लाइक आई वाज बॉर्न टू यूज माय वॉइस फॉर चेंज, तो मुझे हमेशा एंड आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सो एज अ चाइल्ड आई इवन ड्रीम्ड कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूं. तो मुझे लगता था पॉलिटिशियंस जो है ना दे आर लाइक दे ब्रिंग सोशल चेंज, सोसाइटी में हेल्प करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट मुझे लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ मीडिया पर्सनैलिटी, आई डू सम रिपोर्टिंग अबाउट कि यहाँ पे ये गलत चीज़ हो रही है, कि बस मुझे उठना है गलत चीज़ के खिलाफ, मुझे बोलना है. सो मुझे लगता था कि लाइक मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म जो है जो वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो जो मेरा बचपन था इट वॉज लाइक इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ रेबिलियन एंड कंपैशन. तो मैं कहीं चीज़ नहीं देख सकती थी अनफेयरनेस कहीं पे कुछ हो रहा है, तो मुझे बस उसके बारे में बोलना है. तो उसकी वजह से लाइक मेरी जर्नी है ना वो सोशल चेंज की वहाँ पे शुरू हो गई. तो मैं बोलती हूँ कि लाइक इट शेप मी द पर्सन हु आई एम टुडे, दैट फायर यू नो विच वाज इनसाइड मी फ्रॉम माय अर्ली चाइल्डहुड. तो जो कि बिकॉज नाउ आई यूज़ माय वॉइस एंड माय वर्क टू चैलेंज सिस्टम्स, टू क्रिएट चेंज एंड टू बिल्ड बेटर स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन, फॉर फैमिलीज एंड टू एम्पावर देम.
5: Beautiful, beautiful.
4: So it was all in there.
5: Really inspiring story. बहुत कम ऐसा होता है कि छोटी उम्र में आपको जो है ना ये सिस्टम, नॉर्म्स और चीजें जो है अनोइंग लगे, कुछ गलत हो और आपको समझ में आए कि गलत हो रहा है, मुझे आवाज उठानी है. तो आई एम श्योर किसी ना किसी का ऐसा हाथ होगा, कोई ना कोई ऐसा आपका मेंटर जरूर रहा होगा जिसको आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करती रही होंगी ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड डेज. तो कौन आपका रोल मॉडल?
4: वो भी सही है, लेकिन एक चीज है, वही मैंने कहा ना कंपैशन की बात मैंने कही, तो हर किसी मेरे अंदर बहुत कंपैशन था. तो जितना
5: कहीं से तो आया होगा कोई तो
4: रोल मॉडल लाइक. हाँ जी बिल्कुल, मेरे फादर मेरे रोल मॉडल रहे हैं. ही अभी हम लोग जेंटल पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग की बात करते हैं आजकल, मेरे फादर तो उस जमाने में कॉन्शियस पेरेंट थे. तो लाइक ही यूज टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन बिफोर करेक्टिंग देम. तो ही वॉज द एग्जाम्पल. मैं अक्सर बोलती हूँ इफ आई एम टूडे, मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग पाथ लिया है एंड आई एजुकेट पीपल अबाउट कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट्स ड्यू टू माई फादर बिकॉज ही हैज़ बीन कॉन्शियस पेरेंट दोज डेज. तो ही वॉज डिफरेंट, ही वॉज पेरेंटिंग इज डिफरेंटली. And so yeah, my father has been my role model. And this public speaking, it's also in our blood. So it's from him.
5: He's also a very good
4: speaker. He's a very good speaker, yes.
5: Okay, fantastic. So tell me Alia, what actually inspired you to start your journey as a social entrepreneur?
4: जी एक्चुअली दिस जो फैमिली बॉन्ड है इट्स माई लिव्ड एक्सपीरियंस. सो ये मेरी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ये मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस से शुरू हुई है. इट बिगेन फ्रॉम माई मदरहुड एंड बिकॉज मैंने जो देखा कि आई वॉज पेरेंटिंग माई चिल्ड्रन द डिफरेंट वे, नॉट एज कि जैसे मेरी पेरेंटिंग हुई है या मेरी फ्रेंड्स को मैं देख रही हूँ अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हुए. सो वो था कि आई फेल्ट लाइक आई एम डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. ठीक है, जो बॉन्डिंग मेरी बच्चों के साथ है, द वे आई एम रेजिंग देम, वर्किंग ऑन देयर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियस, यूजिंग द पाथ ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग अपने बच्चों को बड़ा करने में, तो दैट समथिंग यू नो एवरी सिंगल डे जो मैं करती थी दैट इंस्पायर्ड मी टू

0: create this family bond and educate the community regarding mm-hmm. the family wellness, conscious parenting, family bonding, emotional intelligence. So differences, embracing the differences, accepting your children the way they are. So yeh tha ki meri khud ki jo journey rahi hai motherhood ki, that has been very inspiring. So that made it possible, this creating this family bond.
1: Right. Okay, Alia, we do know that ki challenges are part and parcel of our life.
0: Ji.
1: तो जब आप फैमिली बॉन्ड को एक्सपैंड कर रही थी या जिसको इनिशियली एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, किस तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया?
0: बहुत सारे चैलेंजेस को. सबसे पहले फैमिली बॉन्ड, आई स्टार्टेड फ्रॉम माय रूम एक्चुअली, यू नो, विद माय फ्रेंड्स चिल्ड्रन, बट उनके बच्चों के साथ, उनके साथ कि मैं उनको एजुकेट करूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, लाइफ स्किल के रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन आई यूज टू गिव इन माय कम्युनिटी. देन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू माय फ्रेंड, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज फ्रॉम कश्मीर, शी केम एंड शी स्पेंड सम टाइम विद अस एंड शी पुश्ड मी, शी सेड कि आप जो कर रही है अपने बच्चों के साथ अपनी कम्युनिटी में, यू शुड कम आउट फ्रॉम योर हाउस एंड यू नीड टू एजुकेट द पीपल इन द कम्युनिटी एट लार्जर. तो आई वुड लाइक टू गिव हर क्रेडिट फॉर पुशिंग मी उस टाइम पे. लेकिन इट वॉज नॉट ईजी, देर लॉट ऑफ चैलेंजेस. सो पहला चैलेंज मेरा खुद का हेल्थ था. सो आई वुड से माई ओन हेल्थ. सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ हेल्थ, जहाँ पे मुझे आई, क्योंकि जो बात करना मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो माई वॉइस इज़ माई पावर, जहाँ पे मुझे बात, डॉक्टर ने बात करने से मना कर दिया. सो या सो आई इट जस्ट इट वॉज लाइक अ वेरी शॉकिंग टू मी. मैंने कहा कुछ भी बता दो, बस बात करना बंद ना कर दो, क्योंकि बस इसी बात से आई कैन हील द पीपल, आई एजुकेट पीपल. सो दैट वॉज अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, इनिशिएटेड दिस जर्नी. तो एंड दैट उसके बाद उससे वजह से मेरा मेंटल हेल्थ पे टॉल आ गया. आई वेंट इन टू अ स्ट्रेस पीरियड, आई लॉस्ट माई वे, I couldn't sleep in the night because I was going through this phase ki nahi mujhe bolna hai, meri awaaz band ho gayi, like I can't, I have to speak, I have to educate people. So that was the biggest challenge jab maine ye start kiya. And plus uske baad मदरहुड, आई वुड से नॉट मच, अक्सर ऐसे करते जब लेडीज बाहर निकलती है, दे इनिशिएट टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, कोई कुछ किसी भी तरह से, तो उनके बोलती कि हमें मदरहुड के चैलेंजेस आते हैं.
1: right.
0: मेरे लिए वो चैलेंज कम था, ज़्यादा नहीं था.
1: uh-huh.
0: मैं बताऊँगी, क्योंकि लाइक माई चिल्ड्रन, वी हमारा जो बॉन्डिंग था, दे वेर द वे आई रेज देम, सेल्फ अवेयर एंड कम्पैशनेट. सो आई टोल्ड देम आई एम गोइंग टू डू दिस, इट्स समथिंग आउट ऑफ कम्पैशन, आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल. सो दे वेर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. सो दे हेल्प मी, दे हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट इन मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर मी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वुड से द माई हेल्थ हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट चैलेंज. और हमारे अक्सर चैलेंजेस हमारा फाइनेंशियल होता है चैलेंजेस. सो इन माई इनिशियल डेज आई हैव यूज माई पॉकेट मनी so to just organize some few workshops, and with that my husband helped me a lot. He supported me financially in my initial days a lot, seeing my passion towards family bond jo main kar rahi hu. Aur uske baad हाँ, देर आर दे फ्यू लाइक ये जो सोसाइटी में जजमेंट्स, लाइक यू नो, तो वी विल फेस कि जब ऐसा हो. सबसे बड़ा जजमेंट तो था कि तीन बच्चों की माँ, लाइक शी इज कमिंग आउट ऑफ हर हाउस एंड शी इज डूइंग समथिंग लाइक एंड
1: स्ट्रॉन्ग तीन बच्चों की माँ.
0: आई वुड से समथिंग हियर. आई यूज्ड टू, मैं साइकिल चलाती थी व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग, लाइक मैं साइकिल चलाती थी अपने कम्युनिटी, मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर, यू नो, टू कम आउट ऑफ द हाउस. तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करूँ अकेले विदाउट बच्चों के, एज अ एक सेल्फ केयर का. तो पीपल यूज टू जज लाइक सेइंग दैट तीन बच्चों की माँ साइकिल चलाती है, लाइक यू विल हियर सच कमेंट्स इन आवर सोसाइटी. इट्स वेरी कॉमन, सो देयर वे जजमेंट्स रिगार्डिंग माय होम स्कूलिंग, आई वाज होम स्कूलिंग माय किड्स, रिगार्डिंग लॉट ऑफ थिंग्स, माय डिसीजंस, बट दैट्स फाइन. कहते हैं ना कि किसी का रिजेक्शन आपको ज्यादा वो फ्यूल देता है, क्योंकि फायर तो था अंदर से, तो ज्यादा फ्यूल हो गया, फ्यूल मिलता था. तो इट यूज टू इग्नाइट मी मोर एंड आई डिडंट बॉदर एट ऑल. वही कहते ना कि पैशन जब हो ना तो nothing can stop you.
1: That's true. We salute you, Alia, for this. और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर रही हैं. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के उस पार भी.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद हैं, आलिया, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी लाइफ के साथ मेल खाती है और हमें एहसास और महसूस होता है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्ट्रांगली कम बैक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आलिया सिखा रही हैं, बता रही हैं। तो आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपको लगता है कि आपके काम ने लोगों को एक्चुअली मुतासर किया, या कोई स्टोरी है खास जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ?
2: जी बिल्कुल, देखिए ये चीज़ है कि व्हाट आई बिलीव इन कि वी हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक। तो जब भी हम कुछ बताएं, सच हो, रॉ हो और ऑथेंटिक हो, क्योंकि सोशल मीडिया की आजकल की दुनिया में लोग बहुत वो रील पे ज़्यादा बिलीव करते देन रियल। तो इस चीज़ में यहाँ पे मैं आई ट्राई टू एजुकेट पीपल by educating them like you know raw and मैं authentic content दो। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि क्या थिंक वट आई नो आई एम डूइंग डिफरेंटली दैट इज इंस्पायरिंग पीपल इज दैट आई एम कहते हैं ना वो ट्रूथ बॉम्ब्स थ्रो करना, तो मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। तो मैं क्या कहूँगी, मैं ये नहीं बताऊँगी कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है, ठीक है, ये सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। मैं बताऊँगी ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू आई वॉन्ट टू गिव दम रियलाइजेशन, ठीक है, कि कहाँ चीज गलत कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए सोच के कि इसको हम कैसे सोल्यूशन करें, हम किससे इसको आंसर करें, इस प्रॉब्लम को हम कैसे, जैसे हमारी काउंसलिंग सेशन होते हैं फैमिलीज के साथ, लेडीज के साथ, तो वो प्रॉब्लम्स लेके आती है अपनी फैमिली वेल्थ के बच्चे का। देखिए बच्चे स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे रिड्यूस करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगी तो प्रॉब्लम क्या है कि आप बताइए आपका स्क्रीन टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना फोन खोलिए, आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम कितना है। तो बच्चे तो रोल मॉडलिंग देखते हैं, बिल्कुल, तो आप बच्चों की यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक टू योर चिल्ड्रन। तो वो होगा हील होना, रियल हील होना। तो मैं वो चीज़ करती हूँ कि मैं उनको ना लुक बैक रियली वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग एंड यू वोंट बिलीव नाउ दे कम अप विद द सॉल्यूशंस देमसेल्व्स। खुद वो सोल्यूशन लेकर, क्योंकि वो अपने आप के अंदर ना वो देखते कि कहाँ पे गलती है, क्योंकि जो चीज़ शुरू होता है ना वो हमसे ही शुरू होता है, इट्स ऑलवेज फ्रॉम अस, नोबडी इज गोइंग टू कम टू हेल्प अस एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग टू अस, इट्स वी ओनली जो हम करें ना, लोगों को इफेक्ट होने दे रहे हम पे, इट्स वी जो है जो हमसे है। तो ये है मुझे क्योंकि आई हैव सीन लेडीज, मैं आपको स्टोरीज बताऊंगी, जैसे एक लाइक इट में कोई मुझे ये बताए, समबडी विल आई विल मीट समबडी एट एन इवेंट एंड दे विल टेल मी थैंक्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज आई केम आउट फ्रॉम अ टॉक्सिक रिलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू टॉट मी हाउ टू से नो। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, तो जब किसी ने ऐसा बोला लाइक इट वाज इट्स रियली मेक्स अस हैप्पी।
1: कितना टाइम लगता है कि उस बंदे या बंदी को उस हैबिट से बाहर निकाल के लाने में, कितना टाइम लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस है आपका?
2: देखिए मैं वही कह, जितना रियलाइजेशन जल्दी होना उतनी जल्दी हीलिंग और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जल्दी। तो इसलिए आई ट्राई टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन, आई विल थ्रो द ट्रुथ बॉम्ब एंड दे विल बी लाइक यस दिस इज द थिंग।
1: कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा हो क्या रे?
2: दैट इज वो तो होगा। देयर वाज सम पीपल आई हैव वर्कड विद फैमिलीज, आई वर्क कांस्टेंटली लाइक 2-3 मंथ्स एंड एट द सम टाइम दे विल बी टायर्ड, क्योंकि दे विल गिव अप लाइक यू नो टू वर्क किसी भी चीज में, जो भी फैमिलीज में इशू हो या कोई चीज, तो दे विल गिव अप। But at the end they know that actually they are the problem because that's why they give up. वो खुद पे चेंज नहीं लाना चाहते, लेकिन हमें खुद में ही चेंज लानी है। तो जो चीज है हम ही अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, nobody is going to change us. तो बात वही आती है that we have to realize कि कहीं हम में क्या चीज है जो that we need to change. For example अगर हम लोग, मैं जैसे एक मदर थी, for example जब मैं स्पीच दूँ, कोई मैं कहीं पर स्पीच देती हूँ या मैं कोई कॉन्टेंट दूँ, they will come up and they will send me a message, they will make a call to me and they will say ki I was about to do this, मैं अपने बच्चे पे चिल्लाने वाली थी, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा करने वाली थी, जो स्पीच केम, योर कॉन्टेंट केम एंड मैंने अपने आप को स्टॉप कर दिया, लाइक इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर लाइक यू नो इफ यू। तो ये सब चीज़ें है। वंस मैंने सोशल मीडिया पे चैलेंज दिया था मदर्स को कि वन मदर केम टू मी एंड शी सेड आई हैव दिस हैबिट ऑफ पंचिंग माई चाइल्ड, यू नो हिटिंग माई चाइल्ड, सो आई इंट्रोड्यूस्ड अ पिल्लो टू हर, आई सेड आप अपने घर में हर पिलो जो जितने भी पिलोज है सोफा पे काउच पे आप उन पे सब पे लिख दो हिट मी ठीक है उसको बोलते ये मुझे क्या कह रही है लाइक व्हाट इज शी टेलिंग मी सिंपल थिंग व्हाई यू कांट डू इट प्रैक्टिकली नहीं नहीं मेरा खराब मुझे घर का एस्थेटिक्स एंड ऑल दैट मैं कहा नहीं नहीं दिस इज योर प्रायोरिटी यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट तो आपको यहां पे ये चेंज करनी पड़ेगी एंड आई मेड हर टू राइट हिट मी इट लुक वेरी फनी फॉर हर इन द इनिशियल डेज तो जब वो जैसे ही बच्चा बच्चे को मारने उठने चले जाए उठने के लिए सडनली शी विल लुक एट दैट पिलो विल रिमाइंड हर Hit me. तो मैंने कहा बच्चे के बदले जाके उसको तो शी स्टार्टेड हिटिंग द पिलो इट टुक हर 3 weeks यू वोंट बिलीव इट टुक हर 3 weeks टू शी वाज get rid of that मतलब ये पिलो को 3 हफ्ते मार रही है शी इज हिटिंग द पिलो की इतनी आदत
3: get rid of this habit
2: exactly पिलो को क्योंकि हम उसकी फीलिंग को भी इनवैलिडेट नहीं कर सकते गुस्सा तो उसको आ रहा है कोपिंग स्किल्स को है नहीं कि वो रेगुलेट करे खुद को तो उसको तो मारना है टू फील मेक हरसेल्फ फील बेटर तो वो तो बच्चे को तो हम मारने नहीं देंगे तो ले लो पिलो को ही मार दो बेचारे को तो शी इज डूइंग दैट 3 weeks आफ्टर 3 weeks शी इज फीलिंग सो बेटर एंड शी सेड आई वांट टू लर्न नाउ हाउ टू रेगुलेट माय इमोशंस आई सेड दिस इज द थिंग यू हैव टू रिप्लेस इंस्टेड ऑफ हिटिंग योर चाइल्ड यू हैव टू हिट समथिंग एल्स तो आप पेपर क्रम्बल कर दो आप किसी और चीज पे अपना गुस्सा निकाल दो लेकिन इंसान भी नहीं किसी को बच्चों को हर्ट ना करे विद योर वर्ड्स नॉर योर एक्शंस तो आपके बच्चे भी देखेंगे एंड हर सन दे यूज्ड टू कम एंड हग हर लाइक दे सीइंग हर कि शी इज बीटिंग द पिल्लो सो दैट वाज सच अ वंडरफुल थिंग यू नो व्हेन आई हर्ड दिस एंड मैं बहुत ही इमोशनल हो गई एंड आई वाज लाइक आई एम ऑन द राइट पाथ एंड व्हेन यू आर इन द राइट पाथ नाजिया व्हाट आई हैव सीन यू विल द अच्छे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे जो आपके लिए दरवाजे मेंट नहीं है ना दे विल बी क्लोज्ड सो सिंस आई स्टार्टेड फैमिली बॉन्ड आई हैव ओनली मेट द गुड पीपल इन माय लाइफ आई हैव हैड इंटरेक्शन लाइक कुछ ऐसे इंटरेक्शंस नेगेटिव बट दे वर द लेसंस वेरी पॉजिटिव जिसने मुझे इफेक्ट नहीं किया तो लेकिन देवस्था जब मतलब ऐसी इतनी सारी स्टोरीज है ना कि जहाँ पे मदर खुद को हील कर रही है शी इज गेटिंग
3: कॉमन

0: फीमेल को टारगेट किया जाता है, एक मदर को टारगेट किया जाता है, एक तो वो मैं चीज कर रही हूँ कि सबके इश्यूज है, सबके इश्यूज है और मदर ही काम करना चाहती है.
1: मतलब आप कहते हैं सॉफ्ट टारगेट जो है वो मदर,
0: शी इज मदर ऑलवेज, शी इज मदर ऑलवेज. सो ऐसा नहीं है, दे ऑल एवरीबॉडी हैज देयर इश्यूज.
1: डू यू सिट विद अदर मेंबर्स आल्सो?
0: यस, आई हैव डन काउंसलिंग, आई हैव डन काउंसलिंग विद द फादर्स मेनी. सो आई
1: यू, हाउ वाज द रिस्पांस इनिशियली? उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और दे वर रिलक्टेंट?
0: नो नो नो, इट्स दे वर रिलक्टेंट. इट्स नॉट इजी to okay. accept for a man, like, you know, they have that ego.
1: एक तो अपना, that's what I'm
0: एक अपना एक ego man का, और उसके बाद parental ego भी जब आ जाता है ना, वो माँ को भी होता है और fathers को तो ज़्यादा है कि नहीं जी, we are not going to. Mothers को बहुत, like, moms want to change. I have seen, like, अगर मैं अपना research करूँ, अगर मैं अपना देखूँ जितने cases हमने देखे हैं, तो उसमें से, like, I have seen, like, mothers will only come to you, you know, like, we want to change this, हमारे issue ठीक
1: है,
0: so they take the first step. वो देखा, क्योंकि उनमें वो हमेशा guilt होता है ना कि बच्चे के साथ या कुछ भी issues family में हो जाए, तो they want to have like peace घर में रहे पूरी तरीके से. So है तो सब में issues, तो but very rarely the families are कि सारे members जहाँ involved हो जाए कि हम लोग अपनी family का well-being के बारे में सोचे. It's very rare. कहीं पे mothers का role ज़्यादा होता है and fathers are totally absent. वहाँ पे तो काम नहीं होगा. It's things will not improve there totally. वहाँ पे बिल्कुल भी things improve नहीं होगी, क्योंकि it needs to be ना involvement of every member.
1: तो very well
0: said. That's very important. So it's this was in a story जो मैं आपके साथ share की.
1: बहुत ही अच्छी.
0: ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस screens का red screen को reduce करना, like you know that is also there are a lot of moms like जो ने खुद अपने screens के reduce के, and then they will be sharing the screenshots in the group, a family bond group, like see how much हमारा screen reduction हो गया है, and they're spending more time, they're being more present. तो screen जब reduce हो गया बच्चों के साथ presently वो ज़्यादा, और they're enjoying their children. एक माँ जो कहती है I don't like my child, you know, there's one mom came to me once and she said I don't like my child, मुझे पसंद नहीं है इसके साथ time spend करना, you know, I don't want to spend time with her and she gives me anxiety, she gives me stress. तो I want to send her to the school, I want to send her to some babysitter. इस तरीके से बहुत common है, बहुत common है. तो एक common family जो ना उनके cases मैं आपको बता रही हूँ. तो like उसके सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था उसके अंदर उसके बच्चे का भी मोहब्बत पैदा कर देना, वो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर. तो मैंने उसको समझाया कि एंड नो वी वर्कड ऑन लॉट ऑफ थिंग, आई गिव हर सम एक्सरसाइजेस, बहुत सारी चीजें करने के लिए, एंड आई मीन लाइक जस्ट like in a one month you would see a drastic change in her, you know, she started loving her child, and you know, you'll see saying spending because
1: positive
0: she was not
1: change,
0: she was not present in the moment. Wo bachche ke sath baithti to thi, theek hai, wo uske sath activity to koi cheez karti thi, but she was not mentally present there, so that's why she was not enjoying that moment. To usko present rehne ka wo training dena, that is very important, to be present us moment mein. To jaise wo present hone lagi na, she became happy. So we kehte na ki live today, to us wo moment, live the moment. To us moment ko आप लिव करो बाय ब्रिंग द प्रेजेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर.
1: माय गॉड, आई एम लाइक सो हैप्पी. इतना अच्छा लग रहा है मुझे. ऐसा लगता होगा कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, नाउ जस्ट डन विद दिस वन टास्क, और एक और प्रोजेक्ट मिला, फिर उस पे काम करना. और एक सुनने में शायद थोड़ा सा आसान है, लेकिन इट्स वेरी टफ.
0: इट इज टफ, बट
1: जब फैमिली के साथ हैं और आप कंटिन्यूअसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, उन्हें समझाया जाए कि कैसे उनके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन सके.
0: बिल्कुल बिल्कुल टफ है, बट ये है कि दिस इज व्हाट आई लव टू डू, हेल्पिंग पीपल, सोशल चेंज. दैट्स व्हाई आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर. मोर देन प्रॉफिट्स आई केयर अबाउट इम्पैक्ट. That is the difference. That's so the difference. I बिल्कुल अपने आप को differentiate करती हूँ from other entrepreneurs. I always say I'm a social entrepreneur. For me, impact is more important than making profits. So that's what I believe in.
1: Beautiful. Hats off, Alia.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
2: दिल से देसी.
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.

0: होंगे आपके बच्चों की, सिर्फ बच्चों में फैमिली वैल्यूज आएंगे, बच्चों में कैरेक्टर बिल्ड होगा, बच्चों में हैबिट ट्रेनिंग डेवलप हो जाएगी, लाइफ स्किल्स डेवलप हो जाएंगे. आपके कनेक्शंस बच्चों के साथ नहीं होंगे तो बच्चा आपकी बात नहीं मानता होगा, यू आर नॉट एबल टू सेट द बाउंड्री, तो ये तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट. कि फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे डिसओबीडियंट है, बच्चे ओबे नहीं करते हैं, बच्चे रूड बन गए हैं. तो दिस इज जस्ट बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन द फैमिली बॉन्डिंग, दैट नर्चर दैट कनेक्ट, नर्चरिंग दैट फैमिली connection, that is important. So we have to yahi sabse zyada important hai aaj ki duniya mein. Nahi to agar hum log ye nahi karenge, kyunki life itni fast ho gayi hai na, itni fast paced life mein, upar se fir screen jo addiction hamara pura AI, and is waqt is time pe ye AI family ko replace nahi kar sakta hai. Believe me, you can share, you can talk with the chat GPT with AI, and you can tell him that I'm not feeling good, help me to, he will give you a lot of solutions, but he is not your healer. Your healer is your family. Aajkal hamari kyun, आजकल की दुनिया में हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, क्यों हमें एंजाइटी होती है, क्यों हमें लोनलीनेस फील होता है, चाहे मर्द हो या औरत, मोस्टली लेडीज को, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास फैमिली अराउंड नहीं है. लोग अगर हैं भी, लेकिन दे आर नॉट प्रेजेंट. लेकिन पुराने वक्तों में क्यों नहीं थेरेपिस्ट की नीड पड़ती थी, वहां क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी, वहां तो कोपिंग कितना ईजी था कोप करने के लिए, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव फैमिली अराउंड, जिनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था. सबसे बड़ी चीज, उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, सो दे यूज्ड टू गिव यू फुली देयर टाइम एंड बी प्रेजेंट देयर फॉर यू. तो आजकल वो मिस है, क्योंकि स्क्रीन्स ने फैमिली को, फैमिली बॉन्डिंग को रिप्लेस कर दिया है. सो दैट इज माई, वही मैंने आपको कहा ना कि मैं ये फैमिली बॉन्ड जो, ये मेरी पर्सनल जर्नी है कि मैंने अपने लाइफ फैमिली में फैमिली बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दिया, देन टू स्क्रीन, देन टू स्पेंडिंग टाइम ऑन गिविंग माई किड्स आईपैड्स एंड गैजेट्स एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन स्क्रीन. सो वी डिड, वी वेर ऑलवेज टुगेदर. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो देन यू आर गोइंग टू प्रिजर्व दिस इंस्टीट्यूशन. नहीं तो वक्त होगा कि एक भाई अपने भाई के लिए नहीं होगा, एक बहन अपनी बहन के लिए नहीं होगी, क्योंकि इतना वो ना वो फैमिली वैल्यूज ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए,
1: इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा.
0: एक्जेक्टली, हां बिल्कुल.
1: उसके लिए यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, टाइम यू अंडरस्टैंड, सिट बैक विद देम, स्पेंड लिटिल क्वालिटी टाइम.
0: एंड पीपल से लाइक, सी ये हमेशा मैं सुनती हूं, क्वालिटी टाइम, दिस इज, बट आई डोंट, आई बिलीव दैट क्वांटिटी टाइम इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आप, मैं चाहती हूं जो भी हमारे लिसनर्स अभी सुन इस बात पे, मेरे घर पे एक थॉट ले कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि विद क्वालिटी टाइम क्वांटिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. 10 मिनट में बच्चे के साथ क्या कनेक्ट, हम लोग 10 मिनट ही हो लेकिन एकदम से प्रेजेंट हो, लेकिन नहीं, बच्चे को तो थोड़ा सा टाइम और चाहिए, बहन को तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा होना चाहिए, उसको कितनी सारी बातें करनी होती है लाइक अपनी बहन से, भाई को कितनी सारी बात. सो वी नीड ईच अदर, सो दिस वी हैव टू प्रिजर्व दिस इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों के लिए, ताकि दे विल कैरी इट ऑन, यू नो, लाइक सो लाइक हम लोग ट्रॉमास पास करते हैं जनरेशन, लेट्स पास फैमिली बॉन्डिंग थ्रू जनरेशन, लेट्स प्रिजर्व दिस इंस्टीट्यूशन.
1: बहुत अच्छा लगा अली आपसे बात करते हुए, वक्त कहाँ निकल गया हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगा. और जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी भी, आप खुद एक इंस्पायरिंग वुमेन है, तो हमारी जितनी फीमेल ऑडियंस हैं जो अपने पैशंस को परस्यू करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से कर सकती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: बिल्कुल, मैं तो ये मैसेज दूंगी जो मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ, सबको ये बताती हूँ, जिनसे भी मैं लाइक दे आस्क मी सम सजेशन, सम एडवाइसेस, तो मैं बोलती हूँ जो सबक पढ़ा है ना आपने, उस सबक को थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए, और उसमें से थोड़ा सा कुछ ले लीजिए जो आपको आपको सर्व करता है आज के ज़माने में, उस सबक में से, और अपने वैल्यूज, जो आपकी खुद की वैल्यूज है, बिलीव्स है, उसके साथ एक नया सबक पढ़िए, इसको पूरा अपने कस्टमाइज बनाइए. तो कस्टमाइज बना के कुछ साइकिल्स को ब्रेक करें, कुछ नए चीजें बनाए, नए कैसे लाइक
1: नए नॉर्म्स,
0: हाँ एग्जैक्टली प्लीज, तो इनको बना के आप यू कैन परस्यू योर पैशन लाइक यू नो. तो अपने आप पे बिलीव करें, सो किस दिस सेल्फ डाउट, जज्बाती होना, going through a mental bad phase, mental health bad phase, koi bhi cheez, this is fine, this will not stay with you always,
1: temporary.
0: Haan, this is all temporary. What you need is that you need to believe in yourself, ke your resilience. You can, aap fail ho jaye, aap baithe, aap roye, beshak roye us failure pe, afsos kare, apne thoughts write down kare, lekin uske baad aap fir se uthe. डोंट, या क्योंकि ख्वाब जो होते हैं ना वो कभी मरते नहीं है. तो मैं एक चीज यहाँ पे आपको अपना एक किस्सा बताना चाहती हूँ. जब आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी दिस बैड हेल्थ फेज, तो मेरा वोकल रेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस किया था, एंड आई वाज नॉट टॉकिंग फॉर वन और टू मंथ्स. I used to read books those days, a lot of, and while reading a book, Hi-Fi Habit by Mel Robbins, I would recommend to those ladies jo pursue karna chahte, they want to come back, make a comeback. So main pad rahi thi wo kitab, and she mentioned in that book ke,

0: I was going through this bad phase, same like I was going through this bad phase. तो उसके बाद मैं वो किस ओपरा से मिली है वो during some show Mel Robbins and she told her कि she said I want to be a public speaker, I want to go, I want to be a life coach, I want to educate people. She but I don't have a certification or something like. She said you have a voice, you know, you have a voice. Go ahead. That's what you need. So जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो मैं I was like मेरे मुझे पता नहीं है मेरे कपड़े गीले हो गए थे रोते रोते लाइक आई वॉज इन दैट मोमेंट यू नो मैं पूरा उसमें क्योंकि दिस इज माई स्टोरी तो मैं बोल रही थी एंड माई क्लोज एवरीथिंग वॉज वेट आई वॉज क्राइंग एंड देन यू नो आई मैं बिल्कुल ज़ोन आउट आई वाज लाइक यस दिस इज ट्रू माई वॉइस इज ऑल्सो माई पावर नथिंग कुछ नहीं आई हैव टू गो इट्स ओके आई हैव बीन एडवाइज दिस वोकल इट्स ओके आई कांट टॉक फॉर सम टाइम इट्स ओके बट आई कैन मेक अ कम बैक मैं कोई और चीज़ कर लूँ कुछ एंड अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना वो अपने आप बिलीव करना हील कर देता है एंड मैं हील हो गई अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह विल बेशक और अपने विल पावर से सो दैट्स इम्पोर्टेंट
1: और अल्लाह भी आपकी नियत के साथ है आपकी अच्छी नियत
0: इंटेंशनल लिविंग इज वेरी इम्पोर्टेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट ये मेरी जिंदगी का ये है कि आई लिव आई डू एवरीथिंग इंटेंशनली तो अल्लाह इज ऑलवेज यू नो विद यू ही विल ही इज गोइंग टू गाइड यू
1: बहुत ही खूबसूरत बात थैंक यू सो मच आलिया बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की थैंक यू सो मच
0: It was my pleasure. Thank you so much.
1: Well, दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का इंशाल्लाह नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से डीसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, जहां मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में। नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू, फिर चाहे वो लेटेस्ट रिलीज हो या मैजिक हो क्लासिक्स का।
2: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो रिव्यू ऑफ द वीक।
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन।
2: तो जनाब, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में, एक ऐसी मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं कि जिसे जब मैं देखने के लिए गई तो दिल बड़ा भारी हो गया, है ना, और उसके बाद मतलब थोड़ी सी आंखें नम हो गईं पर एक सुकून भी मिला। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा सिर्फ एक मूवी नहीं है, मुझे लगता है कि एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो आपको किसी खास की याद दिला देगा।

0: मैंने देखा कि थिएटर में जो आखिरी 30 मिनट थे ना, वो शायद थोड़े से ऐसे थे कि हर किसी की आंखें ना डेफिनेटली नम हो गई थी. और ये माइंडलेस एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, मतलब लिटरली ये फिल्म बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है. ये कैसी खामोशी है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ चलती है, खास तौर से उन फैमिलीज के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने पार्टीशन को फील किया, पार्टीशन का दर्द महसूस किया है. ये फिल्म एक जेनरेशनल नॉस्टैल्जिया है और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है या देखने जाने की सोच रहे हैं उन्हें जरूर पसंद आएगी.
1: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना है. और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
2: मॉडर्न के उस साइड.
0: वेल, इस फिल्म की रेटिंग्स को लेकर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कि भाई ये फिल्म, मतलब इम्तियाज अली ने वही स्टोरी को अलग अंदाज में पेश किया या इम्तियाज अली को कुछ नया करना चाहिए. देखो जो क्रिटिक्स हैं ना, जो कि बड़े ही नामी फिल्मी क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म को वो 3.5 स्टार्स तक दे देंगे क्योंकि पेसिंग थोड़ी स्लो है. और वहीं जो इम्तियाज अली फैंस हैं, उफ, वो तो इसे 5 स्टार देने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्हें ये फिल्म क्लासिक लगेगी. वेल, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया दैट वाज नसीरुद्दीन शाह साहब की एक्टिंग. इट वाज अ मास्टर क्लास एक्टिंग, मतलब बिना बोले अपनी आंखों से इतना दर्द बयां कर देना, उफ, अनबिलीवेबल. मुझे लगता है कि वो यही कर सकते थे.
3: कहां है मैच?
4: चांद पे
3: मैच है. अच्छा, मून पे है, ठीक है.
4: मून
3: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे.
0: वेल, आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा और वो सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा

0: कैसे उस प्रॉमिस को, कैसे उस वादे को पूरा किया जाए. डेफिनेटली आप इस फीलिंग को, इस सवाल के जवाब को मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ. और बताइए मुझे कि क्या आपने कभी कोई ऐसा वादा किया जिसने आपको सालों बाद भी सोने नहीं दिया. ठीक है, मैं आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगी.
1: जो सर पर रह गया भूल जाओ उसे, चलो वापस.
2: आपके पैर पर तो जा रहे थे,
1: जा रहे थे.

अब आते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर. तो जनाब, सरहदों का बंटवारा और उससे जुड़ा जो ये दुख है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है. हिंदी और पंजाबी सिनेमा में

ये फिल्म सिर्फ पार्टीशन की बात नहीं करती, ये उस इंसानियत की बात करती है जो सियासी मुद्दों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस फिल्म में एक ऐसी तहजीब है जो आपको ये सोचने पर

0: कहानी का मेन कैरेक्टर है ईशर सिंह गरीवाल।
1: कहाँ है मैच?
2: चांद पे
1: मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक
2: है।
0: जिन्हें लेजेंडरी नसीरुद्दीन शाह साहब ने निभाया है। भाई ईशर सिंह अब 90 प्लस है और उन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी कि वो अपना आज भूल जाते हैं, आज की बातों को भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पहचानते। लेकिन अक्सर ऐसे मरीजों के साथ एक अजीब बात होती है, उन्हें अपना पास्ट एकदम शीशे की तरह साफ याद होता है। वेल, ईशर सिंह की आंखों में आज भी 1947 से पहले का वो सरगोदा बसा हुआ है जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी यादें उनके लिए एक सेंचुरी है, एक सुकून की जगह है और इसी याददाश्त के पीछे छुपी है एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। उन्हें याद है वो कीनू जिसे वेदांग रैना ने बड़ी और बेहद मासूमियत से निभाया है। तो कीनू जो एक सिख परिवार से होते हैं और जिया एक मुस्लिम परिवार से होती हैं, इनका इश्क इंस्पायर्ड बाय पोएट्री था।
3: नज़्म शायर की ज़ुबानी अच्छी लगती है।
0: कीनू ने अपनी पहली मोहब्बत से एक वादा किया था, वादा कि चाहे कुछ हो जाए वो उसे छोड़कर कभी

0: घर चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन जनाब जब वो बॉर्डर पोस्ट पहुंचते हैं और वहां की अथॉरिटीज उन्हें रोक कर समझाती है कि भाई 1947 के बाद से अब तो अलग मुल्क हो चुके हैं, वो मंजर दिल को तोड़ देने वाला होता है। नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग कमाल है, वहां वो कोलैप्स हो जाते हैं, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि रूह से भी। उन्हें एहसास होता है कि वो वादा जो उन्होंने 70 साल पहले किया था वो आज भी उनके सीने में एक बोझ बनकर बैठा है। अब इस बीच एंट्री होती है उनके पोते निर्वैर की, जिसका किरदार निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। अब दिलजीत जो है उस फिल्म में एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं जो अमेरिका में अपनी तीसरी नौकरी भी डिससैटिस्फैक्शन की वजह से छोड़ चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उसके दादा की हालत नाजुक है तो वो इंडिया भाग कर चले आते हैं। अब यहाँ पर निर्वैर उनके दादा से बातें करते हैं। निर्वैर को धीरे धीरे एहसास होता है कि उनके जो दादा हैं एक अनफिनिश्ड मिशन पर हैं, और वो मिशन है सरगोधा।
1: लगता है कुछ पुरानी बात फंसी है उनके दिल में, वो बता भी रहे हैं हमें लेकिन

बेहद बेहद सोलफुल है। इम्तियाज अली साहब ने यहाँ एक बहुत ही आर्टिस्टिक चॉइस ली है। उन्होंने एक ओपन एंड दिखाया है। यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह को गुजरते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके तसव्वुर में, उनके इमेजिनेशन में उनकी वही जिया नजर आती है जो उन्हें वही पुराने इशारे से कहती है, अब जाओ। ये जेस्चर जनाब

उन्हें क्लोजर मिल गया है। तो जनाब ये है मैं वापस आऊंगा फिल्म की कहानी, बेहद संजीदा, बेहद खूबसूरत। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो मैं कहूंगी एक इमोशनल एक्सपीरियंस को आपने मिस किया है, सो डिसाइड एंड गो एंड वॉच, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातें हैं जिसका जिक्र करना तो बनता ही है कि नहीं। तो अब बात करेंगे इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में। सो इम्तियाज अली और मयानिका महतानी ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक अलग ही नजाकत फील होती है। इस स्क्रिप्ट में ब्रिटिशर्स ने जो पार्टीशन के जख्म दिए थे उनका असर आम इंसानों पर क्या हुआ उसे इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उनके गले में एक दर्द का एहसास होगा। और जनाब ये स्क्रिप्ट सिर्फ रोने धोने वाली नहीं है,

फिल्म के जरिए दिखाया गया है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इतनी प्यारी है, वो सीन याद कीजिए। अगर आपने ये फिल्म देखी है और नहीं देखी तो मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। वो सीन है जब नसीरुद्दीन शाह टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि न्यूज़ रीडर उन्हीं से बात कर रही है। वहाँ से ये जो कनेक्शन बनता है ना, वो फिल्म के आखिर तक चलता रहता है। अब बात करते हैं परिवार की। अक्सर पार्टीशन मूवीज में सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो अनबेरेबल होती हैं।

कैरेक्टर्स में आता है। रजत कपूर ने एक सिनिकल सन का रोल निभाया है और अंजना सुखानी ने एक ऐसी बहू का जो हमेशा पैसे के बारे में ही सोचती रहती है। शुरू में उन्हें अपने दादा की बातें बड़ी फिजूल लगती हैं, पर जैसे जैसे निर्वैर सच की तलाश में निकलता है, ये दोनों भी धीरे धीरे उनके मिशन में जुड़ जाते हैं। स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है, फैमिलीज मस्ट रिमेन फैमिलीज। मुश्किल वक्त में सिर्फ

वही इम्तियाज अली का मैजिक है। स्क्रिप्ट में इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर मैं उन्हें बताने बैठूंगी तो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, हर एक छोटा सा डायलॉग एक पुरानी तस्वीर के पीछे की कहानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सी ट्रैजिक लव स्टोरीज देखी हैं, ऐसी कहानियाँ जहाँ पर प्यार अधूरा रह जाता है, अक्सर आपको दुखी कर देती है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो भले ही रुलाती है, थोड़ा सा आपको सैड फील कराती है, पर जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं ना तो आपके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी होती है, एक ऐसी स्माइल जो कहती है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। हाँ, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो लंबा सा सेगमेंट है, हाँ,

0: लिखी गई है। वैसे कहीं आप भूले तो नहीं है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बिल्कुल शो की शुरुआत में कि ऐसा कोई वादा है जो आपने कई सालों पहले किसी को किया और आज भी उस वादे को पूरा करने की जो बात है वो आपको चैन से सोने नहीं देती, क्योंकि समहाउ उसे आप पूरा नहीं कर पाए। तो ज़रूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और उसे हम अपने शो पर ज़रूर शामिल करेंगे। आगे हम इस फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक पर भी बात करेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस।
1: हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड, जहां मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में।
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता, रिव्यू ऑफ द वीक। आज बड़ी कमाल की फिल्म पर हम कर रहे हैं, एंड द फिल्म नेम इज मैं वापस आऊंगा।
2: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। जैसे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
3: टॉप 10 काउंटडाउन।
2: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्कप्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: पहले इस फिल्म के डायरेक्शन और म्यूजिक के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उसके पहले आपके मैसेजेस की तरफ जरा रुख कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वादा है जो आपको सालों साल बाद भी सोने नहीं देता। जो वादा आपने शायद किसी से किया, आप उसे पूरा करने की कोशिश आज भी कर रहे हैं या फिर वो अधूरा रह गया। तो हमें यहाँ समीर का मैसेज आता है, कहते हैं कि अमिता ये जो फिल्म है मैं वापस आऊँगा, इसकी कहानी बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह है और मेरी शादी, मेरा निकाह जोया से होने वाला था और उस वक्त मैंने उनसे ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन 10

में लिखा होता है वही होता है, लेकिन इस वादे का बोझ अपने ऊपर ना लेकर चले, ठीक है? वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है, इसका जरूर ख्याल रखें, ओके? और यहाँ पर मुझे अर्श का मैसेज है, वो कहते हैं कि अमिता मैंने अपनी अम्मी को एक वादा किया था कि मैं एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा, जब मैं स्कूल में था तब

सो यस, हैट्स ऑफ टू यू टू. और आप भी अपने दिल को भारी ना करें. अच्छा, ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया और जिसके लिए मैं ज़रूर अपनी राय भी दूंगी. तो फरहान का मैसेज है कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड था अनवर. ओके, बेस्ट फ्रेंड था अनवर. ओके, और कहते हैं कि मैंने उसको कहा था कि भाई लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुश्किल से मुश्किल घड़ी आए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, मैं कभी भी तुझसे जुदा नहीं होऊंगा. लेकिन एक गलत फहमी की वजह से आज हम दोनों अलग हो गए. फरहान को आज भी अपने दोस्त अनवर की बड़ी याद आती है. देखो फरहान, मैं कहती हूँ ना, ये जो दोस्ती वाली चीज़ होती है ना, ये कभी पुरानी नहीं होती, ये कभी, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ पिक्चर नहीं होती. हाँ, अब बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, छोटा सा स्टेप है, आप कॉल कर लीजिए ना,

जो सीने में चुभन है ये भी कम हो जाएगी. अब यहाँ पर ये जो एक मैसेज है ये थोड़ा सा फनी है, बट इसमें भी एक बात है. तो मेहर कहती है कि अमिता, मैंने अपनी बहन को एक वादा किया था कि मैं तुम्हारा राज हमेशा अपने दिल में छुपा के रखूँगी. आज वही जो राज है मेरे सीने में ना एक बोझ बन गया है और मुझे चैन से जीने नहीं देता. देखो मेहर, सीक्रेट्स ऐसे ही होते हैं और तभी तो सीक्रेट्स को अपने दिल में कैद करके रखना बड़ा मुश्किल होता है. बट यू डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है, तो इस तरह से अपने दिल में अपनी बहन की बात को छुपा के रखिए ताकि आप अपनी लाइफ लॉन्ग ये प्रूव कर सकें कि आप उनकी राजदार हैं. है कि नहीं? बड़ा मज़ा आया आपके मैसेजेस देखकर. और भी कई सारे मैसेजेस हैं जिसको मैं पढ़ूंगी और ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी. और मैं कहना चाहती हूँ कि ये शोज़ हैं जो बेहद खूबसूरत शोज़ हैं, हम इनके ज़रिए आपसे जुड़ते हैं. और जब आप आगे आकर सामने से हमें मैसेजेस करते हैं, हमारे साथ जुड़कर अपनी दिल की बात करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है. बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं वापस आऊँगा फिल्म के डायरेक्शन और म्यूज़िक पर बात करते हैं.

तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं. तो अगर हम फ्रैंकली बात करें तो इम्तियाज अली का जो करियर ग्राफ है और उसकी तरफ अगर नजर दौड़ाए तो ये किसी बड़े से पहाड़ की तरह लगता है कि नहीं, जहाँ पर हम ट्रैकिंग करने गए हैं और हमको ऊबड़ खाबड़ और फिर कभी ऊंची, कभी गहरी, कभी लंबी ऐसी हाइट्स से गुजरना पड़ता है. चलिए, उन्होंने शुरुआत की थी एक मास्टरपीस डेब्यू के साथ, सोचा ना था. उसके बाद आई वो कल्ट क्लासिक जब वी मेट, जिसे रोमकॉम्स की परिभाषा

रिस्पॉन्स मिला. उसके बाद एक लंबा फेज आया जहाँ बहुत बड़ा ब्रेक था और फिर हुआ जोरों का शोर. फिल्म आई रॉक स्टार और तमाशा, और इन दोनों ही फिल्मों ने लोगों के दिलों पर राज किया. एंड देन एकदम से इम्तियाज अली लाइमलाइट.

सेवन थी, लेकिन फिर लव आजकल टू ने उफ उनके सारे फैंस का दिल फिर से तोड़ दिया. ऐसा लग रहा था कि शायद इम्तियाज अली अपनी पुरानी चमक खो रहे हैं. लेकिन वो कहते हैं ना कि जो असली आर्टिस्ट होता है, जो असली कलाकार होता है, वो गिर कर भी उठना सीख ही जाता है. और पिछले साल उनकी एक फिल्म आई जिसे भी मास्टरपीस कहा जाता है, अमर सिंह चमकीला. यस, सबको इस फिल्म ने खामोश कर दिया.

मिक्स्ड व्यूज मिक्स्ड रिव्यूज मिलते जा रहे हैं, बट देन अगेन इसकी तारीफ ज़रूर से हो रही है. ये फिल्म मूवी नहीं है, ये मोहब्बत पर लिखी गई एक कविता है, एक पोयम है, एंड इट इज़ अ पोयम ऑन ब्यूटिफुल लव. इम्तियाज़ ने जिस नज़ाकत से 1947 और आज के वक्त को जोड़ा है, उसमें वर्चुअली नथिंग टू क्रिप, मतलब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या देख लिया हमने, और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन हाँ, एक प्रेजेंटर होने के नाते मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिल्म में एक दो जगह डायरेक्शन में ना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा. तो कुछ गाने इतने अब्रप्टली यानी अचानक खत्म हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों. जब फिल्म की लेंथ इतनी लंबी है तो एक दो मिनट और सही और उन गानों को ढंग से पूरा कर देते तो क्या चला जाता. हाँ, ये इलॉजिकल एंडिंग्स थोड़ी सी ना खट्टी डकार वाली फीलिंग दे के गई, मतलब आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा सा ये अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी एडिटिंग हो सकती थी. अब आते हैं म्यूजिक के महारथी A.R. रहमान साहब पर. वैसे रहमान साहब जब भी फिल्मों में अपना म्यूजिक देते हैं तो सिर्फ तारीफों के पोल बनते हैं, और इस फिल्म में भी उनका बैकग्राउंड स्कोर बिल्कुल मैजिकल था. वो फिल्म की सोल है जो आपको हर सीन में ना महसूस होती रहेगी. लेकिन एक चीज़ है जो इस फिल्म के गानों की तरफ मुझे ले जाती है, तो मैं कहूँगी कि शायद वो जो मैजिक है यार A.R. रहमान साहब का, वो थोड़ा सा कम दिखाई दिया. अक्सर रहमान के गाने स्लो पॉइजन होते हैं, मतलब आपको लगता है वाह मतलब क्या गाने हैं, क्या धुन है, ओ हो हो मज़ा आ गया. वो फैक्टर इस फिल्म में मिसिंग लगा. वेल, इरशाद कामिल साहब के लिरिक्स की बात करें तो वो सटीक और गहरे थे. हाँ जी, और इस सब के मुश्किलों के बीच, मतलब म्यूज़िक के बीच वो झूल रहे थे कि भाई अगर म्यूज़िक सही होता और कुछ ऐसी बात होती तो शायद उन गानों में भी जान डल जाती. एक गाना है क्या कमाल है जिसे दिलजीत दोसांझ ने गाया है, ये एक लिरिकल मास्टरपीस लगा. और सिर्फ सुनने में नहीं, इसके विजुअल्स इतने ब्रिलियंट हैं और यूनिक हैं कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे. ये गाना आपको एक अलग ही ग्रिप में ले जाता है. एंड देन अदर वन मस्कारा,

वो गाना जो आजकल हर सोशल मीडिया की रील्स पर बज रहा है, मस्कारा, सुनने में कैची है, हुक लाइन अच्छी है, बट सच तो ये है कि इसका सिर्फ मुखड़ा ही है जो आपको याद रह जाएगा, एंटायर सॉन्ग आप याद नहीं रख पाएंगे. तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हमें सुनने और देखने

0: कुछ जगह पर लगा कि चीजें अब्रप्ट हैं और म्यूजिक में एआर रहमान साहब के लिए लगा कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, क्योंकि रहमान साहब और इम्तियाज साहब की जो दोस्ती है वो बड़ी पुरानी है. रॉक स्टार तमाशा जैसी फिल्में उन्होंने दी हैं जहाँ पर ओवरऑल क्या कमाल का म्यूजिक था, है कि नहीं. तो मैं वापस आऊँगा. फिल्म का रिव्यू चल रहा है और रिव्यू ऑफ द वीक में आज हम बातें कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म के जो स्टार्स हैं, जो बड़े कमाल के एक्टर्स हैं, उन्होंने आखिर अपने परफॉर्मेंसेस से कैसे लोगों का दिल जीता. और वहीं संजय सूरी और रजत कपूर की बात करें तो रजत कपूर ने निर्वैर के उस दौर और थोड़े सख्त फादर का रोल इतनी संजीदगी से निभाया है कि आपको उनसे नफरत भी होगी और हमदर्दी भी. और हाँ, कुछ और नाम है जो स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं. मनीष चौधरी एज मुजफ्फर, डॉली आलूवालिया एज कीनू की दादी और देवश्री घोष जो इशर की नर्स बनी है, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनाया है. तो जनाब, एक्टिंग के मामले में ये फिल्म एक गोल्ड माइन है. नसीरुद्दीन शाह से लेकर वेदांत रैना तक हर कोई अपनी जगह पर ना चमक रहा है. और मैं ये कहूँगी कि ये फिल्म रिव्यू वाकई में करते करते मुझे, मैं वापस आऊँगा, फिल्म की एंटायर स्टोरी मेरी आंखों के स्क्रीन के सामने चल रही थी. पर मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी खासम खास फिल्म है जिसके लिए अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो रेट देना बड़ा मुश्किल होगा. बट देन आई विल स्टिल ट्राई और मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगी 3.5 आउट ऑफ 5. तो ये फिल्म आप ज़रूर देखने जा सकते हैं बिना सोचे कि इसे क्या रेटिंग्स मिल रही हैं या लोग क्या कह रहे हैं. अगर आपको एक इमोशनल ड्राइव पर जाना है, एक इमोशनल एक्सपीरियंस करना है, देन मैं वापस आऊँगा इज जस्ट फॉर यू. ज़रूर जाएं, देखें, इंजॉय करें. और अगर थोड़ा बहुत रोना भी आ जाए तो सिसकने से, आंखें नम करने से घबराइएगा नहीं. वेल, रिव्यू ऑफ द वीक, इस शो में आपको इस फिल्म का रिव्यू कैसा लगा आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 से भी जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को भी वही ढूंढ सकते हैं. अगले एपिसोड में भी एक नई फिल्म होगी जिसका रिव्यू होगा एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: गाइड करते हैं। वहीं कतर के हवाले से उन्होंने कहा या उनका कहना था कि अगले कुछ सालों में डिजिटल सेक्टर्स और रियल इकोनॉमी दोनों में ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन बैलेंस अप्रोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे स्टार्टअप को फंडेबल बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग टीम होनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबल मॉडल ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम एक होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। वहीं पर अपॉर्चुनिटी सोर्सिंग पर उन्होंने नेटवर्क और रिसर्च की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया, जबकि देखा जाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन और स्मार्ट रिस्क कंट्रोल को भी आपने बताया। इसके अलावा अब्दुल्ला ने यह भी एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टर्स का रोल सिर्फ पैसे देना नहीं है बल्कि फाउंडर्स को गाइड करना भी होता है, जो कि एक नया टेक था। वहीं एग्जिट्स के हवाले से उन्होंने बताया कि रीजन में अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग और पॉजिटिव है। वहीं क्रॉस बॉर्डर ग्रोथ और क्रिएटिव इकोनॉमी को भी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बताई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंटरव्यू काफी नॉलेजेबल और इंस्पिरेशन से भरपूर था। तो बस दोस्तों, आज यहाँ पर इस सेगमेंट में या कह सकते हैं कि इस शो में अब मैं आपसे इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि जब हम दूसरे वाले एपिसोड में मतलब नए एपिसोड में आएंगे तो एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, एक नए टाइप ऑफ बिजनेस को जानेंगे, एक नए बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से दे

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है. साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। अब वक्त है उस सेंटेंस का जो मैं बहुत देर से बोल रहा था जब हम ये शो तैयार कर रहे थे, मेरा वाला गाना। भाई मेरा वाला गाना तो मैं क्या कहूँ, इतने सारे गाने इस हफ्ते रिलीज हुए हैं, बहुत सारे गानों ने बस बनाई है, कौन सा गाना इस लिस्ट से निकाला जाए कि इसमें रखा जाए, बहुत परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे एंड वेलकम टू टॉप 10। तो देखो शो शुरू करता हूं मैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज सोशल मीडिया पे आ जाइया करें। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, वहां आके बताइए FM107 कतर पे कि कौन सा गाना आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए। हमने आपस में मिल बांट के, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए, उसके बिना पर हमने लिस्ट तैयार करी है और पूरी लिस्ट ऊपर से नीचे तक बदल गई है, दो तीन गानों को छोड़ के, एंड इट्स अ फ्रेश लिस्ट। ये सारे गाने तबाही है भाई, मैं तो कह रहा हूँ टॉप 10 तो हम कह रहे हैं, इसमें टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को किधर कहाँ रखें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट एंड प्रेजेंटिंग द होल लिस्ट ऑफ दिस वीक। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, एज यू ऑल नो, 10 से शुरू करेंगे एंड देन वील गो टू द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक। तो नंबर 10 पे कौन सा गाना है? अलॉट हैज चेंज्ड। नंबर 10 पे वो गाना है जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने ये गाना गाया है, दोनों के दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, दोनों के दोनों का ये जो लीथल कॉम्बिनेशन है, ये इंडस्ट्री ने देखा और पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही लगाई म्यूजिक की, स्पेशली हिप हॉप की, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया। तो ये जो गाना है ये दो बहुत ही माहिर रैपर्स ने गाया है, एक है कृष्णा जो अपने नाम में एस को डॉलर साइन की तरह लिखते हैं और वो कहते हैं KR डॉलर साइन, मालूम है ना, तो KR डॉलर साइन, और साथ में है मारा भाई साहब सीधा हरियाणा थे ढांडा न्यूली वाला, गाना है बूम शाकलाका। बूम शाकलाका। तो ये जो गाना है बहुत कमाल का है, एंड मैं बता रहा हूँ ये गाना जब ड्रॉप हुआ था, ये दोनों के दोनों, कृष्णा भाई तो सीधा गुड़गामे से हैं और मारा भाई डांडा न्यूली वाला तो न्यूली वाला हरियाणा से, इन दोनों का एक साथ आना मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने हजम कर लिया था कि वो रफ्तार के साथ डांडा ने गाना बना लिया, विच इज ठीक है, वो एक्सेप्टेड भी है और अज्यूम भी कर लिया था मैंने कि ये होने ही वाला है, बट कृष्णा के साथ नहीं सोचा था। एंड एक और चीज नहीं सोची थी, जब ये गाना सुनेंगे आप, जो प्ले होगा, तो कृष्णा का जो वर्स है, स्पेशली वो लोग जो रैप सुनते हैं, इतना कमाल का वर्स है भाई, इतना कमाल का फ्लो है, ये जिसकी हद नहीं, कैसे राइम करता है आदमी यार। मगर कृष्णा हमेशा आउटशाइन कर देते हैं सामने वाले रैपर को या साथ वाले रैपर को जो उनके साथ रैप कर रहा होता है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टक्कर का मुकाबला, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। डांडा न्यूली वाला ने जो रैप किया है भाई इसके अंदर, ओ फो, आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू डू एंड डू दिस काइंड ऑफ रैप, क्योंकि इतना इंट्रिकेट फ्लो, इतना अच्छा फ्लो एंड फास्ट रैपिंग भी, इतनी क्लियर, मजा आ, वीडियो भी बड़ा कमाल का है। एंड बूम शाकलाका, ये गाना जो है एट नंबर 10 दिस वीक, मैंने काफी मरतबा अपने शो में चलाया है, कुछ लोगों को ऑफ कोर्स हिप हॉप से थोड़ा सा परहेज होता है, विच आई अंडरस्टैंड, बट मेरी उनसे भी गुजारिश है एक बार सुन के देखिए, रैप में शायरी भी होती है, रैप में बातें बड़ी तगड़ी होती है और असली बातें होती है, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक दिस ट्रैक हैज इज ऑलरेडी ब्लूमिंग, मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया गाना है नंबर 10, बूम शाकलाका, ढांडा न्यूली वाला और KR डॉलर साइन, मालूम है ना। अब गाना नंबर 9 की बारी है, सो हिप हॉप के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस शख्स की तरफ जिसे आप हिप हॉप करा लीजिए, एक्टिंग करा लीजिए, म्यूजिक बनवा लीजिए, पॉप गाने करवा लीजिए, कॉमेडी करा लीजिए, ये आदमी क्या क्या करके मानेगा भाई। ये वो शख्स हैं जिनके नाम को मैं जानबूझ के दिलजीत बोलता हूँ, लोग बोलते हैं दिलजीत है दिलजीत, हाँ पता है जी साणू, मैं जानबूझ के बोलता हूँ भाजी, जानबूझ के मैं नाम को, थोड़ा मुझे मजा आता है और दिलजीत ऐसे बोलने, तो दिलजीत दोसांझ का गाना

रांझा, ये जो है नंबर 9th की पोजीशन पर है इस हफ्ते। साथ में उनके डेविड गेटा है और सिया है। ये कोलैबोरेटिव जो एफर्ट है इन तीनों का, स्पेशली मैंने डेविड गेटा को सोचा नहीं था कि वो कभी कोई इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, डेविड गेटा क्यों ही काम करेंगे, भाई हमारी इंडस्ट्री बहुत खतरनाक है उनके मुकाबले। इज दैट कि सोचा नहीं था मैंने कि डेविड गेटा कभी इंडियन आर्टिस्ट के साथ जुड़ रहे होंगे, बट थिंग्स हैव बीन क्वाइट गुड लेटली एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। साथ में सिया, जिन्होंने से पहले भी दिलजीत दोसांझ के साथ गाना किया है, वो भी बड़ा कमाल गाना था, बट रांझा इज ऑन अनदर लेवल। नॉट जस्ट द ट्रैक, मगर दिलजीत दोसांझ का प्रेजेंस ऑन स्क्रीन इज जस्ट अमेजिंग। कुछ लोगों में ना एक चार्म होती है, जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपकी नजरें नहीं हटती हैं, एंड दिलजीत दोसांझ हैज दैट। पता नहीं वो क्या चार्म है इस सरदार में अपने, एक कमाल का बंदा है। और वीडियो बड़ा कमाल का शूट किया है, बहुत कमाल का डायरेक्शन है। जब आप सुनने के बाद इसका कभी भी वीडियो देखेंगे निकाल के, तो आपको वीडियो देख के लगेगा, ऐसा लग रहा है कि दिस इज आउट ऑफ सम मूवी और समथिंग। दे हैव यूज्ड एवरीथिंग, वो जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी 10-12 साल के लड़के ने कुछ इमेजिनेशन में सोचा और प्रोफेशनल्स ने मिलके उसे अपने हिसाब से बहुत फिटनेस के साथ प्रेजेंट कर दिया। If that makes sense to you. बहुत कमाल का गाना, बहुत कमाल का वीडियो। ये पिछले हफ्ते गाना हमारे लिस्ट में बहुत ऊपर था भाई, लेकिन सोच रहे हैं आप, ये गाना 9th पे आने के बावजूद भी कितना बड़ा बैंगर है, और ये 9th पर आया है तो इसके बाद कौन कौन से गाने होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे वो। तो दिलजीत पाजी का गाना विद डेविड गेटा एंड सिया इज एट नंबर 9th पोजिशन, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये लिस्ट से तो नहीं जाएगा भी। ये गाना ट्रेंडिंग पे था, बहुत टाइम तक चला, और वो आर्टिस्ट जो बिलबोर्ड में भी जा चुका है, जो कोचेला में भी सब कुछ कर चुका है, वो आर्टिस्ट हल्का तो नहीं। दिलजीत दोसांझ जब भी गाएंगे, इवन द नेक्स्ट ट्रैक वुड कम एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत बढ़िया जाएगा। हालांकि उन्होंने एक मूवी करी अभी रिसेंटली, आई रिमेम्बर, आई थिंक इम्तियाज अली के साथ करी, वापस आऊंगा। वो मूवी के बारे में भी मैं साथ साथ बात करता हूँ, बिकॉज आर्टिस्ट बड़े कमाल के, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। ऐसा लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ बोला था हिलना नहीं है, जो जो बोल रहा हूँ वही वही लाइन बोलते रहो दिलजीत। इज डन अ गुड जॉब, फेल ए गुड जॉब, बट आई थिंक दिलजीत दोसांझ को थोड़ा सा बॉलीवुड से कट के अब एक काम करना चाहिए। एज अ फैन आई वॉन्ट हिम टू प्रोड्यूस एन एल्बम। हाई टाइम यार, दिलजीत पाजी प्लीज एक एल्बम निकाल दो तगड़ी सी, जिसमें 12-15 गाने हो। अगर आपको एल्बम नहीं भी निकालनी भाई, एक मिक्स टेप ही निकाल दो। मिक्स टेप नहीं निकालना, आप एक ईपी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, बस मैं चाहता हूँ एक अक्यूमुलेटिव, एक दिलजीत दोसांझ का ऊपर पोस्टर हो और अंदर भाई साहब 5-6-14-15 गाने, ये चाहिए। एनीवे, एज अ फैन मैंने अपनी गुहार लगा दी है, पता नहीं उन तक पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरे दिल की आवाज से तो मैंने पहुंचा दिया, मेरी तरह बहुत सारे दिलजीत के फैंस शायद सोचते होंगे। तो दिस इज एट नंबर 9, दिलजीत दोसांझ, गाने का नाम है रांझा, साथ में सिया और डेविड गेटा। अब आ जाते हैं जरा नंबर 8 पे, ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है भाई, ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है। तो ये जो मूवी है, जिस मूवी का गाना है नंबर 8, ये है वेलकम टू जंगल। पहली बात मूवी के बारे में इतना कहूंगा, क्यों जरूरत पड़ रही है अक्षय कुमार को और फिर अजय देवगन की, हालांकि उनका गाना नहीं है, पर इन दोनों को क्यों जरूरत पड़ी है सीक्वल पे सीक्वल पे सीक्वल पे सीक्वल करने की। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। हाउसफुल पहली वाली हुई, वो करके बस था, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं आ रहा मजा ट्रेलर देख के यार। मैंने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से हंसी आ जाए, और अगर आपने ट्रॉपिकल थंडर देखी है तब तो आप समझ जाएंगे मूवी का प्लॉट क्या है। हालांकि पूरा प्लॉट उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया, खत्म कर दिया पूरा का पूरा प्लॉट बता के, लॉजी पिक्चर देख लिया आपने। एंड कहीं ना कहीं दो चीजों में बॉलीवुड को काम करने की जरूरत है। आई नो ये रिव्यू नहीं है, बट फिर भी एक है कॉमेडी और दूसरा है हॉरर भाई, दे रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। पर वेलकम टू जंगल के गाने ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है अभी, जो कि ऑलरेडी रीमेक है पर गाना इज नाइसली रीमेड बाय द वे। गाना है उच्च लंबा कद, और अक्षय कुमार को ये मुझे लग रहा है उनका सपना था कि मैं वापस जीना चाहता हूँ, ये गाना मुझे चाहिए, और ये गाना उन्हें वापस रिलीव करने का जो मौका मिला है उन्होंने हथिया लिया है। एंड वेलकम टू जंगल से ये गाना जो है ऊंचा लंबा कद इज एट नंबर 8th पोजीशन। आई स्टिल फील बॉलीवुड को काम करना पड़ेगा, नए नए गाने लाने पड़ेंगे, स्पेशली जब आपके पास

0: इतना बड़ा स्टार हो, अब अक्षय कुमार को ठीक है अभी कुछ भी चल रहा है उनका करियर, बट स्टिल है तो बड़ा स्टार है। बनता है कि ओरिजिनल गानों पे उनको उन्हें दिए जाए, ही डिजर्व्स गुड म्यूजिक कैटलॉग। यू रिमेम्बर एयरलिफ्ट जब आई थी भाई, अक्षय कुमार क्या तवाही लग रहे थे मूवी के अंदर, मूवी में कंटेंट था, मूवी के अंदर गाने थे, फिर बेबी आई थी, मूवी में कंटेंट था, मूवी में गाने थे, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, ये एक लहर चल पड़ी है कि हम तो सीक्वल निकालते चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, अभी तो धमाल 4 भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट ठीक है। हैविंग सेड दैट, ट्रैक लिस्ट में अपनी जगह बनाना भी कोई छोटी बात नहीं है, अगर यू वॉन्ट टू लिव, इसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं फैन सर्विस, तो ये फैन सर्विस है कि आपको जोर दिया जा रहा है आपके दिमाग में कि जियो जियो, नॉस्टैल्जिया फील क्यों नहीं कर रहे तुम, फील करो। तो उस नॉस्टैल्जिया पे फैंस को टांग दिया जाता है और उनको कहा जाता है देखो सुनो पहली मूवी याद है ना, याद है वह उसी को जीते रहो। तो ये फैन सर्विस इस गाने के जरिए की गई है जो कुछ दिनों तक चलेगी, एंड आई डोंट नो ये गाना लिस्ट में हमारे कब तक रहेगा, पर अभी ट्रेंडिंग है और अच्छा खासा व्यूज बटोर हैं बिकॉज ऑफ द वीडियो एज वेल। सो फैन सर्विस तो की है भाई, माननी पड़ेगी, क्रेडिट जहां पे देना चाहिए वहां मैं दे रहा हूँ। ऊंचा लंबा कद एट 8। ओके सो अभी तक हम 10, 9 और 8 बता चुके हैं आपको। गाना नंबर 10 है बूम शाकलाका, विच इज डाना न्यूनी वाला एंड कृष्णा के एडोलेसेंट, मालूम है ना इन दोनों का गाना है, दोनों बहुत बढ़िया, बहुत चंगे रैपर है भाई। इसके बाद है नंबर 9 पे दलजीत, दलजीत दोसांझ का गाना जी रांझा, साथ में सिया और डेविड गेटा का म्यूजिक, अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक। एंड देन एट नंबर 8, नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कर, एज आई सेड फैन सर्विस। ये नडियाड वालों को कुछ नया डायरेक्टर ढूंढ लेना चाहिए। वेलकम टू जंगल से ये गाना ऊंचा लंबा कद वो है एट नंबर 8। अब लौट के आएंगे आप तो आपको पता लगेगा 7, 6 और 5 पे क्या पक रहा है, जाना नहीं आपको।
1: FM 107 Top 10 Number 10।

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक टॉप 10 में. मैं हूँ आपका मेजबानी मेजबानी. आप मेहमान तो नहीं है, आप तो घरवाली हैं. तो टॉप 10 में आपका स्वागत है एक बार फिर से. और अभी हम 7, 9 और 8 गाने बता चुके हैं. अब जरा जरूरत है बढ़ने की 7, 6 और 5 पे. बहुत खराब मैथ्स है मेरी, आई एम रियली सॉरी. तो 7, 6 और 5 पे कौन कौन से? 7 पे है एक गाना जो मुझे बड़ा पसंद आया यार. गाने में ना वाइब होनी चाहिए. अब देखो ओरिजिनल गाने वाइब है कि नहीं, अब रीमेक रिप्राइज रीडक्स पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं गाने को परोस दिया जाता है, पर ओरिजिनल गाने की बात तो ओरिजिनल ही होती है. आरजू एक गाना है असीम असर का.
2: ख्वाबों में मेरे है तू ही बसीर.
1: क्या गाना है भाई. असीम अजहर जो है वो मुझे लगता है कि जैसे विशाल मिश्रा है ना, नॉट विशाल ठीक है, विशाल मिश्रा जो है ना इंडिया की तरफ से, वैसे ही असीम अजहर हैं. अब मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, बस ये समझ लीजिए कि दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेचर पर राइट नाउ एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक ग्रोइंग वेरी स्नीकिंगली. आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, बस दोनों धीरे धीरे स्टार बनते चले जा रहे हैं. एक जमाने में मुझे कहना ही लगता था, पढ़ता भी था कि दोनों अंडररेटेड हैं, देखो देखो. बट राइट नाउ आई थिंक असीम अजहर जिनका ये गाना है हिट नंबर 7 एंड ऑल्सो विशाल मिश्रा, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव ग्रोन सो मच. असीम अजहर का मैं बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ. आई एब्सोल्युटली लव दिस मैन. असीम अजहर के और भी काम को मैंने देखा है क्योंकि आरजू तो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. गाने में वाइब है, लाइक यू कैन ड्राइव एंड आप इस गाने को लगा दीजिए भाई साहब को लगा हाँ भाई ये ड्राइव वाला करने वाला गाना, बहुत बढ़िया गाना है. असीम अजहर का कैटलॉग पॉप म्यूजिक से भी भरा हुआ है और उन्होंने रैप आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है, विच इज बियॉन्ड क्रेजी. एंड ऐसे आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए. सो असीम अजहर ब्रवाई कुडोस टू यू एट नंबर 7 आरजू, अ ब्यूटिफुल ट्रैक. ओके, आगे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल बोल दिया ना, आज के लिए काफी है. ओके, सो गाना एट नंबर 6 नाउ. ये भी बड़ा कमाल का है. जब गाना नंबर 6 आता है तो मुझे लगता है कि एक मिडिल ग्राउंड आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर टॉप 5 की बात होने लगती है. और ये जो गाना है ये भी कुछ करके दिखाएगा भाई. ये मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये गाना भी अभी बढ़ेगा, लोग इसको पसंद करेंगे क्योंकि 10 दिन के अंदर इस गाने ने अभी 1.1 मिलियन कर लिए हैं पूरे. एंड जो गाने की जो शूटिंग भी हुई है वो बड़ी कमाल की है. जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है कैब के अंदर, लोकल्स के बीच में, बसों में चढ़ के, एंड दैट रॉ फुटेज स्टाइल जो उन्होंने दिखाया है वीडियो के अंदर, वो बड़ा कमाल का. एक और बात मैं कहना चाहूंगा, असीम

0: है
1: वही
0: सुन के देखिए मजा आ जाएगा। ऑलराइट नंबर पांच पे पहुंचेंगे कुछ देर में, लेकिन ये जो आपने गाने सुन लिए हैं मैं एक बार लिस्ट रिवाइज कर देता हूं। तो हमने सुना गाना नंबर 10 बूम शाकला का डाना न्यूली वाला और क्या डॉलर साइन। नंबर 9 पे दिलजीत दुसांझ रांझा विद सिया एंड डेविड गेडा, एंड उसके बाद ऊंचा लंबा कद 8 पे वेलकम टू जंगल से, उसके बाद नंबर 7 पे आरजू असीम अजहर, एंड नंबर 6 पे अगेन असीम अजहर विद तू है वही। सो दिस इज द लिस्ट सो फार, 6 तक हम आ चुके हैं, मगर आगे क्या होगा ये तो सस्पेंस है। तो 5, 4, 3, 2, 1 अगली बार आएंगे कुछ देर में, अगली बार नहीं सोचेंगे लोग एपिसोड खत्म क्या नहीं खत्म अभी कुछ देर में। बट सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, यहाँ आपको आना ही आना है ताकि आप बता सकें कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, आप कौन सा गाना लिस्ट में चाहते हैं। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक विद 5, 4, 3, 2, 1, स्टे ट्यून्ड।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
5: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहावाला कबीर प्रेजेंट सर। टॉप टेन चल रहा भाई, टॉप टेन चल रहा है और हम अब आ चुके हैं गाना नंबर 5 तक। सारे के सारे फ्रेश गाने भाई, बहुत बढ़िया गाने हैं। सो गाना

नंबर 5, ये मैंने बहुत रिसेंटली सुना है, बहुत रिसेंटली सुना है। गाने का नाम है पीछे तेरे और कुंवर साहब का गाना है। मैं ना इस गाने को जब मैंने सुना तो मुझे लगा इस गाने में कुछ ना कुछ बहुत पैपी हो रहा होगा, अगर वीडियो बनेगा तो कैसा बनेगा, पर मेरे इमेजिनेशन ये बिल्कुल परे बनाया है भाई, वीडियो बिल्कुल परे, और वीडियो बहुत कमाल का शूट किया है। गाने की लिरिक्स और गाने का वीडियो जब सिंक में आता है ना तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। दैट्स व्हाई मैं बॉलीवुड को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करता हूँ, आप सीन से हटा के डांस ही कपड़े पहना के क्यों खड़ा कर देते हो यार, ऐसे करो ना। दिस इज अ प्राइम एग्जांपल। कुंवर का जो ये गाना है पीछे तेरे, बहुत कमाल का है कुंवर साहब का, और जो लिरिक्स अगर आप पंजाबी समझ लेते हैं, लिरिक्स और वीडियो विल मैच। बहुत सिंपल गाना है, बहुत ग्राउंडेड गाना है, बहुत क्यूट गाना है, एंड जिस हिसाब से शूट किया गया है उसी सादगी के साथ, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फ्यू आर्टिस्ट जो अपने सादगी को खोते नहीं है। कोई चमकीले कपड़े नहीं, कोई फ्लैशी कपड़े नहीं, सेम विद आसिम अजहर जो अभी कुछ देर पहले मैंने गाना बताया, कोई फ्लैशी कपड़े नहीं, कोई चेने वेने नहीं है, वेरी नाइसली मेड और बहुत देसी और बहुत सादगी के साथ, और गाना भी बड़ा खूबसूरत है पीछे तेरे। गाना थोड़ा छोटा है, मेरी शिकायत इस गाने से सिर्फ यही है कि 2 मिनट पे जाके खत्म हो जाता है, 2 मिनट 5 सेकंड का आई थिंक गाना है, और मुझे लगता है कि ऐसे गाने थोड़े से लंबे हो, एटलीस्ट 3.5 मिनट तक वो जाना चाहिए। 2 मिनट में ना वो क्या हुआ कि मन नहीं भरा, पर गाना इनकम्प्लीट फिर भी नहीं लगेगा। इट्स अ कम्प्लीट ट्रैक एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक। इट्स एट नंबर 5। ओके, नंबर फोर पे ये लिस्ट पे टिका हुआ है, बहुत सारे रीले बन चुके हैं एंड लोग इस पे नाच नाच के अपनी एड़ियां दुखा चुके हैं, क्योंकि बीट ही ऐसी है भाई। शुभ भाई का गाना है बाउंस। ऐसा म्यूजिक हार्डली गानों में मिलेगा आपको आज की तारीख में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांस, वो ईडीएम वाले जो साउंड होते हैं वो मिल जाते हैं, मगर ये कुछ अलग है भाई। ये डबस्टेप ईडीएम सब मिला दिया है और कमाल की खिचड़ी पका के गाना पेश किया है। मुझे बहुत पसंद आया गाना, बहुत बहुत कमाल का म्यूजिक है, एंड उस बीट को फॉलो करना, मैं सही बता रहा हूँ, आई एम अ छोटा मोटा रैपर माई सेल्फ, मैं भी उस बीट को फॉलो नहीं कर सकता अगर मैं चाहूँ भी तो, समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा रैपर हूँ, मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, हो जाएगा, बट आई हैव ट्राइड। और ये बीट को फॉलो करना, जिस तरीके से शुभ ने एक एक अपने लफ्जों को फिक्स किया है इन दिस बीट, इन दिस होल म्यूजिक, वो बहुत कमाल का। एंड देन कम्स द वीडियो व्हिच इज फ्लैशी नाइस एंड पूरे गाने को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ वीडियो। सो शुभ भाई इज एट नंबर 4। कमाल का ट्रैक है, यू शुड लिसन टू इट। बाउंस नाम है, बाउंस। ओके, रेडी हैं आप गाना नंबर 3 के लिए? तो गाना नंबर 3, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था पूरे हफ्ते, हमने चर्चा करी, हमारी टीम बैठी हुई थी, हम लोग ऐसे बैठे थे चौपाल लगा के जैसे चार भाई बैठे हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, यार एक गाना आया है मार्केट में, गाने का नाम है साड़ी सुन। साड़ी सुन सुन लिया होगा आपने, प्रीटी मच एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। बॉलीवुड से गाना नहीं है लेकिन भाई प्रॉपर हिट चल रहा है, प्रॉपर हिट। हर्ष नुस्सी का गाना है ये, और हर्ष भाई ने जो गाना किया है बहुत कमाल का बना दिया है, बहुत कमाल का। क्या कर दिया इन्होंने, ये जो गाना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गाना एक ओरिजिनल ट्रैक, मतलब उन्होंने अलग से बनाया था, और फिर एक और इसका वर्जन है जिसमें आपको एलविश यादव और सिमरत कौर भी नजर आने वाली हैं, बट मतलब नजर आ रही हैं। तो एक के 20 मिलियन है और एक के 4.8 मिलियन है, दोनों ही ट्रैक, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक ही गाने के 2 वीडियोज हैं। ओके, नाउ आई हैव क्लेरिफाइड, एक ही गाने के 2 वीडियोज हैं, ओके, एंड दोनों के दोनों बहुत कमाल के। एक में उन्होंने पग पाई हुई है, पग पहनी हुई है, और एक में पग नहीं पहनी हुई है, बट एक ही ट्रैक के 2 डिफरेंट वीडियोज, 2 डिफरेंट वर्जन। दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना। और तुझे अगर पंजाबी गाने सुनते हो ना भाई, एक नंबर गाना है, मौज आ रही है कसम सा, एकदम चस आ जाएगी जब आप गाना सुनेंगे, वूफर बाजेंगे भाई गाड़ी के, हरियाणा में शिफ्ट हो गया मैं, सॉरी, मगर आप समझ गए मेरी फीलिंग को। तो साड़ी सुन विच इज बाय हर्ष इज एन अमेजिंग ट्रैक, एंड ये आप जरूर सुनिएगा, दिस इज एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट। ओके, लौट के आते हैं 2 टॉप के 2 गानों के साथ। FM 107 Top 10

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक वक्त से टॉप ऑर्डर का. तो ओपनिंग बैट्समैन तक अब हम पहुंचे हैं. टेल एंडर से होते होते अब सीधा टॉप ऑर्डर की बारी है. गाना नंबर दो और टॉप गाने की. गाना नंबर दो जो है ये उस मूवी का गाना जिससे मुझे उम्मीदें भी हैं, जिसकी रिलीज से मुझे डर भी लग रहा है और जिसकी वजह से मुझे डर है शाहिद कपूर को लेके भी. प्लीज शाहिद कपूर साहब आप वाले एक्टर वापस बन जाइए जो हैदर कर रहा था. प्लीज मेरे भाई क्या कौन दे रहा है नहीं ये पिक्चर है. पर मैं फिर भी दिल से दुआ करता हूँ ये आदमी जो है अपने जोन से बाहर आए, बिकॉज उन्हें जागने की जरूरत है. शाहिद कपूर कॉकटेल के साथ वापस आ रहे हैं. कॉकटेल 2 इज गोइंग टू रिलीज. शाहिद कपूर को ले लिया. सबसे पहले शौक तो मुझे ये लगा इसमें. अब मैं ये नहीं कह रहा कि शाहिद कपूर ऐसी मूवी कर ही नहीं सकते. ऑफकोर्स ही कैन डांस और ही कैन डांस बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉलीवुड. मगर गाना बहुत बढ़िया है यार कॉकटेल 2. मूवी के साथ जो भी हो आई ऑल्सो विश हिम ऑल द बेस्ट. लेकिन गाना क्या बनाया भाई, कुछ यूनिकनेस है इसके म्यूजिक में. पूरे कॉकटेल की जो डिस्कोग्राफी है इसका एक एक गाना बहुत कमाल का है. ऐसा म्यूजिक आप लोग हाँ यार काफी टाइम बाद सुना है मैंने. रेगे म्यूजिक उन्होंने यूज किया, हिप हॉप यूज किया, उन्होंने पॉप म्यूजिक यूज किया. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. गानों के म्यूजिक का ही एक एक मिश्रण जो है वो आपको मिलेगा. वल्लाह गाने का नाम है एंड काफी एडिक्टिव हुक है इस गाने का. हुक के साथ साथ डांस हुक भी बड़ा एडिक्टिव है. ये गाना है नंबर 2. कृति सैनन भी है इसमें, वामिका भी है और गाने में वाइब भी है. जिस तरह से शूट किया गया गाना स्पेशली आई लाइक द फैक्ट दैट दिस शॉट इट इन अ डिफरेंट वे. ऐसा लग रहा है कि किसी सिंगर का सिंगल गाना है. इफ दैट मेक सेंस. होता नहीं बॉलीवुड बड़ी मेहनत करता है, बड़े बड़े स्टेज लगाता नहीं, वैसा कुछ नहीं किया. दे हैव शॉट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल और बहुत कमाल की कलर ग्रेडिंग करी. काफी कलरफुल वीडियो निकल के सामने आया है. एंड वल्लाह ये गाने का नाम है इज एट नंबर 2. नाउ इज द टाइम टॉप गाना ऑफ दिस वीक इन टॉप 10. देखो साउंड इफेक्ट के खर्चे बचा रहा हूं मैं. नंबर 1 गाना ऑन द लिस्ट कौन सा हो सकता है? एनी गैसेस? प्लीज व्हाट्सएप आइए 666-22107 पे, 666-22107 पे. अनाउंस ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर इफ यू कैन गैस इट. आई विल काउंट फ्रॉम 5 to 1. ठीक है, सबसे पहले लिस्ट को जरा रिवाइव कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं लिस्ट का. सो नंबर 10 पे है बूम शाकलाका, ढाणा न्यूली वाला एंड खिया डॉलर साइन. देन नंबर 9 पे दिलजीत पाजी विद रांझा.

गेट एंसिया साथ में, देन आठ पे था ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, उसके बाद सात पे आरजू आसिम अजहर, छह पे तू है वही आसिम अजहर, एंड देन पांच पे पीछे तेरे कुंवर साहब का गाना, नंबर चार पे शुभ भाई साहब हैं विद बाउंस, नंबर तीन पे साड़ी सुन विद हर्ष, एंड नंबर दो पे था वल्लाह फ्रॉम कॉकटेल टू, एंड नाउ एट नंबर वन एब्सोल्युटली नो गेसेस देयर. मैंने कहा ना यूनिकनेस है, यूनिकनेस चलती है, बिकती है भाई, एटलीस्ट रीमेक नहीं है. गाना है माशूका. आए हाय क्या गाना भाई, इसका हुक मैं बता रहा हूं दिमाग में बजता ही रहता है. तो माशूका फ्रॉम कॉकटेल टू बहुत कमाल गया. वीडियो में आपको शायद तो वो कृति सैनन और रश्मिका, मैंने वामिका बोल दिया पिछले उसमें रश्मिका प्रीतम दा का संगीत है एंड अमिताभ भट्टाचार्य की लिरिक्स हैं. क्या गाना बना दिया यार, ये क्या गाना बना दिया. मैं ऐसे गानों का वेट करता हूँ, कब आएंगे ऐसे गाने, कुछ तो ओरिजिनल कर रहे हैं. चलो सो थैंक यू भाई साहब कॉकटेल टू के मेकर्स. आई डोंट नो कि आपने मूवी के साथ क्या किया, वो तो देख के पता लगेगा, पर गाना बहुत बढ़िया भाई. सो दिस वीक्स नंबर वन ट्रैक इज माशूका फ्रॉम कॉकटेल टू. तो ये हमारा टॉप ऑर्डर. And on that note, मेरे आपसे इजाजत लेने का वक्त भी आ गया है. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar. आपसे इजाजत जरूर चाहूंगा, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप लगातार बताते रहें, यू नो आप बताते रहें कौन सा गाना आपको लिस्ट में चाहिए, कौन सा गाना आपको लगता है कि नहीं यार लिस्ट में नहीं होना चाहिए. डू लेट अस नो योर फीडबैक एज वेल, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar. और अगर आपको लगता है कि मुझ मासूम से भी आपको रब्ता कायम करना है तो प्लीज आइए, दुहा वाला कबीर के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा हर जगह. बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मां सलाम. FM 107

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आदाब, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं आपकी अमिता और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। जब भी दोपहर का वक्त होता है, सूरज थोड़ा ढलने को होता है और शायद आप लंच के बाद एक कप चाय की जब चुस्की ले रही होती हैं या काम के बीच थोड़ा सा ना सुकून ढूंढ रही होती हैं, तो आपको वो सुकून एकदम से मिलता नहीं है। आप गौर कीजिएगा, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, चाहे वो कोई भी शौक हो, कोई भी फैसला हो, हमारा दिमाग बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक चीज है, वो एक जजमेंटल वाली जो चीज हमारे दिमाग में रहती है, वो एक ऐसा जोन जो हर चीज को जज करता है, वो क्या कहता है? हम आईने में जब देख रहे होते हैं खुद को, तो देखकर सिर्फ ये नहीं पूछते कि मैं कैसी लग रही हूँ, बल्कि कई बार हमारे जहन में ये ख्याल आता है और हमारा दिमाग पूछ रहा होता है कि दुनिया को मैं कैसी दिखूंगी। हम अपनी ख्वाहिशों की चादर सिर्फ इसीलिए छोटी कर लेते हैं क्योंकि हमें हमेशा डर लगता है कि कहीं कोई उस पर उंगली ना उठा दे। हम एक ऐसी तहजीब, ऐसी संस्कृति के कैदी बन गए हैं जहां हमारी अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय मायने रखने लगी है। आज का जो ये एपिसोड है, उन सभी ख्वाबों के नाम है जो सिर्फ इसीलिए ड्राफ्ट्स में रह गए क्योंकि हमें लगा कि लोग क्या कहेंगे। पर मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ, आप सुन रहे हैं

आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े ड्रीम किलर की जो हमारी रग रग में बसा है, कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। यस, ये सिर्फ तीन शब्द नहीं है, ये वो बेड़िया है जो हमारे हुनर को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम पड़ोसियों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, ये भूल कर कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो क्या वही लोग हमारी मदद करने आते हैं या फिर तमाशा देखकर खुश होते हैं। वेल, इस मसलिहत में हम अपनी असली पहचान कहीं खो देते हैं। आप वैसे फिल्मों के शौकीन तो होंगे, आपने ये फिल्म देखी है दिल धड़कने दो, बड़ी खूबसूरत फिल्म है और उसमें एक डायलॉग आता है कि लोग क्या कहेंगे, इस एक डर ने न जाने कितने सपनों को मारा है, पर सच तो ये है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ आपको पड़ता है। यस, सुना आपने, फर्क सिर्फ आपको पड़ता है। उन लोगों की जजमेंट आपका घर नहीं चलाती, ना ही आपका सुकून वापस लाती है। तो ब्यूटीफुल लेडीज, आज इस वक्त हम एक फैसला करेंगे, ठीक है, एक फैसला लेंगे। हमें वो आईना तोड़ना है जहां हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं। हमें थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, शेमलेस, हाँ वो बनना होगा इन अ वेरी गुड सेंस, ताकि अपनी खुशी के लिए अगर आपको वो लाल रंग की लिपस्टिक पसंद है तो लगाइए ना, किसने रोका है। अगर आपको 40 की उम्र में कोई परफॉर्मेंस सीखना है, कुछ डांस करना है, तो सीखिए ना, किसने मना किया है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसका हिसाब सिर्फ आपको देना है। तो चलिए आज खुलकर हम बात करते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर, और जुड़िए अपने नाम के साथ। मुझसे शेयर कीजिए वो एक बात जो आप हमेशा से करना चाहती थी, वो नया बिजनेस, वो कोई पुराना शौक, या शायद वो कोई अजीब सी बात जो आपने सिर्फ इसीलिए छोड़ दी क्योंकि आपके कानों में वो आवाज गूंज रही थी कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मुझसे अपने दिल की बात शेयर कीजिए 6622107 पर, 6622107।

107 पर अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए. एंड ये शो खास तौर से हमने आपके लिए डिजाइन किया है, मेरी पहचान. तो इस शो को और मुझे अपना दोस्त मानिए, ठीक है? So 666-22-107 पर आप हमें मैसेज कीजिए. और अभी आपके लिए मैं एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, इसे एंजॉय कीजिए. कहीं ना जाइए, बने रहिए FM 107 पर. दिल से देसी.

वेलकम बैक एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है मेरी पहचान. वैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोग क्या कहेंगे, इसके डर से आपने कौन सी ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा दी और उसे पूरा नहीं किया. यकीन मानिए इस वक्त मेरे मैसेजेस जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उसमें काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं और आपके मैसेजेस पढ़कर मेरा दिल एक्चुअली बहुत खुश भी हुआ और उदास भी हुआ. क्योंकि कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर, सिर्फ इसीलिए हम रुक गए या सिर्फ इसीलिए आप रुक गई कि लोग क्या कहेंगे इस थॉट से. चलिए पहले देखते हैं हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं. आइए जरा कुछ मैसेजेस को हम अपने शो में शामिल करते हैं. यहाँ हमारे साथ है सना जो दोहा के अलवकरा एरिया से हैं और वो कहती हैं कि अमिता मुझे हमेशा से बाइकिंग का शौक था. क्या बात है, हैट्स ऑफ टू यू. लेकिन मेरी फैमिली को लगा कि ये लड़कियों के लिए बाइक चलाना इट्स नॉट गुड और अगर वो बाइक चलाएंगी तो लोग न जाने क्या कहेंगे. आज मैं 35 की हो गई हूँ पर बाइक की आवाज सुनकर आज भी दिल थोड़ा सा ना उदास हो जाता है. सना आई विल सिंपली से इट्स नेवर एवर.

बट टू लेट। आज ही हेलमेट उठाइए और बाइक उठा के निकल पड़िए, ठीक है? मेरी सलाह को हल्के में मत लीजिएगा। आई एम वेरी सर्टन एंड इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस। मुझे लगता है कि हमें अपनी खुशी का ख्याल खुद रखना चाहिए। दूसरा मैसेज है अबीरा का। वो कहती है कि मैंने अपनी पेंटिंग छोड़ दी क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ थी उनको लगा कि ये वक्त की बर्बादी है और उनके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे कि घर की बहू काम नहीं करती पेंटिंग करती रहती है। ओए होए अबीरा, मुझे लगता है कि ये जो बात आपने कही है ना, मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा है कि जब हम शादी करके निकाह करके किसी के घर जाते हैं तो थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं और फिर ऐसी चीजें हमें सुनने में आती है। बट इट डजंट मैटर, आपको वो चीज पसंद है एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आप अपने इन लॉज को भी कन्विंस कर सकती हैं, लेकिन आपने शायद बताया ही नहीं कि मैं इस चीज को नहीं छोड़ सकती। एक बार आप ये जता देंगी कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ, ये चीज मेरी जान है, मुझे एनर्जी देती है, तो शायद आपको कोई नहीं रोकेगा। वेल, अगला मैसेज है रुमाना का। वो कहती है कि मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी पर लोग क्या कहेंगे के डर से मैं आज एक डेस्क जॉब कर रही हूँ। ये सुनकर मैंने काफी आपसे रिलेट किया रुमाना। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी एक सिंगर बनना चाहती थी, बट अफसोस कि मेरी ग्रैंड मदर नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स में चले जाऊं, एंड उन्होंने मुझे टोटली सिंगिंग क्लासेस लेने से मना कर दिया। बट लेट मी टेल यू कि मैंने उसके बाद अपने ड्रीम को पूरा किया। मैंने काफी सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस में स्टेज शोज में जाकर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। हाँ, डेफिनेटली मैं प्रोफेशनल सिंगर्स के मुकाबले तो उतनी टक्कर नहीं दे पाती, लेकिन लेकिन लेकिन मैंने अपने ख्वाब को पूरा किया। और जब भी मैं परफॉर्मेंस देने जाती थी तो मैं मेक श्योर करती थी कि 2-3 हफ्ते की कड़ी प्रैक्टिस करके जाऊं और जो भी मुझे गाना पसंद है उसे मैं चूज करूं। सो आई जस्ट वांट टू से रुमाना, इट्स नेवर टू लेट। आई नो कि लोग क्या कहेंगे, ये सिंड्रोम हमारी लाइफ में आगे पीछे घूमता ही रहने वाला है, बट मैं आपको कह रही हूँ जो मैंने किया आप ट्राई जरूर कर सकती हैं। और अभी तो जमाना बिल्कुल हाईटेक का है, इतना कुछ है अवेलेबल कि आप जिस जगह है आपको स्टेज पर जाने की भी जरूरत नहीं, आप घर को ही अपना स्टेज बना के अपना परफॉर्मेंस दे सकती है। सो जस्ट ट्राई दिस आउट, ठीक है? वेल, द डाइट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये एक चीज है ना, बड़े हमारी लाइफ को ना रोकती है। हाँ, पता है दिक्कत कहाँ है? हमें बचपन से ही ना खास डाइट पर पाला जाता है। यू कहें तो इस तरह से बैठो, धीरे बोलो, तमाशा मत करो, और हम अपनी ही फैमिली के लिए पब्लिक रिलेशंस मैनेजर बन जाते हैं। अपनी तकलीफों को छुपाते हैं ताकि बाहर हमारी इमेज परफेक्ट बनी रहे। हम अपने दुख, अपनी नाकामयाबी और यहाँ तक कि अपनी असली पहचान को भी ना पर्दे के पीछे रखते हैं। हम मास्टर्स बन गए हैं अपनी जिंदगी को एक परफॉर्मेंस बनाने में, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? कभी सोचा इसके बारे में? मैंने एक फिल्म देखी थी गुंजन सक्सेना, जो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, और उसका एक बड़ा प्यारा सीन है जब वो अपने फादर से बात कर रही होती है कि भाई मैं कैसे, मतलब मैं कैसे नई जॉब कर पाऊंगी और मतलब कैसे काम करूंगी। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसके फादर कहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी उसकी फिक्र तुम मत करो, अगर तुम डर गई तो दुनिया जीत जाएगी और अगर तुम लड़ी तो तुम जीत जाओगे। आ रहा है समझ में? गुंजन सक्सेना को पायलट बनना था और ये फिल्म बड़ी खूबसूरत है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। वैसे जब मैं आपसे बात करती हूँ तो तरह तरह की फिल्मों का भी जिक्र करती हूँ, और इसीलिए करती हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें और आप भी वो चीज कर सकें, वो चीजें देख के इंस्पायर्ड हो सकें जो शायद कहीं छुप गई है, कहीं दब गई है। वेल, याद रखिए, अगर आप डर गए तो दुनिया जीत जाएगी। कितनी बड़ी सच्चाई है इसमें, है ना? हम अपनी पूरी जिंदगी उस बॉक्स में फिट होने में गुजार देते हैं और उन लोगों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने लगते हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। क्यों हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उन अजनबियों के हाथ में दे देते हैं जो शायद हमारा नाम तक भी नहीं जानते और कभी कभी भूल भी जाते हैं हमारे बारे में? हम उन्हें ये पावर, उन्हें ये ताकत क्यों देते हैं कि वो ये डिसाइड करें कि हमें कब हंसना है और कब रोना है? तो जनाब, आज की सोच क्या कहती है? बहुत ही सिंपल है। आपकी जिंदगी कोई स्टेज नहीं है और आप कोई परफॉर्मर नहीं है। हाँ, मतलब इन दिस सेंस यू आर द ऑडियंस दैट मैटर्स मोस्ट। यहाँ पर मैं कहूंगी कि

दुनिया की नजर से देखना बंद कीजिए, खुद को अपनी नजर से देखिए। अगर आप खुद की नजर में सही हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, तो दुनिया की नजर का बोझ अब कंधों से उतार कर फेंक दीजिए। समझ गए ना आप? पर आगे हम बात करने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे वाला डर हमारी सेहत, हमारी हेल्थ पर कैसे असर डालता है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107 मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ मेरी पहचान है शो का नाम और आज हम बड़ी ही गहरी बात कर रहे हैं मैं यहां दोहा में जब अपने घर की बालकनी के बाहर देखती हूं तो मुझे चमचमाती लाइट्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हमेशा भागती हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं

सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है ना। लेकिन इस परफेक्शन की चमक में अक्सर हम एक चीज खो देते हैं, एंड दैट इज अपने आप को, खुद को। आज हम बात करेंगे उस डर की जो हमारी सेहत को, हमारे सुकून को एक जोंक की तरह खत्म कर रहा है, जो कि वो कहते हैं जोंक जो खून चूस जाती है, पूरा शरीर आपका खत्म कर सकती है। कि लोग क्या कहेंगे वाला डर सिर्फ हमारे सपनों को नहीं, हमारी सेहत, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी खा जाता है। वी आर सो बिजी मेंटेनिंग एन इमेज, है कि नहीं। हमारी इमेज ऐसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें इस एज की तरह दिखना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करना चाहती हूँ, द साइलेंस ऑफ द परफेक्ट मदर। हमेशा मैंने अपनी माँ को देखा, अपने घर की लेडीज को देखा। हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन न जाने क्यों छुपाते हैं। सुना तो होगा आपने इसके बारे में, क्योंकि बचपन से हमें सुनाया गया है कि माएं तो हमेशा खुश रहती हैं, माँ बनना तो एक वरदान है, इट्स अ बोन, तो फिर रोना कैसा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब वो माँ बनी उसके 2 महीने बाद वो रात को छुप कर रोती थी। पता है उसे डर था कि अगर उसने कहा कि वो थक गई है या वो उदास हो गई है तो लोग क्या कहेंगे, कैसी माँ है ये। सोसाइटी ये मदरहुड को एक सेक्रीफाइस ओलंपिक्स बना देती है, नहीं लगता आपको। जितना ज्यादा हम दर्द सहेंगे ना उतनी ही अच्छी माँ बनेंगे। हाँ, ये हमने बहुत सुना है। हम अपना बर्नआउट छुपाते हैं क्योंकि हमें लगता है बीवियों को तो सब संभालना आना चाहिए, ऑफिस, बच्चे, किचन, सोशल गैदरिंग्स, और इन सब के बीच आपका अपना शरीर भी, ओहो हो, वो तो लिस्ट में कहीं होता ही नहीं। आपने कभी सोचा है वो जो बैक एक है, वो जो माइग्रेन है जो हर हफ्ते होता है, वो शायद सिर्फ बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर की चीख है। योर बॉडी इज स्क्रीमिंग फॉर अ ब्रेक बट योर माइंड इज बार बार ये कह रहा है कि बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिकॉज लोग क्या कहेंगे। ये प्रेशर सोसाइटी का, एक ट्रॉफी बॉडी की, उफ। लेट्स टॉक अबाउट आवर सराउंडिंग्स। जब हम हमारे सोशल गैदरिंग्स में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। हर हफ्ते, एवरी वीकेंड, हाँ वीकेंड का क्या प्लान है, एवरी वीकेंड इज अ रेड कार्पेट इवेंट। हर किसी को फ्लॉलेस दिखना है, हर किसी की स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए। हम अपनी उम्र, अपने रिंकल्स छुपाते हैं, जैसे जैसे कि एजेड होना कोई सोशल क्राइम है। बोटॉक्स फिलर्स, फिल्टर्स, हम सब ने इनका सहारा लिया है, जो कि गलत नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि खूबसूरत दिखना कुछ गलत है, पर सवाल ये है किस कीमत पर। आपका सुकून कहाँ है जब आप आईने में, यू कहें मिरर के सामने खड़ी होती हैं बिना मेकअप के, तो क्या आप खुद को मुस्कुराकर देखती हैं या सिर्फ अपनी इम्परफेक्शंस ढूंढती हैं। हमने अपने शरीर को एक सर्वाइवल स्टोरी से हटाकर एक ट्रॉफी बना दिया है जिसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हम भूल गए हैं कि ये जो हमारी बॉडी है हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है, जिंदगी महसूस करने के लिए है, सिर्फ फोटोज में फिट आने के लिए नहीं कि बस कोई एंगल ले लिया, कोई फिल्टर लगा लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिट फील भी करें। वैसे जब इसका मैंने जिक्र किया तो वो मूवी है ना डियर जिंदगी, डियर जिंदगी मोमेंट, उसमें शाहरुख खान कहते हैं ना कि हम हमेशा दूसरों के नजरिए से खुद को देखते हैं। एक बार खुद की नजर से तो देखो ना आप कितने खूबसूरत हो। कितनी गहरी बात है ना ये, दूसरों की नजर। वो पड़ोसी जो आपकी वेट गेन पर कमेंट करते हैं, ओह बड़ी मोटी हो गई हो, तुमने वेट पुट ऑन किया है ना। हाँ, वो रिलेटिव जो पूछते हैं चेहरे पे झुर्रियां कैसे आ गई, अरे अभी तो आपकी उम्र ही नहीं है झुर्रियों की। उनकी नजर से तो आप हमेशा कम ही रहेंगी, लेकिन अपनी नजर से देखिए वो रिंग।

वो स्ट्रेच मार्क्स वो एक नई जान को दुनिया में लाने का निशान है। वो थकान वो इस बात का सबूत है कि आपने पूरे दिल से काम किया है। हम अक्सर दूसरों को देखकर घुटते रहते हैं। नेबर्स को परफेक्ट लाइफ दिखाने के लिए खामोशी में मत घुटिए, क्योंकि यकीन मानिए उनकी परफेक्ट लाइफ की दीवारों के पीछे भी वैसा ही शोर है जैसा आपके यहाँ। ठीक है, उनके घर में

कोई कमजोरी नहीं है, मैं कहूँ ये बहादुरी है। अब इम्पोर्टेंट है फाइंडिंग द बैलेंस। तो वो आप कैसे करेंगे? पहला कदम, अपने शरीर के साथ दोस्ती कीजिए। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ फ्रेंड, नॉट एन एनिमी। हाँ, अगर आपका दोस्त थक गया है तो क्या आप उसे और भगाएंगे? नहीं ना, तो खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरा कदम, नो कहना सीखिए। हर पार्टी में जाना जरूरी नहीं है। अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल है, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना भी जरूरी नहीं है। अगर आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा है, समझ रहे हैं आप, तो बॉडी और माइंड का बैलेंस इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तभी आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। एंड ये तब हो सकता है जब आप रियल हो। इट्स अबाउट नोइंग कि आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सोशल सर्कल के रेपुटेशन से भी ज्यादा। एंड आगे 10 सालों में अगर आपने इस चीज का ख्याल नहीं रखा तो फिर भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। आपका शरीर आपकी सर्वाइवल की कहानी है, इसे इज्जत से देखिए, इसे प्यार कीजिए। अगली बार जब आप आईने में देखें तो लोग क्या कहेंगे को कमरे से बाहर निकालकर फेंक दीजिए। सिर्फ अपनी नजर से देखिए और देखिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं, हर दाग हर थकान के साथ। मैं हूं अमिता आपके साथ, और आपके साथ मेरी पहचान शो पर मैं बनी हुई हूँ। आगे कुछ और बात करने वाली हूँ छुपी हुई मैं के बारे में, तो कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं शो मेरी पहचान और मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। अभी तक हमने बात की उन सपनों की जो हमने लोग क्या कहेंगे के डर से पूरे नहीं किए, लेकिन लेडीज ये बीमारी सिर्फ हमारे करियर, हमारी ख्वाहिशों तक महदूद या यूं कहें लिमिटेड नहीं है। ये डर हमारी रगों में इतना गहरा उतर गया है कि अब ये हमारी सेहत और हमारे सुकून को भी खा रहा है। आज हम बात करेंगे द बॉडी एंड द बैलेंस की। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा ये जिस्म, हमारा ये दिमाग, हमारी सबसे बड़ी जो पहचान है वो टॉस पे जा रहा है, लेकिन हमने इस पहचान को भी दूसरों की जजमेंट को भेंट कर दिया है। हाँ, सोचें कितनी बार हमारी माएं, हमारी बहनें या शायद आप खुद थक कर चूर हो जाती हैं, लेकिन मुस्कुराती रहती हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छी औरत वही है जो सब संभाल ले। हमने थोड़ी देर पहले पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जिक्र किया। हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि माएं तो हमेशा खुश रहती हैं। अगर कोई नई माँ उदास है ना, तो पड़ोसी कहेंगे, अरे कितनी ना शुक्री हो, औलाद मिली है ना फिर भी रो रही हो। इस डर से वो माँ खामोशी में घुटती रहती है। वही हाल बर्नआउट का भी है। बीवियों पर प्रेशर होता है कि घर परफेक्ट दिखना चाहिए, बच्चों की ग्रेड्स टॉप होने चाहिए और खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। हम अपने मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें लगता है कि अगर हमने ब्रेक मांगा तो लोग कहेंगे हम कमजोर हैं। क्या हमारा सुकून इतना सस्ता है कि हम लोगों की राय के लिए उसे कुर्बान कर दें? द मिरर ऑफ परफेक्शन क्या हो सकता है? चलिए अब बात करते हैं उस प्रेशर की जो हमारे सोसाइटी की ग्लिटरिंग गैदरिंग्स में हम महसूस करते हैं। दोहा एक ऐसा शहर है जहां हर गैदरिंग एक फैशन शो जैसी लगती है, जो कि अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। हम अपनी उम्र छुपाते हैं, अपने रिंकल्स को दुश्मन समझते हैं और हर बार आईने में देखकर खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हम इतने सारे फिल्टर्स के पीछे छुप गए हैं कि हमें अपना असली चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा। क्यों? आखिर क्या बुराई है हमारे इस चेहरे में, और क्या बुराई अगर हम थोड़े से एजड हो रहे हैं? लेकिन हमें डर लगता है कि अगर हम थोड़े थके हुए दिखे या हमारे बाल सफेद दिखे तो फिर लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे हमने अपना ख्याल नहीं रखा। इस परफेक्ट इमेज को बनाए रखने के लिए हम इतनी जहनी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज किस कीमत पर? क्या वो लोग जो पार्टी में आपकी स्माइल की तारीफ कर रहे होते हैं वो आपकी रातों की बेचैनी को दूर करेंगे? है इस सवाल का जवाब? बिल्कुल नहीं। हाँ, और तभी मैं कहती हूँ कि हम हमेशा दूसरों के नजरिए से खुद को देखना ना छोड़ दें। रिक्लेम योर बॉडी। कितनी खूबसूरत है आप, क्या आपने कभी खुद को इस नजर से देखा है? आपका ये शरीर आपकी सर्वाइवल की खूबसूरत कहानी है, इसका जिक्र भी हमने किया। हाँ, ये कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे लोग आकर ग्रेड करेंगे। हाँ, अगर आप थक गए हैं तो हिम्मत करके कहिए, भाई मैं थक गई हूँ, मुझे अभी परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा इम्परफेक्ट होने में ही अच्छा लग रहा है। अपने अंदर की परफेक्ट लाइफ का ये जो टैग है, इसे लेकर अपने थॉट्स को ना दबाइए। सब ठीक है, खामोशी में मत घुटिए। यकीन मानिए, जिन पड़ोसियों की परफेक्ट लाइफ पर आप बड़ी बड़ी दलीलें देती हैं, शायद उनकी लाइफ पर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेडीज, वक्त का पता ही नहीं चला कितनी खूबसूरती से हमने आज ये बात की। आज हमने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की है जो हमने बरसों से अपने दिमाग में सजा कर रखा है। हमने बात की उन सपनों की जो लोग क्या कहेंगे कि डर से रुक गए, और उस सेहत की जो प्रेशर में दब गई। लेकिन सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप एक निश्चय, या यूं कहें जब आप एक डिसीजन करती हैं। जब हम ये तय करेंगे कि आज से हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी

और के हाथ में नहीं होगा। हमें अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा शेमलेस, हाँ ये वर्ड यहाँ सूट करता है, वो बनना होगा। हमारे कल्चर में बेशर्मी को या शेमलेस, इन शब्दों को बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ अपनी पहचान को बचाने के लिए ये करना थोड़ा जरूरी है। तो इससे पहले कि आपसे रुखसती ली जाए, आपसे विदा ली जाए, मैं आपको कुछ बड़ी मजे की टिप्स देना चाहती हूँ। हाँ, ये ऐसी टिप्स जो कि आपके माइंडसेट को बदलने में थोड़ी सी मदद करेगी। तो ध्यान से सुने। सबसे पहला, ऑडिट योर फियर्स। हाँ, एक लिस्ट बनाइए, लिखिए कि ये लोग आखिर है कौन। जब आप लिखने बैठेंगी ना, तो आपको एहसास होगा कि लोग पूरी दुनिया नहीं है, ये सिर्फ 3-4 लोग होते हैं। शायद वो कोई दूर की चाची होंगी जो जजमेंट करेंगी, या वो 3-4 लोग अपनी पूरी जिंदगी को जेल बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, तो उनकी लाइफ हम क्यों जिए, इनकी बातों का कोई वजूद नहीं है। दूसरी टिप है द 5-year रूल। हाँ, अगली बार जब कोई आप पर कॉमेंट करे तो खुद से पूछिए, क्या इस इंसान की बात 5 साल बाद मायने रखेगी? नहीं। अगर जवाब नहीं है तो उसे अपनी जिंदगी के 5 मिनट से ज्यादा वक्त मत दीजिए। अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च कीजिए जो हमेशा आपके साथ रहेगी। टिप नंबर 3, मिरर वर्क। हर सुबह आईने में देखकर सिर्फ अपने बाल मत संवारिए, अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, इस कमरे में मेरा फैसला ही सबसे बड़ा है। जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करेंगी ना, तो दुनिया की जो क्रिटिसिज्म है या जो क्रिटिक्स हैं, वो आपको बहुत छोटे महसूस होंगे। हाँ, और द ब्रेव चैलेंज क्या है आपके लिए? हाँ, अब ये वक्त है कि इस हफ्ते का ना चैलेंज भी मैं आपको सौंप के जाऊं। और ये चैलेंज ऐसा है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। इस हफ्ते आपको कोई एक ऐसी चीज करनी है जो आपने सिर्फ लोग क्या कहेंगे की वजह से रोक दी। हाँ, तो ये चैलेंज इजी है या मुश्किल? चलो तो वो ब्राइट लाल रंग की लिपस्टिक लगा लो, आपको पसंद है ना, पर लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आपने नहीं लगाई। या फिर सोशल मीडिया पर अपनी एक अनफिल्टर्ड और असली फोटो पोस्ट कर दो, ये सोचे कि अरे लोग कहेंगे, अरे क्या है, रिंकल्स है, ये वो, सब कुछ साइड में। या फिर सबसे मुश्किल काम, कोई ऐसी दावत या इवेंट को नो ना कहकर देखो जहाँ आपका बिल्कुल जाने का मन नहीं है, और उस पे भी आपको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। वेल, मुझसे आप व्हाट्सएप पर अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। 666-22-107 इज आवर नंबर, 666-22-107, और मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ूंगी। देखिए ब्यूटीफुल लेडीज, मेरी पहचान ये शो खास तौर से हमने आपके लिए डिजाइन किया है, और वो कहते हैं ना कि बदलाव ही पहली सीढ़ी है। अगले हफ्ते हम इसी सिलसिले को भी ना आगे बढ़ाएंगे। आई एम श्योर कि आज का एपिसोड आपको अपनी अहमियत को और ज्यादा महसूस करवाएगा, और ये ना कहना अब आप चुटकियों में सीखोगे, है कि नहीं? अपने लिए लड़ना भी चुटकियों में सीखोगे। अगले हफ्ते हम और भी अमेजिंग बात करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो हम सबके पास है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, द पावर ऑफ सेइंग नो। अक्सर हमने छोटी मोटी चीजों में कहा है ना कि नो करके देखिए, ना कह के देखिए। अब द पावर ऑफ सेइंग नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाउंड्रीज बनाना विदाउट गिल्ट कैसे करेंगे, चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। और हाँ, आपको आज का शो कैसा लगा आप जरूर हमें मैसेज कर सकती हैं 666-22-107 पर, 666-22-107। और बेशक बताएं अगर कोई आपके फीडबैक्स है, कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हाँ अमिता ये शो में मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में भी बात करें, तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, ठीक है? और हमारा FM 107 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही आपके लिए, बेशक आप उससे जुड़ जाएं, और अपनी आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढ सकती हैं। और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि दुनिया को अपनी रूह का आईना मत बनने दीजिए, अपना आईना खुद बनिए और अपनी चमक को बरकरार रखिए, ठीक है? और इसी बात के साथ बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आरजे सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक ऐसा शो जो आपको ले जाता है टाइम और स्पेस के

शानदार सफर पर। यहां हम एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री के राज और वो मिस्ट्रीज जो अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। हर एपिसोड एक ऑडियो एडवेंचर है जो आपकी सोच को जगाता है और नॉलेज को बनाता है फन और एक्साइटिंग। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होता है आपका सफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी की दुनिया में। साथियों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर में जो पूरी तरह से सहरा में छुपा हुआ है। एक शहर जो अपनी सैंडस्टोन क्लिफ्स के लिए मशहूर है और जहां की हिस्ट्री हमेशा से रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स को फैसिनेट करती है। वेलकम टू आवर शो, जहां हम अनकवर करेंगे पेट्रा, द हिडन सिटी ऑफ जॉर्डन। साथियों, से पहले कि मैं आपको पेट्रा की सैर कराऊं, मैं चाहूंगी कि आप कुछ बातें पेट्रा के बारे में जान लें। आज के सफर में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह की तरफ जिसे दुनिया द हिडन सिटी के नाम से भी जानती है। जी हाँ, ये है जॉर्डन का मशहूर शाहकार पेट्रा। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उनके अंदर नक्काशी करके बनाया गया पूरा का पूरा शहर, वो भी 2000 साल पहले। नबतींस नाम की तहजीब ने इस शहर को पत्थरों में तराशा और आज भी ये दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है। पेट्रा को देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने हॉलीवुड का कोई सेट डिजाइन किया हो। यानी लंबी लंबी सुर्ख रंग की दीवारें, छुपी हुई सुरंगें और सबसे मशहूर ट्रेजरी, जो देखने में एक बड़ा ताजमहल जैसा लगता है। लेकिन इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है। ये शहर कभी ट्रेड और कल्चर का सेंटर था, लेकिन फिर किस्मत की गर्दिश में मिट्टी और रेत के नीचे छुप गया। आज पेट्रा सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, बल्कि एक जिंदा दास्तान है जो ये बताती है कि इंसान इमेजिनेशन और मेहनत से किस हद तक कमाल कर सकता है। तो तैयार हो जाइए एक मैजिकल सफर के लिए, जहां हम खोलेंगे पेट्रा के राज, यानी उस शहर के बारे में बात करेंगे जो पत्थरों में छुपकर भी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्थर सुर्ख, गुलाबी और ऑरेंज शेड्स में चमकते हैं और धूप के साथ साथ रंग बदलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइव कलर शो जैसा। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग अल खजने यानी दी ट्रेजरी है और असल में ये एक मकबरा था, लेकिन लोग काफी अरसे तक ये समझते रहे कि इसके अंदर कोई खजाना या सोना छुपा है। पेट्रा 700 साल तक दुनिया से गुम रही, जब तक 1812 में एक स्विस एक्सप्लोरर जिसका नाम था जॉन ब्रोकहार्ट ने इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया। मतलब सेंचुरीज तक ये लिटरली हाइड एंड सीक खेलती रही। हॉलीवुड भी इस शहर का दीवाना है। इंडियाना जॉन्स एंड द लास्ट क्रूसेड 1989 का क्लाइमेक्स यही ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने फिल्माया गया था। साथियों, नबतियंस जो पेट्रा के बिल्डर्स थे, पानी के बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने रेगिस्तान के दरमियान टनल्स और स्टोरेज सिस्टम्स बनाए और हैरानी की बात यह है कि वो आज की मॉडर्न प्लम्बिंग के बराबर स्मार्ट थे। पेट्रा को 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया और तब से ये दुनिया भर के ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट का किंग बन गया। साथियों, पेट्रा के अंदर की सुरंगों और खुली चट्टानों की वजह से यहाँ पर अगर आप आवाज लगाएं तो आपकी आवाज गूंजती है। अगर आप यहाँ जाकर गाना गाएं या हेलो हाय ही चिल्लाएं तो साउंड बिल्कुल नेचुरल इको इफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे पेट्रा ने अपने वाटर सिस्टम्स और रॉक कट आर्किटेक्चर से सेंचुरीज पुरानी लाइफ को प्रिजर्व किया, कैसे डेली लाइफ, ट्रेड और कल्चरल इंटरैक्शंस पेट्रा की स्ट्रीट्स और टाउन्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेकुलेटिव इमेजिनेशन के जरिए हम पास्ट को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टाइम ट्रेवल जर्नी को और चलते हैं एक ऐसे सिविलाइजेशन में जो सेंचुरीज पुरानी है लेकिन अब भी जिंदा है हमारी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन में। तो जरा सोचिए, आप फर्स्ट सेंचुरी BCE के पेट्रा की स्ट्रीट्स में चल रहे हैं जॉर्डन के साउदर्न डेजर्ट में,
एक शहर जो नबातियन सल्तनत का हब था अपनी खूबसूरत रोज कलर्ड सैंडस्टोन क्लिफ के बीच बस गया है। उनकी गलियों में ट्रेडर्स अपने गुड्स डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी इंसेंस स्पाइसेस और सिल्क्स के कैरवान्स एक से दूसरे रूट पर जा रहे हैं। बेकर्स और क्राफ्टमैन्स अपने वर्कशॉप्स में बिजी हैं और बाकी लोग अपने विलास और कोर्टयार्ड्स में डेली रूटीन में मशगूल हैं। साथियों, आपको ये याद दिलाती चलूं कि पेत्रा का आर्किटेक्चर एक मार्वल है, जहां बिल्डिंग्स और टोम्स डायरेक्टली क्लिफ्स में कार्व की गई हैं। अल खजाने, द ट्रेजरी और अद्देर यानी मोनेस्ट्री जैसे मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं कि नबातियंस के पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स थी। स्ट्रीट्स और प्लाजाज बहुत ही एहतियात से प्लान किए गए, जहां सोशल गैदरिंग्स, ट्रेड और सिविक गैदरिंग्स हुआ करती थीं। नबातियंस ने वाटर मैनेजमेंट में भी अपनी महारत दिखाई। रेन वाटर कैप्चर और स्टोरेज के लिए डैम्स, सिस्टर्न्स और एक्वाडक्ट्स बनाए गए। ये एडवांस सिस्टम इस सहरा में बने शहर में सस्टेनेबल लाइफ पॉसिबल करते हैं। साथियों, पेत्रा में हर स्ट्रीट, टॉम और आर्टिफैक्ट एक स्टोरी बयान करता है। नबातियंस के फ्रिस्कोस और कार्विंग्स में डोमेस्टिक चोर्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस और ट्रेड एक्टिविटीज नजर आती हैं। ज्वेलरी और पर्सनल आइटम्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। ट्रेड और इकोनॉमी भी हाईली ऑर्गेनाइज थी। साथियों, पेत्रा दुनिया के उन चंद शाहकारों में से एक है जो इंसान की क्रिएटिविटी और नेचर की ब्यूटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। 2000 साल पुराना ये शाहकार एक रेगिस्तानी ओएसिस था, जहां से ट्रेड कैरवान्स गुजरते थे और यहां के लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग और इमेजिनेशन से पत्थरों में जिंदगी बसाई। साथियों, पेत्रा दुनिया का एक हिडन मास्टरपीस है। ये शहर सिर्फ पत्थरों का शाहकार नहीं बल्कि इंसानी क्रिएटिविटी, एंशिएंट इंजीनियरिंग और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हर कॉर्नर, हर कैनियन और हर फसाद अपनी कहानी कहता है, और ये कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने इस शहर को रेगिस्तान के बीच जिंदा कर दिया। जरा सोचिए, एक शहर जो 2000 साल पहले बनाया गया, जहां हर इमारत और हर स्ट्रक्चर मेटिकुलसली कार्व्ड है सिर्फ हथियारों और दिमाग की ताकत से। आज भी पेत्रा का राज साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है। हर कैनियन और पत्थर के नीचे छुपी हुई केव्स, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स आपको एक टाइम ट्रेवल का एहसास देती हैं, जैसे आप सदियों पहले वहां खड़े हैं। और ये सिर्फ हिस्टोरिकल साइट नहीं, पेत्रा एक लिविंग म्यूजियम है। यहाँ के नेचुरल फॉर्मेशंस, हिडन वैलीज और सराउंडिंग क्लिफ्स हर विजिटर को एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का इनविटेशन देती हैं। हर टर्न पर नए वंडर्स छुपे हैं, यानी छोटी वाटरफॉल्स, सीक्रेट केव्स और वाइल्ड लाइफ जो डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कम्प्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। ये शहर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हम ह्यूमन इंजेनिटी और नेचर के साथ एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हर पत्थर, हर कैनियन और हर इमारत एक पुराने दौर के सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज खोलने के लिए आपका इंतजार कर रही है। पेट्रा का हिडन ट्रेजर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि दिल और इमेजिनेशन के लिए भी डिजाइन किए गए हैं। ये शहर आपको इंस्पायर करेगा, हैरान करेगा और हर पल एक नई डिस्कवरी का एहसास भी देगा। साथियों, पेट्रा सिर्फ उन मशहूर कार्व फसाद्स तक लिमिटेड नहीं जो हर टूरिस्ट गाइड बुक में दिखाए जाते हैं। इस शहर के अंदर कई छुपी हुई केव्स और नेचुरल वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जो डेजर्ट के हार्श एनवायरनमेंट के बीच सीक्रेट ओएसिस जैसे लगते हैं। कुछ केव्स इतनी परफेक्टली छुपी हुई हैं कि सेंचुरी तक एक्सप्लोरर्स इन्हें डिस्कवर नहीं कर पाए। इन केव्स की वॉल्स पर अब भी एंशिएंट नेबेटियन इंस्क्रिप्शंस और पेंटिंग्स मिलती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये लोग ना सिर्फ मास्टर इंजीनियर्स थे, बल्कि उनके अंदर एक आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर का टैलेंट भी छुपा हुआ था। हर केव एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो आपको 2000 साल पीछे ले जाता है और दिखाता है कि कैसे इंसानी क्रिएटिविटी और नेचर एक साथ मिलकर एक टाइमलेस मास्टरपीस बनाते हैं। और तो और साथियों, पेट्रा का डेजर्ट इकोसिस्टम अपनी तरह काफी फैसिनेटिंग है। यहाँ आपको हाइब्रिड्स और इल्यूसिव डेजर्ट फॉक्सेस मिल सकते हैं, जो ज्यादातर टूरिस्ट की नजरों से दूर रहते हैं। ये क्रिएचर्स अपनी चालाकी और नेचुरल कैमोफ्लेज की वजह से रेगिस्तान के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं। कभी कभी आप इन्हें ट्रेजरी के आसपास या मोनेस्टरी के क्लिफ्स पर देख सकते हैं, और ये मोमेंट्स एक नेचुरल सरप्राइज और एडवेंचर का एहसास दिलाते हैं। पेट्रा का वाइल्ड इकोसिस्टम सिर्फ शहर की जिंदगी को कंप्लीट नहीं करता, बल्कि इसे एक हिडन ट्रेजर और लिविंग म्यूजियम का स्टेटस देता है, जो आपको नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड देता है। साथियों, नेबेटियंस के पास डेजर्ट की हर्बल नॉलेज सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो ऐसे प्लांट्स और श्रब्स यूज करते थे जो बिना ज्यादा पानी के सरवाइव कर सकते हैं, और मेडिसिंस, डाइज, इवन फूड सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये लोग नेचर के साथ इतनी इंटेलिजेंटली कोलैबोरेट करते थे।

के हर प्लांट को एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता था। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और बोटेनिस्ट्स ने कुछ ऐसे यूनिक हर्ब और प्लांट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो पेट्रा के हार्श सॉइल और एक्सट्रीम क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, और ये हमें ये दिखाता है कि ये एंशिएंट लोग कितने स्मार्ट और रिसोर्सफुल थे भाई। इनके ये प्लांट सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं थे बल्कि नबातियंस की साइंटिफिक और कल्चरल नॉलेज का लिविंग प्रूफ भी थे। साथियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नबातियंस ने सिर्फ पानी का एडवांस सिस्टम नहीं बनाया बल्कि अपनी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से सन डायल्स और नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम्स भी डिजाइन किए। जी बिल्कुल, पत्थरों के स्ट्रक्चर्स और केव ओपनिंग्स को इस तरह केयरफुली अलाइन किया गया था कि शहर के अंदर का टेम्परेचर काफी स्टेबल रहता था, यानी डेजर्ट की एक्सट्रीम हीट और बोन चिलिंग कोल्ड के बावजूद भी यहाँ का टेम्परेचर काफी स्टेबल रहता था। ये एक ऐसी एंशिएंट क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का प्रूफ है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी इंस्पायरिंग है। हर कॉर्नर और हर फसाद में उनकी प्रिसिशन और प्लानिंग की निशानियाँ दिखाई देती हैं, जो ये साबित करती हैं भाई कि नबातियंस सिर्फ बिल्डर्स नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स भी थे जो नेचर और एनवायरनमेंट को समझकर स्मार्ट सॉल्यूशंस क्रिएट किया करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा के हाइकिंग ट्रेल्स सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी का जरिया नहीं बल्कि एक एडवेंचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड भी है। साथ ही यहाँ का सबसे मशहूर ट्रेल अल डेल ट्रेल है जो आपको एक हिडन व्यू पॉइंट तक ले जाता है जहाँ से आप वादी और सराउंडिंग माउंटेन्स का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेल के रास्ते में हर टर्न पर आपको एंशिएंट नबातियन कार्विंग्स, इंस्क्रिप्शंस और छोटे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपको एक टाइम ट्रेवल का एहसास देते हैं, जैसे आप 2000 साल पहले वहाँ ही खड़े थे। इस हाइकिंग एक्सपीरियंस का एक और फन एस्पेक्ट है कि ट्रेल्स के नैरो पैसेजेस, रॉकी क्लिफ्स और स्टीप स्लोप्स आपके एडवेंचर इंस्टिंक्ट को चैलेंज करते हैं। हर स्टेप पर डेजर्ट की खुशबू, पत्थरों का टेक्सचर और हवाओं की सरगोशियां आपकी सेंसेस को एंगेज रखते हैं। ये ट्रेल्स सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इमर्सिव जर्नी है जहां आपका नेचर और हिस्ट्री के साथ ताल्लुक गहरा होता जाता है। और ये सिर्फ अल्डेर ट्रेल तक लिमिटेड नहीं है, पेट्रा में और भी हिडन ट्रेल्स हैं जो आपको छुपी केव्स, नेचुरल व्यू पॉइंट्स एंड इवन एंशिएंट वाटर चैनल्स तक ले जाते हैं। हर ट्रेल की अपनी एक यूनिक स्टोरी है और अपना ही एक अलग सीक्रेट है जो सिर्फ एक्सप्लोर करने वालों को ही मिलता है। यानी यहाँ हाइकिंग के साथ साथ आप एक हिस्टोरिकल ट्रेजर हंट का भी हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ एक्सकेवेशंस और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से ये साबित हुआ है कि पेट्रा सिर्फ एक रेजिडेंशियल या टॉम सिटी नहीं था बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और वाइब्रेंट ट्रेड हब भी था। शहर के बीच में छोटे और बड़े मार्केट्स मौजूद थे जहाँ ग्लास, स्पाइसेस, इंसेंस और रेयर लग्जरी आइटम्स एक्सचेंज होते थे। ये मार्केट सिस्टम इस बात का सबूत है कि नबातियंस ना सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्टिस्ट थे बल्कि मास्टर ट्रेडर्स भी थे जो रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड वर्कर्स से जुड़े हुए थे। मार्केट के रिमेन्स से हमें ये भी पता चलता है कि पेट्रा के लोग इकोनॉमिक प्लानिंग और कॉमर्स में काफी एडवांस थे क्योंकि हर स्टॉल, शॉप और ट्रेडिंग एरिया केयरफुली डिजाइन किया गया था ताकि गुड्स एफिशिएंटली स्टोर और सेल किए जा सकें। इससे ये भी समझ आता है कि पेट्रा सिर्फ एक आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं था बल्कि एक कमर्शियल पावर हाउस भी था भाई। यहाँ हर प्रोडक्ट की अपनी ही स्टोरी और ओरिजिन मौजूद था और ये मार्केट ट्रेल्स अब भी टूरिस्ट के लिए एक्सप्लोर करने लायक हैं, जहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैरवान्स और मार्शियंस यहाँ आते थे और अपनी एक्सोटिक गुड्स ट्रेड किया करते थे। पेट्रा का ये ट्रेडिंग हेरिटेज शहर की कल्चरल और इकोनॉमिक रिचनेस को और भी ज्यादा हाईलाइट करता है और दिखाता है कि एंशिएंट नबातियंस के लाइफस्टाइल कितना डायनेमिक और कॉस्मोपॉलिटन था। साथियों, और तो और पेट्रा के कुछ ओपन कोर्टयार्ड्स और हाई क्लिफ्स इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ डिजाइन किए गए हैं

कि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए आइडियल थे। नबैटियंस स्टार्स, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल इवेंट्स को ऑब्जर्व करते थे, जो उनके टाइम कीपिंग, सीजनल प्लानिंग और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी था। हर ऑब्जर्वेशन पॉइंट और क्लिफ केयरफुली सेलेक्ट किया गया था ताकि सनराइज, सनसेट और स्पेसिफिक स्टार अलाइनमेंट्स को एक्यूरेटली देखा जा सके। ये सब कुछ ये बताता है कि पेट्रा के लोग साइंस, मैथ्स और आर्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स रखते थे। जरा इमेजिन कीजिए, एक डेजर्ट के बीच में जहाँ एक्सट्रीम हीट कंडीशंस होती हैं, लोग इतने एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स और टेक्निक्स डिजाइन करते थे, हैरत की बात है। पेट्रा के एस्ट्रोनॉमिकल हेरिटेज ये भी हाईलाइट करते हैं कि ये शहर सिर्फ आर्किटेक्चुरल मार्वल नहीं बल्कि एक सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी था। हर रॉक कार्विंग और कोर्टयार्ड की डिजाइन में उनका स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज के साथ डीप कनेक्शन नजर आता है, जो हर विजिटर को इंस्पायरेशन का एहसास दिलाता है। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, आज की टूरिस्ट पेट्रा को सिर्फ हिस्टोरिकल साइट के तौर पर नहीं बल्कि एडवेंचर हब के तौर पर भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, कैनियनियरिंग और ट्रेकिंग का मजा लिया जा सकता है। वैसे यहाँ पे सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है सिक। ये एक नैरो और विंडी कैनियन है, जहाँ से गुजरते हुए आपको पत्थरों की ऊंची दीवारें और नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस का क्लोजअप व्यू मिलता है। और हाँ, यहाँ आपको हर टर्न पर एंशिएंट कार्विंग्स और जियोलॉजिकल वंडर्स नजर आते हैं, जो आपके अंदर के एक्सप्लोरर को और भी एक्साइट कर देते हैं। साथियों, क्लिफ्स और एलिवेटेड ट्रेल्स पर चलना एक एड्रेनलिन फिल्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ हर स्टेप पर डेजर्ट की हार्श ब्यूटी और हिस्टोरिकल ऑरा आपको सराउंड करती है। पेट्रा एडवेंचर और हिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड लर्निंग ऑफर करता है, यानी एक ही सफर में आप एंशिएंट आर्किटेक्चर, डेजर्ट लाइफ और नेचुरल फॉर्मेशंस को एंजॉय करते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा डेयरिंग फील कर रहे हैं तो कैनियन के छोटे हिडन पैसेजेस और स्टीप रॉक फेसेस एक्सप्लोर करना आपके लिए एक वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होता है। हर एडवेंचर एक्टिविटी के साथ आप प्रैक्टिकली पेट्रा के सीक्रेट और हिडन कॉर्नर्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं, जो आपको इस हिडन सिटी के साथ एक पर्सनल और इमर्सिव कनेक्शन फील कराता है। साथियों, मजे की बात ये है कि कुछ व्यू पॉइंट से आप यहाँ का पूरा सिटी पैनोरामा में देख सकते हैं, जो सनराइज और सनसेट के वक्त इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। और तो और, मोनेस्ट्री के पास कुछ नेचुरल पूल्स हैं, जो डेजर्ट के बीच सरप्राइजिंग ब्यूटी ऑफर करते हैं। और हाँ, कार्व वॉल्स पर एंशिएंट ग्रेविटीज और कार्विंग्स देखकर यूं लगता है कि यहाँ के लोग अपनी स्टोरीज और मैसेजेस छोड़कर गए हैं। यूं समझ लें कि एक तरह का अर्ली सोशल नेटवर्क। तो साथियों, ये कहना तो बिल्कुल गलत ना होगा कि पेट्रा सिर्फ कार्व्ड फसाद्स और ट्रेजरी नहीं है। ये एक जिंदा शहर है, जहाँ डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ, साइंस और ह्यूमन क्रिएटिविटी एक साथ मिलते हैं। यहाँ के हिडन केव्स, नेचुरल वाटरफॉल्स, हर्बल प्लांट्स और सन अलाइन कोर्टयार्ड्स सब एक कहानी कहते हैं। एक कहानी जो हर विजिटर के लिए इंस्पायरिंग और एडवेंचरस है। भाई, पेट्रा का असली वंडर ये है कि ये हर दफा नए राज दिखाता है भाई। और हाँ, हर एक्सप्लोरेशन एक नई डिस्कवरी बन जाती है। अगर आप जॉर्डन का सफर प्लान कर रहे हैं तो पेट्रा को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये शहर आपको हर पल हैरान और फैसिनेटेड रखेगा। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं पेट्रा के गहरे डेजर्ट क्लिफ्स के अंदर, जहाँ एक पुरानी और खोई हुई सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखिएगा कि पेट्रा सिर्फ पत्थरों में कार्व बिल्डिंग्स का शहर नहीं है। ये लोगों की जिंदगी, उनकी रूटीन, उनके क्राफ्ट और

सोशल इंटरेक्शन का जिंदा रिकॉर्ड भी है। हर टूम आर्टिफैक्ट और इंस्क्रिप्शन एक कहानी बताती है जो आपको 2000 साल पीछे लेकर जाती है। शुरू करते हैं पेट्रा के टूम से, जो कि फेमस है अल खजाने यानी ट्रेजरी से। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंटल फसाद नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो नबातियन इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का प्रूफ देता है। यहाँ की हर कार्विंग और डेकोरेटिव एलिमेंट सिंबल और स्टेटस की रिफ्लेक्शन करता है। स्कॉलर्स स्पेकुलेट करते हैं कि ये टॉम सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों के लिए नहीं था बल्कि रिलीजियस और सेरेमोनियल सिग्निफिकेंस भी रखता था, लेकिन इसका एग्जैक्ट पर्पस अब भी पार्शियली मिस्टीरियस है। साथियों, अब बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की, यानी टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी और कॉइंस की, जो पेट्रा की डेली लाइफ का विंडो खोलती हैं। इनकी पॉटरी को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे पानी स्टोर किया करते थे और ट्रेड नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट होते थे। ज्वेलरी पीसेस और पर्सनल आइटम्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि सोशल आइडेंटिटी और वेल्थ का सिंबल भी थे भाई। कुछ आर्टिफैक्ट्स में रिपेयर के साइंस हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि वो आइटम्स सेंटिमेंटल और लॉन्ग टर्म यूज के लिए ट्रेजर किए गए थे। अच्छा, यहाँ की डेली लाइफ की मिस्ट्रीज भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। पेट्रा के वाटर चैनल्स और ट्रेसेस इंडिकेट करते हैं कि नबातियंस ने वाटर मैनेजमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स डेवलप की थी। इस डेजर्ट सिटी में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम और अंडरग्राउंड चैनल्स के जरिए लोग अपनी जरूरतों और एग्रीकल्चर को मैनेज किया करते थे। ये इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक रेयर एग्जाम्पल है जो मॉडर्न अर्बन और डेजर्ट प्लानिंग के लिए भी एक इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। चलिए अब थोड़ा स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर की बेसिस पर वर्चुअली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पेट्रा की स्ट्रीट्स और प्लाजास को। जरा इमेजिन कीजिए, मार्शियंस अपने गुड्स सेल कर रहे हैं, क्राफ्टमैन अपनी स्किल्स डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, लोग टेरेसेस और कोर्टयार्ड्स में सोशलाइज कर रहे हैं और बच्चे एज यूजुअल गेम्स में बिजी हैं। ये इमर्सिव रिकंस्ट्रक्शन हमें पेट्रा की वाइब्रेंट और इंटरैक्टिव सोसाइटी का एक्सपीरियंस देते हैं। टूम्स और आर्टिफैक्ट से हमें उनके रिचुअल्स और बिलीव्स का आइडिया मिलता है। हर टूम का डिजाइन, कार्विंग और स्टैचूज इंडिकेट करते हैं कि लोग क्या बिलीव्स रखते थे। साथियों, एक्सकेवेशन से पता चलता है कि ये सिटी रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड का हब था, जहां ऑलिव ऑयल, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और लग्जरी गुड्स का स्टोर और एक्सचेंज होता था। ये ट्रेड नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज थे, जो नबातियंस की इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे। आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर की बेसिस पर हम एक स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये आर्टिफैक्ट्स और आर्किटेक्चर फ्यूचर में VR और AI के थ्रू डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट हों, तो कितना मजा आएगा भाई। यानी स्ट्रीट्स, प्लाजाज और टूम्स और इंटीरियर्स फुली इंटरैक्टिव और रियलिस्टिक फॉर्म में। हम वर्चुअल पेट्रा में वॉक कर सकते हैं, टेरेसेस और वाटर चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और तो और आर्टिफैक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की स्टोरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये पास्ट और प्रेजेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड होगा, इमेजिनेशन और हिस्ट्री का एक इमेंसिव सफर। पेट्रा के लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिफैक्ट्स, टूम्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चरल फीचर्स हमें डेली लाइफ, कल्चर प्रैक्टिसेस, इकोनॉमी और सोशल इंटरेक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग देते हैं। हर आर्टिफैक्ट और स्ट्रक्चर एक नैरेटिव होल्ड करता है, जो कि एक सिविलाइजेशन के इमोशंस, चॉइसेस और रूटीन को प्रिजर्व करता है। ये सेंचुरीज के बाद भी हमारी क्यूरियोसिटी और अंडरस्टैंडिंग को एंगेज करता है। साथियों, अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर पेट्रा के मिस्टीरियस और डेजर्ट क्लिफ्स के सीक्रेट्स को हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और साइंस के लेंस से देखते हैं, तो क्या होता? क्या होता अगर हमारी मॉडर्न AI और VR स्टिमुलेशंस को यूज करके उन मोमेंट्स को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते? या फिर सोचिए एक टाइम ट्रैवल सिनेरियो जहां हम फर्स्ट सेंचुरी AD के पेट्रा में वॉक कर रहे हैं, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बीच में और मॉन्यूमेंट्स और टूम्स के एग्जैक्ट मोमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यही तो फ्यूचर फ्लैश का मजा है, इमेजिनेशन और साइंस का परफेक्ट ब्लेंड। अब जरा आप सोचिए, अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो, हम इंस्टेंटली नबातियन सिविलाइजेशन के पीक पर जा सकते हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं

0: लोग कैसे ट्रेड करते थे, क्राफ्टमैन कैसे काम किया करते थे और उनकी डेली लाइफ रूटीन में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ करती थी भाई। हम ये भी देख सकते कि टेरेसेस और वाटर चैनल्स का यूज कैसे होता था और डेजर्ट सर्वाइवल के लिए लोग कैसे अडेप्ट करते थे। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को सेंचुरीज के स्पेकुलेटिव थ्योरी से काफी आगे ले जा सकती हैं। दिमाग में तो ये भी सवाल आता है साथियों, क्या होता अगर मॉडर्न डिजास्टर रिस्पॉन्स और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पेट्रा में अवेलेबल होती। इमेजिन कीजिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इमरजेंसी शेल्टर्स और प्रोटेक्टिव बैरियर्स। शायद उनके मॉन्यूमेंट्स और टूम्स का ज्यादा पोर्शन प्रिजर्व होता, स्ट्रीट्स और प्लाजा में लोग कामली नेविगेट कर रहे होते और ट्रेड और डेली लाइफ स्मूथली चलती। ये सिनेरियो हमें पास्ट और प्रेजेंट के प्रिजर्वेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट का कंपैरिजन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। फाइनली एक प्योरली इमेजिनेटिव सिनेरियो दिमाग में ये भी आता है कि क्या होता अगर हम पेट्रा के सिटीजंस के साथ वर्चुअली इंटरेक्ट कर सकते। हम उनकी डेली लाइफ रूटीन, मार्केट ट्रेड्स, क्राफ्ट मेकिंग और सोशल इंटरेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते। हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते कि ये लोग अपने फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस कैसे मनाते थे और उनके सोशल और इकोनॉमिक डिसीजंस को वर्चुअली समझते। और ये सब कुछ तो ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन का अल्टीमेट फ्यूजन होगा, जो कि इंटरैक्टिव, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग, जो पास्ट और फ्यूचर को ब्लेंड करता है। तो साथियों, पेट्रा के हिडन क्लिफ्स और आर्टिफैक्ट्स को फ्यूचर की साइंस और इमेजिनेशन के लेंस से एक्सप्लोर करना हमें सिर्फ पास्ट समझने के टूल नहीं देता, बल्कि AI, VR, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के जरिए फ्यूचर इनोवेशंस और एजुकेशनल मॉडल्स के लिए इंस्पिरेशन भी देता है। हर टोम, इंस्क्रिप्शन और कार्व्ड फसाद एक विंडो है जो पास्ट को प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट करती है। फ्यूचर फ्लैश का मैसेज सिंपल है साथियों, पेट्रा के बरिड सीक्रेट से हम सिर्फ हिस्ट्री एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि ह्यूमन इमेजिनेशन, टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज, यानी पास्ट और फ्यूचर का एक परफेक्ट ब्रिज है यहाँ। साथियों, आज के हमारे सफर का वक्त यही खत्म होता है। हमने एक्सप्लोर किया कि पेट्रा यानी हिडन डेजर्ट सिटी, जहाँ के क्लिफ, टोम्स और स्ट्रीट सेंचुरी से अपनी कहानियाँ छुपाए हुए हैं। हमने उनकी डेली लाइफ सीक्रेट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और ट्रेड पैटर्न्स जानने की कोशिश की। फिर हमने लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में बात करके कुछ मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज का सफर भी किया। तो साथियों, मैं आपको ये याद दिलाती चलूं कि पेट्रा सिर्फ एक बरिड सिटी नहीं है, ये एक लिविंग आर्काइव है, जहाँ के क्लिफ्स और टोम्स हमारी इमेजिनेशन, हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी और टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करते हैं। हर स्टोन और हर इंस्क्रिप्शन एक स्टोरी बताता है, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का ब्रिज है। तो साथियों, अगले एपिसोड में हम फिर एक और एंशिएंट मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, यानी एक और सिविलाइजेशन, एक और लॉस्ट टेक्नोलॉजी या एक और कॉस्मिक फिनोमेना, जो हमारी क्यूरियोसिटी को और इमेजिनेशन को चैलेंज करेगा। तब तक के लिए RJ सफा को दीजिए इजाजत और अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखिएगा, हिस्ट्री को फील कीजिएगा और इमेजिनेशन के इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। पेट्रा के सीक्रेट्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हमारी जर्नी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती है साथियों, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के इन्फिनिट सफर से। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
3: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se Desi.
4: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना, उन्हें हादसा

हाथ से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाजत दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आदिल अहमद मलाला कतरी फुटबॉल की तारीख का अहम खिलाड़ियों में से एक थे। वो एक मजबूत डिफेंडर के तौर पर मशहूर हुए और 1980 और 1990 की दहाई में कतरी फुटबॉल की तरक्की में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। आदिल मलाला उस जनरेशन का हिस्सा थे जिन्होंने कतर को एशियन फुटबॉल के नक्शे पर मजबूत पहचान दिलाने में मदद की। 1981 फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हुई थी, कतरी फुटबॉल की तारीख का एक यादगार मोड़ था। कतरी टीम ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए फाइनल तक जगह बनाई और रनर्स अप रही। ये कामयाबी मुल्क के फुटबॉल निज़ाम के लिए एक बुनियादी संग मील साबित हुई। आदिल मलाला उसी दौर की फुटबॉल तहरीक से उभरने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने उस सिल्वर मेडल जनरेशन के बाद कतरी फुटबॉल को मजीद मुस्तहकाम बनाया। आदिल मलाला ने कतर नेशनल टीम के लिए कई अहम मुकाबलों में शिरकत की और अपनी लीडरशिप और डिसिप्लिन की वजह से जाने जाते हैं। उनका डिफेंसिव अंदाज और टीम के लिए वफादारी नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल बनी। दोस्तों 1981 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप की कामयाबी ने कतर में फुटबॉल का शौक बढ़ाया और इसी माहौल ने आदिल मलाला जैसे खिलाड़ियों को उभरने का मौका दिया। आज भी उनका नाम कतरी फुटबॉल की तरक्की और कौमी फख्र के साथ याद किया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो दुनिया भर में लाखों अफराद की सेहत को मुतासिर कर रहा है, और वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग या तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक संगीन सेहत का खतरा है। सिगरेट के धुएं में 7,000 से ज्यादा कीमियाई मादे मौजूद होते हैं, जिनमें सैकड़ों नुकसानदेह और दर्जनों जो कैंसर पैदा करने वाले जरासीम मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग के नुकसानात और इन बीमारियों के बारे में जो कि इस आदत की वजह से पैदा हो सकती हैं। स्मोकिंग दुनिया भर में बीमारी और कबल उस वक्त की एक बहुत बड़ी वजह है। सिगरेट के धुएं में जिसके हजारों नुकसानदेह केमिकल्स मौजूद हैं, जो हमारे जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मुतासिर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों की। जब कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो धुआं बराह रास्त हमारे लंग्स में दाखिल होता है और वक्त के साथ साथ ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फिर

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum saathiyon, aap sun rahe hain FM 107 Qatar aur main hoon aapki host Safa. Lekar aayi hoon ek aur interesting aur modern sa segment jiska naam hai Eco Switch. Saathiyon, yahan hum baat karte hain un lifestyle changes ki jo learning ko aasan banati hain aur saath hi environment ko bhi protect karti hain. तो भाई आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल बुक्स पर शिफ्ट करना. देखें, एक बहुत ही रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करूं अगर बात, तो हमारे जो लेलें स्टूडेंट्स होते हैं, जरा सोचिए, आप स्टूडेंट हैं या किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, आपको पढ़ने का शौक है, आपके पास एक हैवी बैग है जिसमें बुक्स, नोटबुक्स, प्रिंट आउट्स और नोट्स भरे पड़े. रोज सुबह उठ के ये लगता है कि जैसे आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपका बैग काफी है जब आप उठाएंगे वो भरा हुआ लोडेड बैग, बल्कि लाइब्रेरी उठाकर आप चल रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, आप पूरी पूरी लाइब्रेरी साथ लेकर घूम रहे हैं. और फिर जब जरूरत होती है किसी एक चैप्टर या एक पेज की, तो उस स्पेसिफिक बुक को ढूंढना एक ऐसा लगता है जैसे डोरा द एक्सप्लोरर का मिशन होता है ना, वो लगना शुरू हो जाता है. अच्छा, अब इसी के साथ ना थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं. देखिए, प्रिंटेड बुक्स की अपनी एक वैल्यू होती है, एक इम्पोर्टेंस होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उनका प्रोडक्शन पेपर पर डिपेंड करता है साथियों, जो के ट्रीज से बनता है, दरख्तों से बनता है. जितना ज्यादा प्रिंटिंग होती है ना, उतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज हो रही होती है, और कई बार बुक्स पुरानी हो जाती है, अपडेट नहीं होती, या यूज के बाद शेल्फ में बस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है, या यूं समझ लें घर का कोई डेकोरेशन पीस बन जाती है वो. अब इसमें इको स्विच क्या है सिचुएशन में? सिंपल सी बात है, आइडिया बड़ा सिंपल है साथियों, डिजिटल बुक्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करना, मतलब फिजिकल बुक्स के साथ साथ डिजिटल रीडिंग को भी अपनी

रूटीन का हिस्सा बनाना। देखिए अब बात करते हैं कि डिजिटल बुक्स पर शिफ्ट करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा पता है क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है। जितनी कम प्रिंटिंग होगी उतने कम दरख्त कट किए जाएंगे, मतलब ये कि पेपर वेस्ट रिड्यूस होगा। दूसरा फायदा है पोर्टेबिलिटी ना, एक मोबाइल या टैबलेट में हजारों बुक्स स्टोर की जा सकती हैं जो कि फिजिकली तो वो पॉसिबल नहीं होता ना, इम्पॉसिबल होता है। तीसरा फायदा है एक्सेसिबिलिटी, आप किसी भी वक्त कहीं भी अपनी बुक्स या नोटबुक्स एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। चौथा फायदा है कॉस्ट एफिशिएंसी, कई डिजिटल बुक्स फिजिकल बुक्स के मुकाबले में सस्ती या फ्री होती हैं। अक्सर लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कतर नेशनल लाइब्रेरी की अपनी एक मोबाइल ऐप है जहां पर जाकर आप डिजिटल बुक्स यूज कर सकते हैं और अक्सर औकात तो बुक्स फ्री हैं। तो ये भी एक फायदा है, फ्री की मिले और वो भी नॉलेज तो क्यों ही छोड़ी जाए। अच्छा एक रिलेटेबल एग्जाम्पल दूं आपको, सोचिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में तो ये होता है ना कि हमारे पास वजन लिमिटेड होता है लगेज का और आपके पास तकरीबन 5 से 6 हैवी बुक्स हैं, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी बुक साथ लेकर जाऊं। अगर आप एक मेरी तरह शौकीन है बुक रीडिंग के तो आप लिटरली आपको आपकी हर बुक पे जान निकलेगी, आप कहेंगे भाई ये भी ले जाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ, ये भी ले जाता हूँ। अब सेम सिचुएशन में अगर वही बुक्स आपके मोबाइल में पीडीएफ में या किसी और फॉर्म में मौजूद है, मतलब ये कि वो सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, तो आपको सिर्फ फोन कैरी करना होता है और सब कुछ इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल होता है। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग सेंटर्स ग्रेजुअली डिजिटल लर्निंग टूल्स यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कतर नेशनल लाइब्रेरी की अपनी एक ऐप है, वहां पर जाकर आप डिजिटल बुक्स यूज कर सकते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट रियलिटी है। अच्छा अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना इसके लिए तो उनको फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल टिप नंबर 1 ये है कि ई बुक्स एप्स यूज करें।

0: अपना एक मजा होता है, उनकी एक अपनी एंजॉयमेंट होती है रीडिंग की, ये मैं मानती हूँ, लेकिन डेली यूज में डिजिटल शिफ्ट अडॉप्ट करें। अच्छा, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव भी है। देखें, डिजिटल बुक्स सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होती बल्कि इंक्लूसिव लर्निंग का भी जरिया है। आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई एक वर्ड, ठीक है, और एक क्लिक में रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। इसी से लर्निंग ज्यादा इंटरैक्टिव और एफिशिएंट हो जाती है। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक इंपॉर्टेंट पेज या नोट ढूंढ रहे होते हैं और पूरा फोल्डर उल्टा देते हैं, हम लोग उलट पलट हो जाता है, लेकिन हमें वो पेज नहीं मिल रहा होता। लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में सिर्फ एक सर्च, आप जब कंट्रोल एफ दबाते हैं तो सर्च कर सकते हैं, आपको चीजें फौरन मिल जाती हैं। अच्छा, आप इसके साथ अगर थोड़ा बिहेवियरल चेंज एंगल से देखें ना, तो जब आप डिजिटल बुक्स अडॉप्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट चेंज नहीं कर रहे होते बल्कि अपना लर्निंग सिस्टम भी अपग्रेड कर रहे होते हैं। आप और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और इको कॉन्शियस लर्नर बन जाते हैं। तो भाई, इको स्विच सिंपल है, डिजिटल बुक्स और ई लर्निंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए मेहरबानी करके। और आज का चैलेंज भी बड़ा सिंपल है, आज कम से कम एक बुक या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें या उसे डिजिटल फॉर्मेट में रीड करने की कोशिश करें। और अगर आप ऑलरेडी डिजिटल रीडर हैं ना मेरी तरह, तो किसी और को भी इस हैबिट के लिए एनकरेज करें। और भाई साथियों, नॉलेज का मकसद सिर्फ कलेक्ट करना नहीं होता बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से एक्सेस करना भी होता है। डिजिटल टूल्स या डिजिटल बुक्स हमें सिर्फ कन्वीनियंस नहीं देती बल्कि एक सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी लाइफस्टाइल भी देती हैं। इसी नोट के साथ याद दिलाती चलूं कि मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं नेक्स्ट इको स्विच के साथ, एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 कतर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन की। देखिए, आज के दौर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी बन चुका है। कतर का नेशनल विजन 2030 डिजिटल इनोवेशन को प्रमोट करता है ताकि इकोनॉमी मॉडर्न और इफिशिएंट बन सके। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस अपने प्रोसेसेस को टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड करें। इसका एक सिंपल एग्जांपल है ऑटोमेशन, क्लाउड सिस्टम्स और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस। जब कंपनीज डिजिटल टूल्स यूज करती हैं, तो उनका काम फास्ट, एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और रिटेल, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इनोवेशंस की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करती, वो कंपटीशन में पीछे रह जाती है। डिजिटल सिस्टम्स ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज करते हैं, डेटा प्रॉपरली मैनेज होते हैं और डिसीजंस ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। कतर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्ट बना रहा है, जैसे स्मार्ट सिटीज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज और डिजिटल हेल्थ केयर। इससे सिटीजंस को कन्वीनियंस मिलती है और बिजनेस इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव होता है। दोस्तों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। जो नेशंस और बिजनेसेस इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, वो फ्यूचर में लीड करते हैं। कतर का नेशनल विजन 2030 इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, एक स्मार्ट और एडवांस्ड इकोनॉमी की तरफ। अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और। तो अगर गोल क्लियर है, मान लीजिए कोई भी गोल आपने सेट किया, वो क्लियर है, और जैसे कतर ने एक गोल सेट किया और वो काफी क्लियर है कि इकोनॉमी ऑयल पर कम डिपेंड करेगी, तो पॉलिसीज, एजुकेशन, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है और करने के प्लान्स भी हैं। कतर में रिसर्च सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और इनोवेशन हब इसी क्लियर गोल की मिसाल है। देखिए, क्लियर गोल्स की वजह से पैसा, टाइम और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की प्लानिंग मुल्क को शॉक से बचाती है, जैसे ऑयल प्राइसेस गिरने पर भी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इसीलिए क्लियर नेशनल गोल्स लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी पैदा करते हैं, जो सिर्फ आज नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस तक फायदा पहुंचाते रहेंगे। तो अब आप तो समझे कि कितना इम्पोर्टेंट है एक क्लियर गोल्स का होना और किस तरह से क्लियर गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं। बस जाते जाते एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पैदा होती है जब तरक्की सिर्फ पैसे तक महदूद ना हो, बल्कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाए। कतर का नेशनल विजन 2030 इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गोल्स क्लियर हैं और हम सबका मुस्तकबिल जो है वो स्टेबल और महफूज बन सके। इस डायरेक्शन में कतर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil Se Desi.
1: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे

यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकाल लो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस जमाने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे।